चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुख और दुख पर महात्मा बुद्ध के विचार। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। आज आप सुनेंगे भाग 64 बालकांड।

कपटी मुनि एक तनु ने राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का ये उपाय बताया कि वो एक वर्ष तक नित्य प्रति 1,00,000 ब्राह्मणों को उनके कुटुंब सहित भोजन कराए। उसी समय वहां कालकेतु नामक राक्षस आया। वो तपस्वी राजा अर्थात कपटी मुनि का गहरा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र तथा 10 भाई थे जो अजेय तथा देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों तथा देवताओं को निर्भय करने के लिए राजा प्रताप भानु ने उन सब की हत्या कर दी थी और इसी कारण बदला लेने के लिए कालकेतु ने कपटी मुनि से मित्रता करके प्रताप भानु का सर्वनाश करने का कुचक्र रचा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। आज आपने सुना बालकांड भाग 64। अब समाचार होंगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढ़ीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनांतर्गतं अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अंतमीकृत्य स्वीकर्तुं आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्त राष्ट्रसंघे तथा यूरोपीय संघे च निर्दिष्टानाम् आतंकवादिनाम् आतंकिसंघटनानां च विरुद्धम् अपि च संयुक्त राष्ट्रसंघस्य सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतंकिसंघटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढ़ीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकातानगरं आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकातानगरे प्रवासावधौ श्रीरूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धाञ्जलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिकादेशस्य विदेशसचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्रीरूबियो राष्ट्रिय राजधान्यां विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिकादेशस्य दूतावासस्य स्वातन्त्र्यदिवसोपलक्ष्ये आयोजिते कार्यक्रमेऽपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्रीरूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे, पूर्वीय उत्तर प्रदेशे, विदर्भे च तीव्रतर उष्णतरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता।

परिता अस्ति। अद्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थित्यां आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आंध्र प्रदेशे, तेलंगानायां, पश्चिम मध्य प्रदेशे, पश्चिम उत्तर प्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्याम् अधिकतमं तापमानं 45 डिग्री सेल्सियस यावत्, न्यूनतम तापमानं 27 डिग्री सेल्सियस यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडा वार्तायाम् आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्ध सप्तवादने लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
4: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
5: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावना

0: आई हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
1: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं। हमारी जानचीपुर की मित्रता आपसे सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
4: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल।

0: दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल है। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी आईएएस अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्य की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रूपये के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: से की आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
1: सदर जमहूरिया ने सरहद पार दहशतगर्दी और कसीर जहती इदारों में इस्लाहात जैसे अहम मामलों पर कुबरुस की हिमायत की सताइश की। सदर जमहूरिया ने कुबरुस की सालमियत, इत्तेहाद और इलाकाई यकजहती के तहत भारत की गैर मुतजलजल हिमायत का इयादा भी किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दोतरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदल दिया गया है, जो भारत और कुबरुस के दरमियान बढ़ती सूझबूझ, गहराई और बाहमी एतमाद की अक्कासी करते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय फौज की अफसर मेजर अभिलाषा बराक को, जो लेबनान में अक्वामे मुत्तहदा के कयाम अमन मिशन में खिदमात अंजाम दे रही हैं, अक्वामे मुत्तहदा के 2025 के एक बावकार अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। उन्हें यह अवार्ड इस साल की फौजी सिन्फी वकील के तौर पर दिया जा रहा है। मेजर बराक, जो फिलहाल एक भारतीय बटालियन में लेबनान में अक्वामे मुत्तहदा की उबूरी फोर्स में खवातीन की सरगर्मी वाली टीम की कमांडर UNIFIL के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं, भारतीय फौज के जंगजू हेलीकॉप्टर की पहली खातून पायलट भी हैं। ये अवार्ड हासिल करने वाली मेजर बराक तीसरी भारतीय कयाम अमन फौजी हैं जिन्हें ये एजाज हासिल हुआ है। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को साल 2019 में जुनूबी सूडान में अक्वामे मुत्तहदा मिशन के तहत खिदमात अंजाम देने पर इस अवार्ड से नवाजा गया था और मेजर राधिका सेन को साल 2023 में इस अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हें यह अवार्ड जमहूरिया कांगो में अक्वामे मुत्तहदा के इस्तेकाम मिशन के तहत उनकी खिदमात पर दिया गया था। भारत तिब्बत सरहद पुलिस ITBP ने माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाली अभी तक की पहली ऐसी बैन अवी कोह पैमा मुहिम मुकम्मल कर ली है जो सिर्फ खवातीन पर मुश्तमिल है। ये कामयाबी इस फौज की कोह पैमाई के मैदान में तारीखी संग मील है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ITBP की एक 14 रकनी कोह पैमा टीम ने, जो 11 खवातीन, 3 तकनीकी माहरीन और मददगार अमले पर मुश्तमिल है, इस माह की 21 तारीख को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सर कर ली। इस मुहिम को 19 अप्रैल को ITBP के सदर दफ्तर से रवाना किया गया था। अपनी हिमालय साफ करो और ग्लेशियर को महफूज करो मुहिम के तहत टीम ने माहौलियाती बेदारी की सरगर्मियां अंजाम दी और एवरेस्ट खित्ते से नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को इकट्ठा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने टीम को माउंट एवरेस्ट पर कौमी झंडा फहराने पर मुबारकबाद दी। जनाब शाह ने कहा कि इस बुलंद तरीन इलाके और सख्त आबोहवा के हालात में ये काबिल तहसीन कारनामा अंजाम देकर टीम ने ITBP के खुद से पहले मुल्क के मोटों की शान बरकरार रखी है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 91 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। 10 दिन से भी कम मुद्दत में ये तीसरा इजाफा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे का इजाफा हुआ है और ये 99 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत में 91 पैसे का इजाफा होकर ये 92 रुपये 49 पैसे लीटर हो गया है। ये इजाफा ईरान तनाज़े और आमनाए हुरमुज में रुकावट के सबब खाम तेल की आलमी कीमतों में अचानक इजाफे के दौरान हुआ है। इस दौरान पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने बताया कि भारत में पेट्रोल और डीजल भरपूर मकदार में दस्तियाब है और पूरे मुल्क में सप्लाई भी मुस्तहकम है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो घबराहट में खरीदारी ना करें और ईंधन की खरीदारी अपनी असल ज़रूरत के मुताबिक करें। वजारत ने मजीद कहा कि जिम्मेदारी के साथ की जाने वाली खपत और आवाम के तआवुन से इस यकीन दहानी में मदद मिलेगी कि ज्यादा मांग वाले इन दिनों के दौरान ईंधन सभी के लिए दस्तियाब है। मध्य प्रदेश सरकार ने यकसां सिविल कोड UCC की जानिब एक अहम कदम उठाया है। वज़ीर-आला मोहन यादव ने कल सेक्रेटेरिएट में UCC.MP.GOV.IN वेबसाइट का आगाज किया। पोर्टल के जरिए सियासी पार्टियां और समाजी तंजीमें मुजव्वजा UCC मामले पर अपने ख्यालात और मशवरे पेश कर सकती हैं। रद्दअमल दाखिल करने की आखिरी तारीख इस साल 15 जून मुकर्रर की गई है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के जवाबी पर्चों की स्कैंड फोटोकॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसी करते हुए इसे 24 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख आज तक थी। CBSE ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से इसकी वेबसाइट पर गैर मुतवक्क ट्रैफिक और गैर मजाज इंटरफेस के मुतादित कोशिशों से खलल अंदाजी के खदशे के बाद ये फैसला लिया गया। बोर्ड ने इत्तला दी है कि जवाबी पर्चों की स्कैन कॉपी हासिल करने के बाद पर्चों की दोबारा जांच के लिए तलबा को

0: दिन मिलेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में अगले 5 दिन के दौरान सख्त गर्मी से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसी तरह के मौसमी हालात अगले 5 दिन तक साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी रहेंगे। गंगाई मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, जैली हिमालय, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। मध्य प्रदेश में शदीद गर्मी के हालात जारी हैं। रियासत के 42 जिलों में भारतीय महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी से मुतालिक वार्निंग जारी की है। कई खित्तों में दर्जे हरारत के औसत से ज्यादा रहने पर रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मध्य प्रदेश शदीद गर्मी की गिरफ्त में है। रियासत में टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। इन तीनों मकामात पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर और 20 दिगर जिलों में शदीद गर्मी से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ग्वालियर और दिगर 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और भोपाल, इंदौर समेत दिगर 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में दर्ज हरारत कल 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। गर्मी की यह शदीद लहर 31 मई तक जारी रहेगी। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश के लोगों को अगले 10 दिन तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका के ग्रीन कार्ड तरीक़ेकार में बड़ी तब्दीली की है। उन्होंने कहा है कि उन गैर मुल्की शहरियों को जो मुस्तकिल सकूनत चाहते हैं, इसकी दरख्वास्त देने के लिए अपने वतन वापस जाना होगा। इस कदम से पहले अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन खिदमात USCIS ने एक पॉलिसी तैयार की थी, जिसमें अमेरिका में रहने वाले सिर्फ उन लोगों को मंजूरी दी जाएगी जो गैर मामूली हालात से दो चार हैं। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने अपने ओहदे से इस्तीफे का ऐलान किया है। मोहतरमा गबार्ड ने कहा है कि वह अपने शौहर अब्राहम विलियम्स में हड्डियों के कैंसर की तशखीस के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे रही हैं, जो 30 जून से नाफिज हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लिखे इस्तीफे में मोहतरमा गबार्ड ने कहा कि वो गुज़िश्ता 1.5 साल से नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के ओहदे पर फ़राइज अंजाम देने का मौका फराहम करने पर बेहद मशकूर हैं। IPL क्रिकेट में कल रात हैदराबाद में खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकर्रर 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर शानदार 255 रन बनाए। आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर क्रिस्टोविड लराइस के दरमियान हुई बातचीत पर तवज्जो मरकूज की है। बातचीत के बाद एक मुश्तरका बयान में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और कुब्रुस ने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया है और सरमायाकारी को दोगुना करने का हदफ मुकर्रर किया है। रोजाना प्रताप और इंकलाब ने वजारत खारजा के हवाले से खबर दी है कि क्वाड ममालिक के वजारत खारजा की मीटिंग 26 तारीख को मुनक़िद होगी, जिसमें शिरकत के लिए अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वजारत खारजा भारत आएंगे। इस मौके पर भारत बहरुल खत्ते और बाहमी मफादात के बैन अवी मसायल पर गौर वखौस किया जाएगा। राज्यसभा की 26 सीटों पर इंतबात 18 जून को होंगे। इस खबर को रोजनामा इंकलाब ने खसूसी तौर पर शाये किया है। इस बात का ऐलान इंतबी कमीशन ने कल किया।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए अफराद को 51,000 से ज्यादा तकरुनामे तकसीम करेंगे। RBI ने माली साल 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड इजाफी रकम मरकजी हुकूमत को सौंपने की इजाजत दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के अपने पहले 4 रोजा दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। वो आज दोपहर नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय फौज के अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक्वामे मुत्तहदा की फौजी सिन्फी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ और अब समय है स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत का।

0: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
1: स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करें अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, आईबीटी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम आंतों में होने वाली एक गंभीर बीमारी है। इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए हर साल 19 मई को वर्ल्ड आईबीटी डे मनाया जाता है। अधिक जानकारी हमने प्राप्त की गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर कुणाल दास से।
2: आईबीटी मतलब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लेमेटरी मतलब कि हमारे आंतों के अंदर जब इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उनमें लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन आ जाता है तो उनको इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर दो तरीके के आंत होती है, एक स्मॉल बाउल होती है, एक लार्ज बाउल होती है, जो छोटी आंत और बड़ी आंत कहते हैं। जब कोई बीमारी उसके इन्फेक्शन कर देती है लॉन्ग टर्म, उसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का नाम देते हैं। कोई इन्फेक्शन या डिजीज प्रोसेस लार्ज बाउल की होती है, जो कि 6 महीने से ज्यादा ड्यूरेशन की होती है, उसको हम क्रॉनिक कोलाइटिस या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का नाम देते हैं। 2 से 3 वीक तक ब्लीडिंग हो सकती है, लूज मोशंस हो सकती हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकती हैं, अर्जेंसी हो सकती है। तो ये सिम्टम जब 2 से 3 हफ्ते तक एक्सटेंड करती है, तब हमें शक होता है कि ये पेशेंट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से ग्रस्त है। फिर हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन इन टर्म्स ऑफ मेजर इन्वेस्टिगेशन, इसमें एक टेस्ट होता है जिसको हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं। बड़ी आंत से हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, बायोप्सी जिसको कहते हैं, और तब हमें पता चलता है कि ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से ग्रस्त पेशेंट है।
3: दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है और मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और हेड ऑफ डिपार्टमेंट इमरजेंसी मेडिसिन इन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में कार्यरत हूँ। आजकल के मौसम में आप देख रहे हैं कि काफी तेज धूप निकल रही है और काफी गर्मी है, ह्यूमिडिटी भी कई जगहों पे आ रही है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपना बचाव खुद करें, क्योंकि देखा गया है कि अगर लू लग जाती है किसी को और हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो ऐसे में इसकी डेथ रेट काफी ज्यादा होती है, यानी इनफैक्ट 50-70% डेथ रेट इसमें होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमें? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें खुद अपना बचाव करना है कि 12 से 4 बजे तक सबसे ज्यादा गर्मी धूप पड़ती है, या तो ऐसे समय में नहीं निकलें या अपना जो भी काम है उससे पहले कर लें, बाद में कर लें, और अगर निकलना भी है तो पूरी प्रिकॉशंस के साथ आप निकलें। जैसे कि एग्जाम्पल, आप कैप लेके निकल सकते हैं, छतरी लेके निकल सकते हैं, पानी तरल पदार्थ आप जरूर रखें बॉटल में, चाहे वो ठंडई हो, ORS हो, या फिर आपने नींबू पानी का घोल बना लिया हो, या इस तरह की कोई भी जो नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उसको आप लेके चलेंगे और बीच बीच में सेवन करते रहें उसको, ताकि आपको ये जो लू लगने की समस्या ना आए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो कपड़े जो पहनते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में, जो बिल्कुल टाइट फिटिंग सिंथेटिक ड्रेस जो होते हैं वो ना पहने, और कॉटन वाले जो हल्के रंग के, जो वाइट या उसके हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं, ताकि जो इवेपोरेशन है, जो बॉडी को कूलिंग होती है या बॉडी का जो हवा लगनी है वो भी लगते रहे। सिंथेटिक कपड़ों में हवा बॉडी को नहीं लगती है और इवेपोरेशन भी नहीं होता है, ऐसे में चांसेस बढ़ जाते हैं लू लगने के। इसके साथ साथ अगर कोई समस्या आती है, आपको हीट क्रैम्स आते हैं या मूर्छित वाली ऐसी स्थिति, या वॉमिटिंग, नोजिया या उल्टियां आने ना, दस्त आ जाना, तो इससे डिहाइड्रेशन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। या फिर लक्षण भी अगर, जैसे मान लो गफलियत में कोई जा रहा है या फिर दौरे पड़ रहे हैं उसको, तो ऐसे कंडीशन में तुरंत हॉस्पिटल में जाना अनिवार्य हो जाता है, ताकि इसका सही उपचार या IV फ्लूइड्स जिसको कहते हैं वो दिया जा सके। तो सही समय पे हॉस्पिटल पहुंचना भी एक उपचार ही है, और क्योंकि ऐसी भयानक बीमारी से बचाव सिर्फ जानकारी से और समय पे सही निर्णय लिया जाना अति आवश्यक है। धन्यवाद।
1: सिज़ोफ्रेनिया एक मानसिक स्थिति है जो लोगों के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें दी मनोविशेषज्ञ योगेश कुमार ने।
4: एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी है जिसमें

0: व्यक्ति का वास्तविकता से बिल्कुल संबंध टूट जाता है। वो उन सब बातों पे ज्यादा विश्वास करता है जो बिल्कुल सच नहीं होती, वास्तविक नहीं होती, और उनको जितना ही समझाने की कोशिश करो, उनका ये फर्म बिलीफ रहता है कि वो जैसा सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं। वो दूसरी की जो बातों को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं, और इसमें कई प्रकार के उसे भ्रम रहते हैं जिसे डिल्यूजन्स कहते हैं, और डिल्यूजन्स के साथ हैलुसिनेशंस भी रहते हैं। डिल्यूजन्स ये रहता है कि कहीं कोई उसको प्लॉट तो नहीं कर रहा, कहीं कोई उसे मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कहीं कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और कभी उनको आवाजें सुनाई देने लगती हैं, तरह तरह की कमांड सुनाई देने लगते हैं, और उनका जो व्यवहार है और जो एक्शंस है वो जो आवाजें सुनते हैं उसके अनुसार उनका पालन करते हैं। उनके सोचने समझने के व्यवहार करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। जो ऑब्सेशंस होता है इन सब बिलीव का, थॉट्स का, वो 24 घंटे ही रहता है। पर कभी ये थॉट्स और जो बिलीव बहुत ज्यादा प्रबल हो जाते हैं किसी टाइम पे, और किसी टाइम पे थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं। जितनी जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं हम इनको दो कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है साइकोटिक डिसऑर्डर, दूसरा होता है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस जो होते हैं इनका कोई ऑर्गेनिक रिलेशंस नहीं होता है, कोई ऑर्गेनिक डिसीज जो है इसके पीछे नहीं होती है। ये एंग्जाइटी, डिप्रेशंस और स्ट्रेस से भी ये न्यूरोसिस डिसऑर्डर हो सकते हैं। और न्यूरोसिस डिसऑर्डर थोड़े माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो साइकोटिक डिसऑर्डर हैं वो बड़े प्रोफाउंड होते हैं, बड़े सीवियर होते हैं, और इनका इसमें व्यक्ति का रियलिटी से बिल्कुल टच चला जाता है। अब जैसे सिजोफीनिया है, साइकोटिक की कंडीशन उसमें आता है, कैटेगरी में आता है। डिल्यूजन डिसऑर्डर है, साइकोटिक की कैटेगरी में आता है। और पोस्ट ट्रामेटिक डिसऑर्डर है, डिप्रेशंस है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे न्यूरोसिस कैटेगरी में आते हैं।
1: असुरक्षित प्रसव या प्रसव के दौरान जटिलताओं के कारण बहुत सी समस्याएं महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं। इन्हीं में से एक है ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला। इस समस्या की रोकथाम और इसके इलाज के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व में हर साल 23 मई को ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला, कारण, लक्षण और उपचार, सुनिए ये भेंटवार्ता। विशेषज्ञ हैं अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल में सर्जरी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर निखिल गुप्ता। आपसे बात कर रही हैं परविंदर कौर। सबसे पहले हम बातचीत करना चाहेंगे कि ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला होता क्या है।
2: देखिए, जैसा कि नाम से ही हम अगर समझने की कोशिश करें, ऑब्स्टेट्रिक और फिस्टुला से हमारा मतलब होता है जब दो रास्तों के बीच में एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाए, उसे हम फिस्टुला कहते हैं। और ऑब्स्टेट्रिक मतलब ऑब्वियसली जिसका लिंक, जिसका रिश्ता डिलीवरी से या पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन से हो। ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला समझने के लिए अगर हम महिलाओं की एनाटॉमी, उनके शरीर की संरचना को समझें अगर, तो जो उनकी बच्चेदानी का रास्ता है वो पेशाब के रास्ते और जो हमारा स्टूल है या लैट्रिन के रास्ते के बीच में स्थित होता है। और अगर प्रेगनेंसी के समय किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन हो, जिसे स्पेशली हम ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं, तो उसमें बच्चेदानी से या जो रास्ता निकलता है वहां से एक कम्युनिकेशन बन जाता है, या तो आगे की तरफ यानी कि या तो पेशाब की थैली जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं उसमें, या यूरिथ्रा में। और इन दोनों फिस्टुलास को फिर हम वेजाइको वेजाइनल या यूरिथ्रोवेजाइनल फिस्टुला कहते हैं। या फिर ये कम्युनिकेशन, ये एबनॉर्मल फिस्टुला पीछे की तरफ बन सकता है यानी कि लैट्रिन के रास्ते में, जिसको हम रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला कहते हैं। और ये तीनों तरह के फिस्टुला ही ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला के अंदर माने जाते हैं।
1: तो सर, क्या ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज में जिनको लेबर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, या तो फिर ये प्रॉब्लम अनकॉमन है?
2: देखिये, अगर मैं बताऊं तो इस बीमारी के एक दूसरा नाम भी है, डिजीज ऑफ पॉवर्टी। जैसा इसके नाम से हम समझ सकते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्रीज में या जो प्रगतिशील उन्नत देश हैं उनमें बीमारी नहीं पाई जाती। अमेरिका, यूरोप की बात करें, वहां ये बीमारी ना के बराबर है। ये बीमारी सबसे अधिक एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में पाई जाती है। और एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में करीब 20 लाख महिलाएं फिस्टुला से ग्रसित हैं, ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला से, और हर साल इसमें करीब 75,000 से 1,00,000 नए मरीज शामिल हो जाते हैं। इतनी ज्यादा इसकी प्रेवलेंस है, इस बात से हम ये समझ सकते हैं।
3: तो सर कैसे पहचान करे एक औरत कि उसको

0: तक फिस्टुला हो गया है और कब उसे डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए?
1: देखिए, मुख्यतः जैसे मैंने बताया कि ये फिस्टुला डिलीवरी यानी कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के बाद देखा जाता है, और मुख्यतः मरीज को जो शिकायत होती है वो उनको अपने वजाइना के थ्रू एबनॉर्मल या तो पेशाब का डिस्चार्ज या लैट्रिन का डिस्चार्ज देखा जाता है, जिस पर उनका कंट्रोल नहीं होता। इस मुख्य एक कंप्लेंट होती है मरीजों की, या फिर वो बदबू की कंप्लेंट कर सकते हैं, या वहां पे बार बार उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये तीन चार मुख्य कंप्लेंट होती हैं जो लेकर मरीज हमारे पास आते हैं।
0: सर, एक और प्रश्न आ रहा है, क्या ये प्रेगनेंसी के दौरान ही होती है या अन्य किसी कारण से भी हो सकती है?
1: नहीं, मुख्यतः मैं कहूंगा 99.9% ये बीमारी होती ही ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वजह से है, यानी कि किसी वजह से अगर मरीज बहुत लंबे समय तक लेबर में है और उस दबाव की वजह से अगर नीचे के हिस्सों में ब्लड सप्लाई बहुत देर तक रुकी रहती है तो उसकी वजह से एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाता है। इसलिए इसका दूसरा नाम ही जो ऑब्स्ट्रक्टेड फिस्टुला या फिस्टुला बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं। तो इसकी और कोई वजह नहीं है, ये 99.9% इसकी वजह ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर ही है। बहुत कम परसेंटेज ऑफ केसेस में देखा जाता है अगर नीचे से कोई अनट्रेन्ड दाई या कोई ऐसी महिला प्रसव करा रही है जिसको इसका तजुर्बा नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, और उसने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, औजार या कोई दवाई लगाई है जिससे नीचे के रास्ते में चोट पहुंच जाए, वो अलग बात है। नहीं तो इस बीमारी की जो तीन मुख्य वजह अगर आप मुझसे पूछें तो एक वो है कि डिलीवरी या प्रेगनेंसी के समय महिला की कम उम्र का होना, जब नीचे के एनाटॉमी या नीचे के ऑर्गेन स्ट्रक्चर इतने ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं बने हैं, कच्चे हैं वो, उस समय उसकी संभावना बढ़ जाती है, या फिर चिकित्सा सुविधाएं अगर बहुत अच्छी उपलब्ध नहीं है ऐसे मरीजों में भी इसकी संभावना बढ़ जाती है, और तीसरा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। इस बात का ध्यान रखना चाहिए अगर लेबर बहुत लंबा खींच रहा है और नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हो पा रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी अच्छी चिकित्सा फैसिलिटी में शिफ्ट करवाकर सिजेरियन सेक्शन के थ्रू डिलीवरी करवानी चाहिए। लेकिन अगर अस्पताल या चिकित्सालय घर के पास नहीं है, महिला किसी दूर दराज इलाके में रहती है जहां पे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और महिला की उम्र भी कम है, तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में फिस्टुला बनने की संभावना बढ़ जाती है।
0: सर, जैसा कि आपने बताया कि सिजेरियन सेक्शन करवा लेना चाहिए, आजकल बहुत कॉमन है हर दूसरी महिला को सिजेरियन सेक्शन के थ्रू जाना पड़ता है, तो क्या बार बार सिजेरियन सेक्शन करवाने से इसके चांस बढ़ जाते हैं?
1: नहीं, देखिए, सिजेरियन सेक्शन जैसा आपने पूछा, दो या तीन बार करवाने से क्या फिस्टुला के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो मैं कहूंगा नहीं। सिजेरियन सेक्शन इनफैक्ट फिस्टुला रोकने के लिए ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का ट्रीटमेंट है सिजेरियन सेक्शन। बार बार सिजेरियन सेक्शन से यह जरूर है कि यूट्रस या बच्चेदानी कमजोर हो जाती है और सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में, अगली प्रेगनेंसी में यूट्रस के फटने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते, लेकिन फिस्टुला होने के चांस नहीं बढ़ते।
0: तो सर, एक बार जिस महिला को ये हो गया तो उसे क्या उपचार लेना चाहिए?
1: अगर ये फिस्टुला का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि ये दोबारा कभी नॉर्मल प्रेगनेंसीज या डिलीवरी भी नहीं हो पाएगी ऐसी लेडीज में, यानी कि दोबारा कभी माँ भी नहीं बन पाती है। नीचे की हाइजीन इतनी खराब रहती है, बदबू इतनी आती रहती है, तो पूरे समाज से उनका बहिष्कार भी हो जाता है। अब रही बात इसके इलाज की, इलाज बहुत बातों पर निर्भर करता है, फिस्टुला कहाँ पर है, उसका कितना साइज है, ऑपरेशन के बाद कितना समय हुआ है, कितना जल्दी हमने इसको डिटेक्ट कर लिया है। अगर बहुत जल्दी हमने लेबर के बहुत जल्दी हमने इसको अगर डायग्नोज कर लिया है और फिस्टुला का साइज छोटा है, तो हम पेशाब की थैली में अगर इसका कनेक्शन आगे की तरफ से है, पेशाब के रास्ते से है, ब्लैडर से या यूरेथ्रा से जैसा मैंने बताया था, तो एक प्लेन जो कैथेटर जिसको हम फोलिस कैथेटर बोलते हैं, जो पेशाब की थैली में पाइप डाल के रखते हैं, उसको अगर हम लंबे समय 6 से 8 हफ्ते 2-3 महीने तक रखें तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि छोटा फिस्टुला सिर्फ उससे ही ठीक हो जाते हैं बिना ऑपरेशन। लेकिन अगर फिस्टुला का साइज बड़ा है और फोलिस के बाद भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो इस तरह के फिस्टुलास के लिए फिर ऑपरेशन किया जाता है। ये दोनों रास्ते जो आपस में जुड़ गए हैं, वजाइना और पेशाब का रास्ता, उनको ऑपरेशन करके अलग किया जाता है जिससे कि पेशाब की या लैट्रिन की लीकेज वजाइना के थ्रू ना हो।
0: तो इसे क्या मेडिसिन के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है कि सिर्फ फोलिस कैथेटर या सर्जरी के द्वारा ही ठीक होता है?
1: नहीं, देखिए, मेडिसिन जो है वो इसलिए दी जाती है जिससे कि इन्फेक्शन ना हो, वहां पे साफ सफाई रहे, लेकिन इसका इलाज फोलिस कैथेटर या फिर अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर सर्जिकली ही इसको करेक्ट किया जाता है।
0: तो किसी महिला को जब सर्जरी के थ्रू जाना पड़ता है, सर्जरी करवाने ही पड़ती है, तो सर्जरी करवाने के बाद उसे क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए?
1: देखिए, इसकी सर्जरी भी मैं कहूंगा आसान सर्जरी नहीं है, और जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं इस फील्ड में जिन्हें फिस्टुला ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग ली हुई है, उन्हीं को इस तरह की सर्जरी अटेम्प्ट करनी चाहिए मैं कहूंगा, क्योंकि इसके बार बार होने के भी चांसेस रहते हैं, एक और सर्जरी के फेल होने की भी संभावना रहती है अगर एक अनट्रेंड आदमी इस चीज की सर्जरी करता है। तो पहली बात, दूसरी बात, आपने कहा कि पोस्ट ऑप में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

0: जरूर पोस्ट ऑप पीरियड में या ऑपरेशन के बाद के समय में डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। सारी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक, दर्द की, सूजन की दवाई जो डॉक्टर देते हैं वो लेनी चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और फोलिस कैथेटर जिसकी बात मैंने शुरू में की थी वो ऑपरेशन के बाद भी मरीज को 1.5 से 2 महीने रखना पड़ता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उस समय मरीज को पेशाब के लिए जोर ना लगाना पड़े और पेशाब आराम से थैली में आता रहे।
1: सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सर्जरी होने के बाद ऐसे पेशेंट्स में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं?
0: देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह के मरीज, जो महिलाएं जो ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला से ग्रसित हैं, उनका सामाजिक जीवन बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंच जाता है। ऐसे मरीजों को मेरी दोबारा आपके प्रोग्राम के थ्रू सलाह है कि बिना देर किए जिस भी क्षण उनको ये लगे कि उनके वजाइना से किसी भी तरह का डिस्चार्ज, चाहे वो यूरिन का या स्टूल का अगर है, खासतौर पर डिलीवरी के बाद, तो बिना देरी किए उन्हें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, समय पे इसका इलाज करा लेना चाहिए। अगर समय पे इसका इलाज हो जाए पूरी तरीके से तो ये महिलाएं अपना बाकी जीवन बिल्कुल ठीक ठाक बिता सकती हैं और आगे की जिंदगी में इन्हें किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े।
1: सर, एक और सवाल आ रहा है मन में कि अगर इस डिजीज को हम अनट्रीटेड छोड़ दें, इसका इलाज ना करवाया जाए, तो क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है?
0: बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया कि क्योंकि एक एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन, एक रास्ता बना हुआ है वजाइना में और या तो पेशाब के रास्ते के साथ या लेटरिन के रास्ते के साथ, तो अक्सर पेशाब और लेटरिन वजाइना के थ्रू निकलती रहती है जिसपे मरीज का कंट्रोल नहीं है, कपड़े खराब होते रहते हैं और अक्सर ऐसे मरीजों को इन्फेक्शन, रिपीटेड इन्फेक्शन पेशाब के रास्ते का, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, जो किडनी तक पहुंच सकता है, बच्चेदानी का इन्फेक्शन, इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। और अक्सर अगर ये इन्फेक्शन का इलाज ना किया जाए तो ये इन्फेक्शन जानलेवा भी साबित हो सकता है।
1: अंत में हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे कि वो खुद को इस बीमारी से बचा सकें?
0: देखिए, सबसे पहले जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में 3 बातें बताई थी इस बीमारी की मुख्य वजह, कम उम्र में मां बनना, तो मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा और भारत सरकार भी सबको सलाह देती है कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल है। अगर हम अपने घर की लड़कियों की शादी कम उम्र में कर देती हैं और वो कम उम्र में माँ बन जाती हैं तो ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला के डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लड़कियों की शादी कम उम्र में ना करें, पहली बात। दूसरी बात, सभी महिलाओं को मेरी सलाह है कि प्रेगनेंसी में वो अपने डॉक्टर से नियमित चेकअप के लिए जाएं, उनके पास घर के आसपास जो भी अस्पताल, सरकारी, प्राइवेट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, आंगनवाड़ी वर्कर, किसी की भी सलाह लें और अपनी प्रेगनेंसी उनकी देखरेख में करें। और जैसी वो सलाह दें, कोशिश करें अगर डिलीवरी किसी इंस्टीट्यूट के अंदर हो सके, यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हमेशा बेटर रहती है बजाय कि होम डिलीवरी के। और अगर ऑपरेशन के बाद किसी भी तरह की इस तरह की समस्या, जैसे मैंने बताया, एक एबनॉर्मल डिस्चार्ज, चाहे वो पेशाब का या लैट्रिन का, उनको अपनी वजाइना से दिखाई देता है तो बिना देर किए नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला, कारण, लक्षण और उपचार, अभी आप अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और डॉक्टर RML हॉस्पिटल में सर्जरी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर निखिल गुप्ता से ली गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
4: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
5: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
4: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
5: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजे healthairdelhi@gmail.com पर।
2: श्रोताओं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सड़क यातायात चोटें दुनिया भर में मृत्यु और विकलांगता का एक प्रमुख कारण है। सड़क सुरक्षा और क्षति प्रबंध, आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। हमारे विशेषज्ञ हैं न्यूरोसर्जन डॉक्टर PK सचदेवा। आपसे बात कर रहे हैं डॉक्टर जवाहरलाल जैन।
6: आज की इस तेज रफ्तार भरी जिंदगी में दुर्घटनाएं जीवन का एक अभिन्न अंग बनकर रह गई है। दुर्घटनाएं चाहे बस से हो, कार से हो, साइकिल से हो, ट्रक से हो, ट्रेन से हो, हवाई जहाज से हो, कई स्थितियों में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये दुर्घटनाएं निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं। आकस्मिक सड़क दुर्घटनाओं के रोगियों को यदि समय पर उचित प्राथमिक सहायता मिल जाए तो करीब 25% जाने बचाई जा सकती हैं और उनके घर की खुशहाली बरकरार रखी जा सकती है। क्यों होती हैं दुर्घटनाएं? क्या लोगों में पेशेंस, धैर्य की कमी है? हर एक को जल्दी है, कानून का पालन ना करना, रोड सेफ्टी के रूल्स को ना फॉलो करना, ओवर स्पीडिंग, हेलमेट का प्रयोग ना करना,

0: शराब पीकर गाड़ी चलाना, बैड आईसाइट होना, शायद ये भी एक कुछ वजह हैं। WHO की एक स्टडी के अनुसार हर 3 में से 1 व्यक्ति की डेथ जो सड़क दुर्घटना में होती है वह ओवर स्पीडिंग की वजह से होती है। ट्रॉमा व रोड सेफ्टी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर PK सचदेवा। डॉक्टर सचदेवा वरिष्ठ न्यूरोसर्जन है, चेयरमैन है न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में, और आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। डॉक्टर, सबसे पहले यही जान लेना जरूरी है कि दुर्घटनाएं जो है आज के परिपेक्ष में क्यों बढ़ती जा रही हैं और कौन कौन सी दुर्घटनाएं ज्यादा देखने में आती हैं?
1: लोगों के अंदर पेशेंस की डेफिनेटली बहुत कमी है। ट्रैफिक के रूल्स लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेन ड्राइविंग नहीं करते हैं। अगर हम लोग लेन ड्राइविंग भी करनी शुरू कर दें तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट बहुत कम हो सकते हैं। देखो, व्हीकल मेनली जो यूज होते हैं रोड्स के ऊपर दो तरह के होते हैं, तो 2-व्हीलर यूज होते हैं या 4-व्हीलर यूज होते हैं। अब 2-व्हीलर वाले कितने आम लोग ये देखते हैं कि बिना हेलमेट के ही चल पड़ते हैं, तो हर इवन पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहन के चलना चाहिए। अगर हम लोग हेलमेट पहनना शुरू कर सकते हैं कम से कम 70% दुर्घटनाएं उससे कम की जा सकती हैं। सेकेंड थिंग इज स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग कभी नहीं करनी चाहिए। हर सड़क के ऊपर एक एक इंडिकेटर लगा होता है कि आप इस स्पीड को बियॉन्ड नहीं जाएंगे
0: जी।
1: उसमें यह कि गवर्नमेंट ने देखो जितने पब्लिक व्हीकल्स हैं, पब्लिक व्हीकल्स के अंदर तो उन्होंने पहले से ही लिमिट लगा दी है कि आपका एक्सीलेटर उससे ऊपर जा ही नहीं सकता, पर बाकी जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, प्राइवेट व्हीकल्स के अंदर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। ओवरटेकिंग के अंदर ही कितने सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक्सीडेंट इज ए वेरी वेरी मेजर कॉज ऑफ डेथ इन आवर सिटी। जितने भी फास्ट मूविंग व्हीकल हैं इनके जो एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट से अगर सर में चोट लगती है, सर की चोट लगने की वजह से डेथ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड अगर पेशेंट बच भी जाता है, अगर उसके ब्रेन में डैमेज हो जाता है तो उसकी रिकवरी ही पॉसिबल नहीं हो पाती है, पेशेंट बेड रिडन हो जाते हैं। इसलिए द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एक्सीडेंटल पेशेंट्स।
0: आप क्या समझते हैं, सीट बेल्ट ना पहनना, शराब पी के गाड़ी चलाना, क्या ये कुछ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं एक्सीडेंट में या सिर्फ कहने की बात है?
1: हालांकि सरकार ने एक परमिसिबल लिमिट रखी हुई है, पर मेरे आइडिया से आपको शराब पी के कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। कंट्रोल खो देने की वजह से गाड़ी इधर उधर जा सकती है, गाड़ी इम्पैक्ट कर सकती है, दूसरी गाड़ी के साथ इम्पैक्ट कर सकती है, दूसरा अगर सर में चोट लग जाए तो उसकी वजह से भी चली जाती है। और डेफिनेटली जब से हमारी कंट्री के अंदर ये रूल बना है कि बिना सीट बेल्ट के आप गाड़ी नहीं चला सकते, एक्सीडेंट सीट बेल्ट एक्सीडेंट को तो नहीं प्रिवेंट कर सकती, पर यस द पेशेंट को जरूर प्रिवेंट कर सकती है। उससे सिवेरिटी ऑफ इंजरी जो है वो बहुत कम हो जाती है। पर मगर अगर आप एज ए सिटीजन अगर आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी स्कीम चलाई हुई है, 102 डायल कीजिए तो आपको ट्रॉमा एम्बुलेंस उसी समय आ जाती है। दैट डजंट टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम, और ट्रॉमा एम्बुलेंस वाले जो है ड्राइवर और साथ में जो कंडक्टर हैं, दे आर ट्रेन पीपल, दे कैन हैंडल द ट्रॉमा केसेस।
0: डॉक्टर साहब, कैसे पता लगे कि जो इंजरी हुई है वो एक साइड में बेहोश है? अगर बेहोश है तो क्या उसका होना चाहिए? अगर वो बेहोश नहीं है तो क्या उसको पानी पिलाना चाहिए? कुछ लोग उसे मुंह में पानी डाल देते हैं, कुछ लोग उसको जूता सुंघा देते हैं, शायद ऐसे ही हो गया होगा, और सर पे चोट लगी हुई है, स्पाइन में चोट लगी, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करें उस वक्त इमीडिएटली?
1: देखो, जब भी किसी को एक्सीडेंट के विक्टिम को चोट लगती है तो दो तरह की चोट जो है मेन थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग होती है। एक तो सर की चोट जिसको हेड इंजरी कहते हैं और ब्रेन इंजरी कहते हैं, और दूसरी जो ट्रॉमेटाइज सबसे ज्यादा चोट होती है वो थी स्पाइन की इंजरी। अगर बेहोश पेशेंट होता है तो बेहोश पेशेंट के अंदर ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि वो खाली सर की चोट की वजह से बेहोश है या उसको साथ में स्पाइन इंजरी भी है। तो सीधा सा एक मेथड है कि जब भी आप इस तरह के पेशेंट को डील कर रहे हैं, पेशेंट को एक तो स्ट्रेट रखिए, और अगर उसको उल्टी वगैरह आ रही है तो उसको लेटरल पोजीशन में लिटा दीजिए, और पूरी बॉडी को रोटेट कीजिए। ये नहीं है कि खाली गर्दन को आपने रोटेट कर दिया। अगर उसको सर्वाइकल कॉर्ड में इंजरी है तो पेशेंट कभी भी इम्प्रूव नहीं करेगा। अगर आप उसको एज ए पूरी बॉडी को रोटेट करते हैं तो देर आर चांसेस स्पाइनल कॉर्ड विल बी प्रिजर्व्ड एंड देन यू कैन शिफ्ट द पेशेंट। और जनरल पब्लिक को भी ये कोई पानी नहीं पिलाना चाहिए कभी, ये जूता सूंघना वगैरह सब बेकार की बातें होती हैं।
0: डॉक्टर साहब, अनकॉन्शियस पेशेंट

0: जाता है तो बाकी कागजी कार्रवाई होती रहती है, बट यह है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट इमीडिएटली ऑन रीचिंग दी इमरजेंसी शुरू हो जाता है। अब जैसे सिर की चोट लगी है, सिर की चोट के अंदर एक्सटेंट ऑफ इंजरी देखने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि उसके अंदर ब्लीडिंग किस एक्सटेंट तक है। या तो ये ट्रीटमेंट दवाइयों से किया जाएगा या सर्जरी से किया जाएगा। इन मेजोरिटी ऑफ दी हॉस्पिटल इन दिल्ली सीटी स्कैन की मशीन जो है कैजुअल्टी के पास में ही होती है। जैसे ही पेशेंट पहुंचता है उसका प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट शुरू करके आईवी फ्लूइड लगा के कुछ दवाइयां उसको आईवी दे के इमीडिएटली सीटी स्कैन करा लिया जाता है। एंड पूरी एक ट्रॉमा टीम होती है हॉस्पिटल के अंदर, जो उस ट्रॉमा टीम को अलर्ट कर दिया जाता है। उसके अलर्ट करने के बाद सीटी स्कैन की फाइंडिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मरीज का इलाज ऑपरेशन से होना है या दवाइयों से होना है। अगेन आई विल से द प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट इन केसेस ऑफ हेड इंजरी।
1: डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि न्यूरो सर्जरी की सुविधाएं जो है, ट्रॉमा सेंटर्स की सुविधाएं दिल्ली में या आसपास के शहरों में एडिक्वेट उपलब्ध है? आप समझते हैं कि पर्याप्त मात्रा में है या लैक ऑफ फैसिलिटी वैसे लोगों की मृत्यु हो रही है?
0: लैक ऑफ फैसिलिटीज एक टाइम पे दिल्ली एनसीआर में होता था, पर दिल्ली एनसीआर के अंदर इस समय बहुत अच्छे अच्छे बड़े हॉस्पिटल अवेलेबल हैं। हाँ, इफ यू गो इनटू द पेरिफेरी डेफिनेटली दिस प्रॉब्लम इज देयर। उसमें यही होता है कि आप पेशेंट को किसी भी नियरेस्ट सेंटर पे ले जाइए, वहां से एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लेके द पेशेंट कैन बी शिफ्टेड टू अ बिग हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल।
1: डॉक्टर साहब, कुछ पेरेंट्स का रोल है, कुछ आपके समाज का भी रोल है?
0: पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है इस मामले के अंदर। कोई भी इंसान को बिना ड्राइविंग लाइसेंस लिए गाड़ी अलाउ नहीं करनी चाहिए। हमारे पास भी कुछ केस आते हैं जैसे बच्चे स्कूटियां चलाते हैं, पर मगर एज ए हम भी उनकी पेशेंट पेरेंट्स की क्लासेस लेते हैं। पेरेंट्स को हम यही कहते हैं कि किसी भी बच्चे को आप बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाने दीजिए, उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। पेशेंट के कोर्ट केस बन जाते हैं, पेशेंट को बहुत भारी जुर्माना दे देना पड़ता है और लाइफ थ्रेटनिंग लाइफ रिस्क तो होता ही हो। पेरेंट्स दे हैव अ वेरी बिग रोल इन एजुकेटिंग देयर चिल्ड्रन। दे मस्ट टीच देयर चिल्ड्रन कि अगर गाड़ी चलाने का क्या तरीका होता है, हेलमेट पहनना जरूरी है और ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, आपको ढंग से गाड़ी चलानी चाहिए।
1: डॉक्टर सचदेवा, आपने जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: सड़क सुरक्षा और क्षति प्रबंध, अभी आप न्यूरोसर्जन डॉक्टर पी के सचदेवा से ली गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थे डॉक्टर जवाहरलाल जैन। दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? इस कार्यक्रम में और आप क्या सुनना चाहते हैं? आप हमें लिख सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, हमारे कार्यक्रम में कोई सुझाव देना चाहें, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें तो आप हमें मेल कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारी मेल आईडी healthairdelhi@gmail.com। इसके अलावा भी अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं तो हमें अवश्य लिखिए। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स और DRM 810 किलो हर्ट्स पर। हम अपने सुनने वालों को बता दें, 10:10 पर आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आप अपने ईमेल हमें भेज सकते हैं ipradiodelhi@gmail.com। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम धरती आकाश।
4: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर साल 22 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के संरक्षण के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। जैव विविधता यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का अर्थ है पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवित प्राणियों, पौधों और सूक्ष्म जीवों में विविधता। ये हमें भोजन, दवाइयाँ, शुद्ध हवा, स्वच्छ जल और जलवायु को संतुलित

0: रखने जैसे अनगिनत संसाधन प्रदान करती हैं। भारत की भूमिका भारत जैव विविधता के मामले में दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र संधि का हिस्सा होने के नाते भारत ने अपने प्राकृतिक संसाधनों और ज्ञान की रक्षा के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 भी लागू किया है। वर्तमान में दिल्ली सहित उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। यूपी के बांदा में तो रिकॉर्ड पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन तक यही हाल रहने वाला है। ऐसे में चर्चा हो रही है नौतपा गर्मी की। आखिर क्या है, कब कब होता है, इसके कारण क्या है और बचने के उपाय, सावधानियां क्या होंगी, इन सब पर जानने के लिए सुनते हैं प्रोफेसर कर्नल संजय श्रीवास्तव से कमल किशोर की ये बातचीत।
1: आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कर्नल प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी को। आप क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन हैं और आप लाइटनिंग मैन के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात भी हैं और इस क्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता भी काफी हासिल है। आपने कई कार्य किए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: कर्नल प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, ये जो नौतपा है ये क्या होता है, इसमें क्या होता है?
2: नौतपा, जैसे कि आपने बताया कि गर्मी के, भीषण गर्मी के 9 दिन, जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, जब हमारा जो सूरज है वो नए नक्षत्र में प्रवेश करता है और इस वक्त सूरज सीधी रोशनी हमारी धरती पे देता है, तो जितने भी हमारे क्षेत्र, जैसे भारत में अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, कर्क रेखा की बात करें, तो उसकी लाइन में जितने भी क्षेत्र आते हैं, जो कि मुख्यतः मध्य भारत से गुजरता है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, मिजोरम तक होते हुए,
1: यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उत्तर भारत और पूर्वी भारत लगभग इसमें कवर होते हैं।
2: बिल्कुल, पूरे कवर होते हैं। और ये जो रेगिस्तान की ओर से गर्म हवा आती है, ये आग में घी का काम करती है। तो एक तो सूरज की रोशनी और रेगिस्तान से चलने वाली गर्म हवा, दोनों मिलाकर पूरे भारत को, खास करके मध्य भारत को, बहुत अच्छे से गर्मी से पाट देते हैं। और ये जब गर्मी बढ़ती है तो तापमान बढ़ता है, तापमान के साथ साथ आप देखेंगे वातावरण में नमी कम हो जाती है, सूखापन ज्यादा हो जाता है और इसके कारण हर जगह आप लो प्रेशर देखेंगे, बिल्डअप होता है, जिसके कारण बवंडर, आंधियां चलती हैं। मई के महीने में आप देखेंगे हमारे राजस्थान से धूल भरी आंधी भी आती है। तो इन सबों का जो मिश्रित प्रभाव होता है वो हमारे पूरे सिस्टम पे, हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे इकोनॉमी पे, हमारे शहरों पे, गांवों पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
1: प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, ये जो नौतपा होता है इससे तय कैसे किया जाता है, किस प्रकार हम इसकी पहचान करेंगे, इसके लक्षण क्या होते हैं?
2: नौतपा के सबसे पहला लक्षण है कि जब तापमान बढ़ जाए, जब तापमान 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाए, तब हम लोग मानते हैं कि नौतपा शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान कहता है कि जब 5 डिग्री से ज्यादा डिपार्चर हो तो उसको हम एक्सट्रीम हीट मानते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे दिल्ली में 44 डिग्री चल रहा है, बांदा है जहां 47.8 डिग्री टेम्परेचर चल रहा, चुरू, जैसलमेर, तो ये सारे इलाके हैं जो नौतपा से सबसे ज्यादा प्रभावित है और सबों में जो तापमान का स्केल है वो 45 डिग्री के आसपास चल रहा है, 45 से 48 डिग्री का तापमान होता है। और इसके साथ साथ दिन में गर्म हवाएं चलती हैं जिसे हम लू के नाम से भी जानते हैं, तो ये लू उसकी दूसरी पहचान है। तीसरी ये बात है कि हवा में नमी बिल्कुल कम हो जाती है और पानी की स्कार्सिटी हो जाती है। तो इस दौरान इंसान को, जानवर को, सभी को ये हिदायत दी जाती है कि जब पीक जो समर का पीरियड होता है, पीक टेम्परेचर का पीरियड है, 11 बजे से 4 बजे तक वो घर के अंदर रहें और अपने आप को तापमान से अधिक तापमान में एक्सपोज न करें और सुरक्षित रहें, छत के नीचे रहें, ठंडे स्थानों पर रहें।
1: अभी आपने ये बताया कि कहीं कहीं पर 43 डिग्री, कहीं कहीं 44, कहीं कहीं 45, 46 भी पहुंच जाता है, तो क्या ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तापमान होता है, तो उस अलग अलग जगहों पर भी नौतपा हम कह सकते हैं अलग अलग टाइम में?
2: लोकल सेंस में स्थानीय तौर पर आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं सूरज की जब गर्मी आती है, अगर वो सूरज की रोशनी घास पे या पानी पे पड़ती है तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन वही अगर पथरीले कंक्रीट वाले स्थानों में पड़ती है उन जगहों पे ज्यादा हो जाती है। अब जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, मेट्रो सिटी की बात करूं, तो यहाँ पे पॉल्यूशन, गाड़ियों का चलना, कंक्रीट, ये सारे मिलकर इस तापमान को और बढ़ा देते हैं,
1: तो हम इसे भी नौतपा कह सकते हैं। तापमान जब भी बढ़ जाए तो हम इसे नौतपा कहते हैं।
2: बिल्कुल
1: संजय जी, नौतपा जो इतना होता है, इतना तीव्र होता है, इतना तीखा होता है, तेज होता है, तो इसके वैज्ञानिक कारण क्या होते हैं?
2: देखिए, वैज्ञानिक कारण, सबसे पहला, सूरज जो कर्क रेखा के ऊपर होता है तो सीधी सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा हमारे धरती पे पड़ती है। आज नौतपा के वक्त जो दिन का समय होता है वो लंबा समय होता है, 17-18 घंटे का दिन होता है, तो 17-18 घंटे डायरेक्ट जो सीधा एक्सपोजर होता है उसके कारण लगातार वो गर्म होता जाता है और इसी कारण तापमान का ज्यादा असर दिखता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण हो जाता है वो नमी की कमी, और ये जो ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो तापमान और ह्यूमिडिटी दोनों मिलाकर हमें एक हीट इंडेक्स कहते हैं।

0: आमतौर पे एक इंसान का शरीर 37 डिग्री हीट इंडेक्स को झेल सकता है, लेकिन हीट और मॉइस्चर मिलके ये कई बार 52-54 डिग्री का भी आपको असर दिखाते हैं। तो आप देखते होंगे कई लोग जो बाहर खड़े हैं वो खड़े खड़े गिर जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, उनको लू लग जाती है, उल्टियां होती है। तो ये नौतपा का प्रभाव होता है। तो जो मुख्य वैज्ञानिक कारण है, सबसे पहला सूरज का कर्क रेखा के सीधा ऊपर आना, और दूसरा आपके टेम्परेचर, आपकी ह्यूमिडिटी का कम हो जाना।
1: तो क्या ये नौतपा 9 दिनों का ही होता है या इसकी समय सीमा कुछ बढ़ भी जाती है, जैसे कि हम नाम से नौतपा?
0: देखिए, नाम से हमारे यहाँ नौतपा कहा जाता है, आमतौर पे ये 9 दिनों की होती है, लेकिन जो अभी आप देख रहे हैं स्थिति चल रही है, तो 25 मई के पहले ही नौतपा ऐसी स्थिति हो गई है। तो ये जरूरी नहीं है कि 9 दिन के लिए ही हो, ये 11 दिन 12 दिन भी हो सकते हैं। और इसका नापने का जो स्केल है वो तापमान है, जब तापमान 44 से 45 डिग्री के ऊपर चला जाए तब हम उसको नौतपा कहते हैं।
1: जी कर्नल साहब, ये ऐसा माना जाता है कि जितनी अधिक गर्मी होगी उतनी अच्छी बारिश होगी, क्या ये अनुमान सही है?
0: बिल्कुल, ये एक मौसम का चक्र है, और जितनी अधिक गर्मी होगी उतना लो प्रेशर का एरिया बनेगा और उतनी ही ज्यादा मॉइस्चर हवा में लोड होगी। इनफैक्ट हमारी एक रिसर्च के अनुसार 1 डिग्री जब तापमान बढ़ता है तो जो हमारा वातावरण है उसमें मॉइस्चर लोडिंग, जो नमी की लोडिंग की कैपेसिटी है, वो 7-12% बढ़ जाती। तो इसीलिए जितनी ज्यादा ये नौतपा में तापमान होगा उतना ज्यादा मॉइस्चर बनेगा और उतनी अच्छी फिर बारिश होगी। ये लो प्रेशर के कारण जो समुद्र से आने वाली हवाएं हैं वो ज्यादा तेजी से आकर्षित होंगी और मॉनसून निर्विरोध बिल्कुल बिना बाधा के पूरे क्षेत्रों में अच्छे से बारिश कर पाते हैं।
1: वैसे पशु पक्षी और इंसान पर तो असर होता ही है, कृषि पर भी यानी कि पेड़ पौधों पर भी इसका क्या असर होता है?
0: देखिए, ये जो नौतपा है इस वक्त इंसान पशु के साथ साथ हमारे पौधों पे, हमारे जल जीवन पे इसका बहुत असर होता है। जहां तक प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, अगर ये नौतपा प्रोलॉन्ग हो जाता है, लंबे समय तक चला जाता है, तो हमारी जो भी फसलें हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जो हमारे पत्ते हैं वो गर्मी के कारण मुरझा जाते हैं,
1: झुलस जाते हैं।
0: और हमारी जो सब्जियां होती हैं, स्पेशली वेजिटेबल और अभी फलों का मौसम है, खास करके आम, लीची, ये सब लगे होते हैं, तो इनपे जब ज्यादा तापमान होता है तो इनके झुलसने का खतरा होता है।
1: यानी कि जो छोटे छोटे पौधे हैं जिनकी जड़ें नीचे तक नहीं जाती हैं, लगभग ऊपर ही रहती हैं, तो उनमें जो झुलसने का जो खतरा है वो बढ़ा रहता है और इसमें उनका असर ज्यादा होता है।
0: बिल्कुल, ये जो छोटे छोटे पौधे हैं उनके पत्ते भी अगर आप देखेंगे तो वो थोड़े कमजोर होते हैं और उनमें तुरंत गर्मी या तुरंत सर्दी का असर होता है, इसीलिए उन पर प्रभाव ज्यादा पड़ता है। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ हैं, जैसे आप पीपल का पेड़ देख ले, उसके पत्ते मोटे होते हैं, उसके अंदर मॉइस्चर काफी अच्छा होता है, तो उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। और इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब भी नौतपा हो तो ऐसे पेड़ों के, छायादार पेड़ों के नीचे जाओ जिसके पेड़ के पत्ते हो वो घने हो और वो आपको उस पत्तों में जो मॉइस्चर है उसके माध्यम से, जो हवाओं के माध्यम से आपको ठंडी ठंडी हवाएं दे, ठंडक दे, जिससे कि आप पे प्रतिकूल असर ना पड़े।
1: जैसे आपने कहा पीपल के पत्ते, उसी प्रकार से बरगद के पेड़ हैं और उसी प्रकार से नीम के पेड़ हैं। नीम के पेड़ के पत्ते छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत घने होते हैं और उसके छांव में बड़ा सुकून सा होता है।
0: बिल्कुल, इनफैक्ट अगर आप नीम के पत्तों की बात करें तो उसकी जो हीलिंग कैपेसिटी होती है, उसके अंदर कई ऐसे तत्व होते हैं जिससे कि आपके स्वास्थ्य को काफी फायदा होता है। उस इलाके में जो कीड़े मकोड़े हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो वायरस बैक्टीरिया है उनपे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आप देखेंगे हमारे गाँव में काफी संख्या में घरों के सामने जहाँ आबादी रहती है नीम के पत्ते लगाए जाते हैं, तुलसी के पौधे लगाए जाते हैं। तो इस तरीके के जो भी हमारी वनस्पति संपदा है उसको गाँव में, जंगलों में काफी अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है।
1: जी, इस मौसम में पेड़ पौधे, इंसान, पशु पक्षी सबके लिए बड़ी नुकसानदायक होता है। कई बार ऐसे भी होता है कि जो कीड़े मकोड़े हैं जो हमारे लिए जो नुकसानदायक हैं, क्या उनके नष्ट होने की संभावना बनी रहती है इस नौतपा के मौसम में?
0: जो कीड़े मकोड़े वायरस होते हैं, आपने देखा होगा कोविड से हम लोग गुजरे हैं कुछ साल पहले,
1: जी,
0: और जहां ज्यादा ठंडक होती थी वहां पे कोविड के होने का चांस ज्यादा होता। तो जब ये गर्म तापमान होता है तो ये कीड़े मकोड़े वाकई में समाप्त हो जाते हैं। स्पेशली ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म बैक्टीरिया, कीटाणु, ये सब होते हैं, इनकी मोर्टैलिटी ज्यादा होती है और ये समाप्त हो जाते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ एक बेसिक साइंस है कि अगर आपको कीड़े मकोड़ों से बचना हो, आपके पानी को शुद्ध करना हो, तो आप उसे गर्म कर लें। तो ये अधिक तापमान से उनका भी नुकसान था। और ये मौसम का बहुत एक प्यूरिफिकेशन का एक चक्र है। आदमी भी, इंसान भी, पशु पक्षी भी इस मौसम के दौरान जिस तरीके से ज्यादा पानी पीता है, फलों पे ज्यादा डिपेंड करता है, सब्जी ज्यादा खाते हैं, तो इससे एक डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो ये हमारे एक शुद्धिकरण का समय है और जब फिर बारिश का समय आता है तो हम बिल्कुल ताजा होकर पूरी ऊर्जा के साथ अपनी खेती में लगते हैं।
1: हम तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि नौतपा के कई नुकसान हैं तो उसके फायदे भी हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये जो गर्मी, बारिश और सर्दी का चक्र है, ये तीनों हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। आज गर्मी होती है तो हमारे समुद्र में भाप बनता है, बादल बनता है, बारिश होती है, फिर सर्दी आती है तो ये बर्फ बन के हमारे हिमालय पे

0: बनते हैं और वही वाटर टावर हमें देश की पूरी नदियों में पानी लाके पूरे देश को पानी देता है। तो एक ये चक्र है और मैं चाहता हूँ कि चाहे वो नौतपा हो या स्नोफॉल हो या बारिश का मौसम हो, तीनों मौसमों को अपने समय चक्र के अनुसार भरपूर होना चाहिए। उसी में हमारी खुशहाली है।
1: ये खुशहाली बनी रहे और इसी खुशहाली को बनाए रखने के लिए इस दौरान खासकर गर्मियों के मौसम, हालांकि हर मौसम में कुछ कुछ सावधानियां तो बरतनी ही पड़ती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में देखा आपने शुरुआत में भी ये कहा कि नमी की कमी हो जाती है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, धरती बहुत ज्यादा सूख जाती है और इंसान भी डिहाइड्रेट हो जाता है। तो
0: बिल्कुल इंसान भी डिहाइड्रेट हो जाता है, लेकिन हर प्रकृति के मौसम के लिए प्रकृति ने आपको समस्याओं का समाधान भी दिया है
1: जी।
0: तो इसीलिए अगर आप सर्दी में 2 लीटर पानी पीते हैं तो नौतपा के दौरान आप 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। आप खाना समय पे जरूर खाएं, अच्छा पेट भरकर खाएं और तन पे जो कपड़े होते हैं वो अच्छे से पहने। आप आराम जरूर करें, आप सोए जरूर, 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें और एक स्वस्थ जीवन जिसमें थोड़ा एक्सरसाइज, व्यायाम, योग, इन सबों का अभ्यास करें तो मैं समझता हूँ हर मौसम चक्र के लिए, नौतपा ही क्यों, हर मौसम चक्र के लिए आप बिल्कुल ऊर्जावान रहेंगे
1: जी। कर्नल प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, आप लाइटनिंग मैन के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हैं, तो ये जो लाइटनिंग है अगर हम इसे बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो आप इसे किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, किस प्रकार समझाएंगे?
0: देखिए, हम सबों ने अपने घर की रसोई में देखा है जब गर्म तवे पे आप पानी डालते हैं तो बहुत भाप उठता है
1: जी
0: और सीधा वो आसमान की ओर जाता है। ये नौतपा अभी हमारी धरती को वैसे ही तपा रहा है और जैसे बारिश आएगी, मतलब ये बादल के कण आएंगे, यहाँ एवेपोरेशन होगा, थंडर स्टॉर्म आएगी और ये थंडर स्टॉर्म जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ये भाप के कण भी साथ में ऊपर जाते हैं और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। जब ये तापमान 0 डिग्री से कम हो जाता है तो ये भाप के कण बर्फ के कणों में बदल जाते हैं जिसे ग्रॉपेल कहते हैं। ये आपस में टकराते हैं और उससे घर्षण से बिजली पैदा होती है और यही बिजली इन्हीं भाप के कणों के माध्यम से जमीन पे गिरती है। अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें तो जो वज्रपात है, अचानक बहुत ज्यादा मात्रा में आकाशीय बिजली का आवाज और चमक के साथ जमीन पे गिरना, उसे कहते हैं। और इससे जो इंसान को नुकसान होता है वो सबसे पहले इंसान को करंट लगती है, इलेक्ट्रोक्यूशन होता है और उसकी तत्काल मौत हो जाती है। उसकी आंख में चमक के कारण उसको अंधा होने का खतरा होता है और जो बहुत तेज आवाज आती है उसके कारण आपके कानों के बहरेपन की संभावना है। तो वज्रपात भी एक आपदा मैं नहीं कहूंगा, ये एक प्रकृति का प्रोसेस है और जब हम खेती के लिए जाते हैं उससे पहले हमारे जो जमीन है, मिट्टी है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए ये वज्रपात होती है और जो नाइट्रोजन हमारे वातावरण में 79% वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको ये तोड़ के जमीन के साथ मिलाती है, मतलब खाद देने का काम करती है।
1: संजय जी, वैसे देखा जाता है कि इन दिनों यानी कि नौतपा के बाद में या फिर नौतपा के दौरान जैसे कि काफी धूल भरी आंधी चलती है और आंधी तूफान के साथ बारिश होती है तो अक्सर यानी कि पहली बारिश के समय बादल तेज गरजते हैं, बिजली कड़कती है, इसके क्या कारण है? शुरुआत में कुछ ज्यादा ही होते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि जितनी ज्यादा गर्मी धरती पे होगी, जैसे बादल आएंगे उतनी ही ज्यादा वो एवेपोरेशन या थंडरस्टॉर्म होगा और जो उसमें आसमान की ओर ऊपर उठने की गति है उतनी ही ज्यादा तेज होगी, उतनी ही ज्यादा घर्षण होती और इसी के कारण ये बादल ज्यादा गरजते हैं और ज्यादा बरसते हैं
1: जी जी।
0: नौतपा का जो पीरियड है हर जगह अलग अलग होता है, कुछ स्थानों पे नौतपा ऑलरेडी चल रहा है, इन ब्रॉड हम तो मानते हैं 25 मई से 2 जून तक, लेकिन बिहार के कुछ इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न इलाके हैं, वहाँ नौतपा ऑलरेडी है और वहाँ अभी मानसून आ रहा है, तो इस बार मानसून थोड़े जल्दी आ रहा है। आप देखेंगे 27-28 तारीख को जब मानसून केरल के तट पे आ जाएगा तो कुछ इलाकों में वज्रपात जल्दी शुरू हो जाएगी, बारिश जल्दी शुरू हो जाएगी।
1: कर्नल प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने नौतपा के विषय में बहुत सारी जानकारियां दी, सावधानियों के विषय में बातचीत किया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार, धन्यवाद।
2: अभी आप नौतपा गर्मी कारण और सावधानियां विषय पर प्रोफेसर कर्नल संजय श्रीवास्तव से कमल किशोर की बातचीत सुन रहे थे। इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर निशा भारद्वाज और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: इन जो दहलीज दुरूद व सलाम बार श्रीमंतगान अज़ीज़ बरनामा सुबह ये माँ दर सात नो वासीद जय हिंद बराबर बा सात हफ्तों सीधे गई तेहरान इला सात याद हिंद बराबर बा सात नो तेहरान पश्चिमी शवाद इनक बख्श फारसी ये बरून मर्दी आकाशवाणी बरनामा सुबह ये खुदरा दर मौज कूता दर अदीफा ये पावता हजारो ये सदो सी किलो हर पक्ष मी कुनात बरनामा ये सुबह मृदमा इबारत आजिया कहंगे हिंदी अखबार हिंदुजान तराना फारसी तफसीर रूस गुफ्तार امروز برنامه اسپاتلایت

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के

0: दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के सचिव अजय सहगल को फर्जी सहमति पत्र जमा करके धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन प्राप्त करने से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जांच पंजाब पुलिस ने किसानों की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की थी। विभाग की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 15 भूस्वामियों की 30.5 एकड़ भूमि के संबंध में फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रूपये तक की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रूपये हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Naresh Mako. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including the Ministry of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Addressing the Rozgar Mela through video conferencing, the Prime Minister said, "The world is eager to be a part of India's growth journey." Mr. Modi said that the country is also partnering with various countries of the world, aimed at providing opportunities, employment, and global exposure to the youth of the nation. The Prime Minister noted that India is becoming the trusted supply chain partner of the globe.
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: Mr. Modi added that every Indian is working with a commitment to making India Viksit Bharat by 2047, and to achieve this, the country is investing in several sectors. The Prime Minister highlighted that new employment opportunities are being created for the youth of the country.
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकट

0: आंगन। घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ मंजुला
1: और मैं हूँ प्रतिभा। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर।
1: और देखो,
0: और बिल्कुल बिल्कुल बोलो क्या बोलना।
1: देखो मंजुला, देखो घर आंगन कार्यक्रम है जहां पर बात होगी परिवार की, सेहत की, करियर की भी और इतिहास की गहराई।

0: मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में अभी आपने ये सुना फिल्म थी नीला आकाश।
1: और अब बात करते हैं कि ऐसी महिला की जिन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक नया रास्ता बनाया। यह कहानी है भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी की। आज के समय में डॉक्टर बनना एक करियर विकल्प है, लेकिन जरा सोचिए 18th century में जब लड़कियों की पढ़ाई तक पर सवाल उठते थे तब क्या होता था।
0: बिल्कुल, तब एक लड़की को डॉक्टर बनने का फैसला कितना बड़ा कदम रहा होगा ना मंजुला। आनंदीबाई का जन्म 1865 में हुआ, कम उम्र में शादी हुई जो उस समय आम बात थी। उनकी जिंदगी का एक मुश्किल मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने नवजात बेटे को खो दिया।
1: और अपनी संतान को खो देने के बाद उन्होंने ये प्रण लिया कि वो एक दिन डॉक्टर बनेंगी और ऐसी असमय मौत को रोकने का प्रयास करेंगी। उनके पति गोपाल राव ने भी उन्हें भरपूर सहयोग दिया और हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया।
0: बिल्कुल, और देखो एक भारतीय महिला उस दौर में विदेश जाकर मेडिकल पढ़ाई करने का निर्णय लेती है। न भाषा आसान न हालात, लेकिन इरादा एकदम साफ था। वो अमेरिका गई, पढ़ाई की और 1886 में मेडिकल डिग्री हासिल की। आनंदीबाई जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर बन गई और उन्होंने इतिहास रचा।
1: ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, ये उस सोच की जीत थी जो समाज से आगे चलने की हिम्मत रखती है। उनकी जिंदगी बहुत लंबी नहीं रही, सिर्फ 21 साल की उम्र में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उससे पहले वो एक ऐसा रास्ता बना चुकी थी जिस पर आज लाखों महिलाएं आत्मविश्वास से चल रही हैं।
0: और कभी कभी देखो बदलाव के लिए लंबी उम्र नहीं बल्कि बड़ा इरादा चाहिए होता है। आज जब हम अस्पताल में जाते हैं, महिला डॉक्टर से मिलते हैं या किसी लड़की को बड़े सपने देखते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उस रास्ते की शुरुआत आनंदीबाई जैसी महिलाओं ने ही की थी।
1: और सपना छोटा हो या बड़ा।

0: साधना सरगम और कुमार शानू की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी जुर्म।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 तक सिर्फ FM गोल्ड पर।
3: और दोस्तों, वक्त बदलता है, तकनीक बदलती है, लेकिन कुछ आवाजें समय से परे होती हैं। हम उसी आवाज का जश्न मना रहे हैं, आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों का। आकाशवाणी सिर्फ एक प्रसारण सेवा नहीं है, बल्कि भारत की धड़कन रही है। वो दौर जब एक रेडियो के आसपास पूरा परिवार जुटता था और हर कार्यक्रम एक साझा अनुभव बन जाता था।
0: और फिर आया डिजिटल युग और लगा कि शायद रेडियो पीछे छूट जाएगा, लेकिन आकाशवाणी ने खुद को और भी करीब आ गई। आज आकाशवाणी सिर्फ AM तक सीमित नहीं, बल्कि FM की दुनिया में भी इसकी मजबूत पहचान है। 1993 में आकाशवाणी ने एक नई पहल की, निजी कंपनियों को FM पर एयर टाइम देना शुरू किया।
3: दिल्ली और मुंबई से शुरू हुई ये पहल जल्द ही बड़े शहरों तक पहुंची और इसके साथ ही कंटेंट भी बदला। म्यूजिक, चैट शो और शहरी अंदाज के प्रोग्राम जो हैं वो लोकप्रिय हुए। आज यही FM हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, गाड़ी में, फोन में, हर जगह।
0: और अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, मोबाइल एप्स और लाइव चैनल लिंक के जरिए आप दुनिया के किसी भी कोने में आकाशवाणी को सुन सकते हैं। पॉडकास्ट ने भी सुनने का तरीका बदल दिया है, जहां समय की कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ आपकी पसंद मायने रखती है।
3: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा, तेजी से बदलती इस दुनिया में भी आकाशवाणी वही सुकून देती है, जहां आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। 90 साल का ये सफर सिर्फ तकनीक का नहीं, बल्कि भरोसे और जुड़ाव का है। तो सुनते रहिए, क्योंकि माध्यम बदलता है, लेकिन सच्ची आवाज हमेशा साथ रहती है।

0: अभी आपने ये गीत सुना, आवाज थी लता मंगेशकर और भूपेंद्र की।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: बात करते हैं स्वयं सहायता समूह की, मंजुला है ना, यानी कि SHG की, जो आज महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रहा है, या यूं कहें कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं के विकास की सीढ़ी है।
1: बिल्कुल सही कहा। ये 10 से 20 लोगों यानी मुख्य रूप से महिलाओं का समूह होता है, जो समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने और मजबूत करने के उद्देश्य से एक साथ मिलकर काम करता है।
0: बिल्कुल, तो जानते हैं कि SHG कैसे काम करता है। समूह के सभी सदस्य हर महीने एक छोटी राशि एक साझा फंड में जमा करते हैं। जब किसी सदस्य को पैसे की जरूरत होती है तो समूह जमा राशि में से कम ब्याज पर उसे लोन देता है।
1: और SHG का उद्देश्य लोगों, विशेषकर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ग्रामीण और शहरी जरूरतमंद को भारी कर से बचाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, उनमें नेतृत्व क्षमता के विकास करना, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और इस स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य है।
0: बिल्कुल, और देखो भारत सरकार और राज्य सरकार महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाती हैं, और सबसे प्रमुख जो है वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है।
1: बिल्कुल, और इसके तहत समूह को शुरुआती आर्थिक सहायता दी जाती है। अधिक जानकारी और अपने नजदीकी समूह से जुड़ने के लिए आजीविका मिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं।
0: और देखिए मंजुला, जानकारी तो हमारे श्रोता लेंगे ही, लेकिन हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, और जिसके लिए उन्हें हमें मेल करना होता है, और हमारा ईमेल आईडी है।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी तकदीर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: और प्रतिभा, गर्मी की जो छुट्टियां होती हैं वो सिर्फ घूमने का बहाना नहीं बल्कि खुद को फिर से खोजने का मौका होती हैं।
1: बिल्कुल
0: और अगर आप भीड़ से हटकर कुछ अलग, कुछ खास ढूंढ रहे हैं, शिमला, मनाली, मसूरी, ये सब बहुत हुआ, तो आज की ये यात्रा आपके लिए है। आज हम ले चलेंगे आपको उन जगहों पर जो सिर्फ देखी नहीं जाती है, महसूस की जाती है।
1: बिल्कुल। और देखो, सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को ले चलते हैं चोपड़ा, है ना, जहाँ हर सुबह एक नई शुरुआत लगती है। यहाँ की असली खूबसूरती सिर्फ उसके नजारों में नहीं, उसके सन्नाटे में है।
0: शांति में।
1: यहाँ का तुंगनाथ मंदिर, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, और वहां तक का जो ट्रैक है, हर कदम पर बदलते नजारे आपको देखने को मिलेंगे। और जब आप चंद्रशिला शिखर पर सूर्योदय देखते हैं, तो वो पल कैमरे में नहीं बल्कि दिल में कैद होते हैं।
0: क्या बात है, तुम तो कविता पढ़ दिया तुमने। और शानगढ़, जहां वक्त धीमा हो जाता है, शानगढ़ की पहचान है उसका विशाल घास का मैदान, इतना खुला कि लगता है जैसे आसमान जमीन को छू रहा हो। यहाँ एक शांगचूल महादेव मंदिर है, जहाँ के आसपास का इलाका बेहद पवित्र माना जाता है, जहाँ आज भी कोई पक्का निर्माण नहीं होता है।
1: और देखो, तवांग भी किसी लिहाज से कम नहीं है। यहाँ हर मोड़ पर एक कहानी तवांग को सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि और गहरा ही बनाती है। और यहाँ का जो तवांग मठ है, वो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, जहाँ शांति सिर्फ महसूस नहीं सुनाई भी देती है। रास्ते में सेला पास, बर्फ से ढकी ऊंचाई, और सेला झील जो बादलों के बीच तैरती सी लगती है, और फिर बुमला पास जहाँ भारत चीन सीमा है। और तवांग आपको ये नजारे ही नहीं देता बल्कि सुकून
0: सुकून
1: भी
0: देता
1: देता
0: है,
1: है।
0: बिल्कुल सही। और हाफलोंग बादलों का घर है, हाफलोंग की सबसे खास जगह है हाफलोंग झील, सुबह की धुंध में ढकी हुई जैसे कोई पेंटिंग हो। यहाँ के पहाड़ियों पर ट्रैकिंग और बर्ड वॉचिंग, जहाँ हर मोड़ पर कुछ नया दिखता है। और अगर आप किस्मत वाले हुए तो बादल इतने करीब होंगे कि आपको छू कर निकल जाएंगे। हाफलोंग शोर से दूर नहीं बल्कि शांति के और करीब आपको ले जाता है।
1: और कनाताल की बात करें तो सादगी में छुपी खूबसूरती, कनाताल का वो जो है वो सबसे बड़ा आकर्षण है उसका यहाँ पर अनछुआपन। यहाँ
0: बिल्कुल
1: एक सुरकंडा देवी मंदिर ट्रैक है, छोटा लेकिन ऊपर से दिखने वाला 360 डिग्री व्यू, बस ये सब देखने के लायक। कनाताल इको पार्क, यहाँ देवदार के पेड़ों के बीच चलना अपने आप में एक थेरेपी जैसा है। और रात में कैंपिंग के दौरान तारों से भरा आसमान जो शहरों से अब बिल्कुल नहीं दिखाई
0: तो
1: देता।
0: दोस्तों, इस बार सिर्फ जगह मत बदलिए, अपना नजरिया बदलिए, भीड़ से दूर जाइए उन रास्तों पर जहां कम लोग जाते हैं, क्योंकि अक्सर वही रास्ते आपको खुद से मिलाते हैं।

0: अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार को फिल्म सीता और गीता से।
1: और मंजुला, देखो आज जब हम किसी भी क्षेत्र में नजर दौड़ाते हैं तो हम महिलाओं की भागीदारी हर जगह पाते हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब हुई हैं। शिक्षा, तकनीकी, विज्ञान, रक्षा से लेकर मनोरंजन, हर क्षेत्र में महिलाओं ने सफलता पाई है।
0: बिल्कुल सही कहा। रूढ़िवादी सोच को पीछे छोड़ते हुए आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं, तो टूर गाइड इसको भी अपने प्रोफेशन के रूप में अपनाया जा सकता है। टूर गाइड के रूप में महिलाओं की भूमिका बड़ी है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त, स्वतंत्र तो बना ही रहा है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस और सांस्कृतिक जो परीक्षा होता है उसमें भी महिलाओं को मजबूत बना रहा है।
1: बिल्कुल। और देखो साथ ही पर्यटकों के साथ बातचीत करके विदेशी भाषा सीखने और विभिन्न संस्कृतियों को समझने का सुनहरा अवसर भी मिलता है। महिला पर्यटक विशेष रूप से महिला गाइड को ही प्राथमिकता देती है, और कुछ भी काम देखो आसान नहीं होता, अपने साथ चुनौतियां भी लाता है।
0: इस काम भी चुनौतियां हैं, असुरक्षा भाव बना रहता है, साथ ही लंबे टूर पर जाने या कई दिनों तक घर से बाहर रखने के कारण परिवार और बच्चों की देखभाल में संतुलन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल। और देखो अगर हमारे जो श्रोता हैं उनमें कोई महिलाएं हैं, अगर वो टूर गाइड बनना चाहती हैं तो कम से कम इसके लिए जो योग्यता है वो ये है कि 12वीं पास होना जरूरी है। यदि आप पर्यटन या इतिहास में डिग्री या डिप्लोमा करते हैं तो ये भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। और आप किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट इन टूरिस्ट गाइड या इन ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट भी कर सकती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। तो आप ट्रेवल कंपनियों के साथ जुड़कर काम कर सकती हैं या फिर एयरबीएनबी एक्सपीरियंस जैसे एप्स और वेबसाइट के माध्यम से अपना खुद का टूर भी डिजाइन और बेच सकती हैं। तो आप भी अपने सपने को पूरा कीजिए और इस डिफरेंट तरीके के करियर को जरूर अपनाएं।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी बुलंदी।
1: बिल्कुल। और प्रतिभा, गर्मियों का मौसम आ चुका है और धूप, पसीना और धूल, ये तीनों मिलकर हमारे बालों की हालत खराब कर देते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा समर हेयर केयर रूटीन जो आसान भी है और असरदार भी। तो सबसे पहली और जरूरी बात, साफ सफाई। गर्मियों में सिर की त्वचा जल्दी तैलीय हो जाती है, इसलिए हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार हल्के शैम्पू से बाल धोना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, तेल लगाना ना भूलें, नारियल या बादाम का हल्का सा तेल हफ्ते में 1 से 2 बार 20 से 30 मिनट के लिए।
0: और अब बात करते हैं एक असरदार घरेलू हेयर मास्क के। मुल्तानी मिट्टी, दही, एलोवेरा जेल और करी पत्ता के पाउडर को मिलाकर एक पेस्ट बनाइए। इसे बालों की जड़ों से लेकर पूरे बालों में लगाइए और 20 से 25 मिनट के बाद इसे धो लीजिए।
1: ये आपके सिर को ठंडक भी, अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करता है और बालों को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाता है।
0: और एक और जरूरी बात यह कि गर्मियों में कंडीशनर का इस्तेमाल करने से बचें। इसके बजाय बाल धोने के बाद हल्का सा हेयर सीरम लगाएं जो टॉक्सिन फ्री हो। इससे आपके जो बाल हैं वो मुलायम रहेंगे, सुलझे हुए रहेंगे और बिना चिपचिपाहट के रहेंगे।
1: और हाँ, शरीर को भीतर से ठंडा और तरोताजा रखना भी उतना ही जरूरी है। भरपूर पानी पिएं और फलों को अपने भोजन में शामिल करें। बाहर निकलते समय बालों को धूप से बचाने के लिए दुपट्टा या टोपी पहने या फिर स्कार्फ लगाएं। तो दोस्तों, इस गर्मी अपने बालों को थोड़ा अतिरिक्त ध्यान दीजिए,
0: क्योंकि जो हमारे अगर जो बाल हैं वो स्वस्थ रहेंगे तो हमें असली खूबसूरती भी देंगे। लहराते बालों में छुपा है क्योंकि एक राज, और सादगी में भी झलकता है इनका अंदाज़।

0: ये निखरा हुआ चेहरा, ये परेशान जुल्फें, कुछ तो कहिए मेरी सरकार, इरादा क्या है?
1: क्या
0: क्या तेरी जुल्फें हैं

0: हम सब उस्ताद हैं। अभी आपने इस फिल्म से गीत सुना, आवाज थी किशोर कुमार और आशा भोसले की।
1: अब बात ऑनलाइन होने वाली धोखाधड़ी के मामलों से जुड़ी हुई। आज डिजिटल अरेस्ट जैसे शब्द सुनने में आम लगते हैं। डिजिटल अरेस्ट एक फ्रॉड का तरीका है जिसमें अपराधी पुलिस, सीबीआई, ईडी या कस्टम अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के जरिए व्यक्ति को डराते हैं कि वो गिरफ्तार हो चुका है। वे पीड़ित को घर में ही डिजिटल रूप से कैद कर लेते हैं और छोड़ने के बदले पैसे मांगते हैं।
0: बिल्कुल, और देखो जबकि कानून में ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं है, डिजिटल अरेस्ट करने के लिए जालसाज तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जैसे कि आपके नाम का कोई कुरियर पकड़ा गया जिसमें गैर कानूनी सामान है, या आपके आधार से धोखाधड़ी करना और ये कहना कि आपका बैंक खाता या आधार कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ है।
1: बिल्कुल सही। तो वीडियो कॉल पर फर्जी वर्दी पहनकर गिरफ्तारी का वारंट दिखाना, पीड़ित को वीडियो कॉल पर बने रहने के लिए मजबूर करना और घर से न निकलने की धमकी देना, ऐसे में घबराए नहीं, पुलिस कभी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करती। तुरंत कॉल को काट दें और पुलिस की साइबर अपराध हेल्पलाइन को रिपोर्ट करें।
0: श्रोताओं, जानकारी के अभाव में आज बहुत से लोग इस तरह के स्कैम का शिकार हुए हैं और हो भी रहे हैं, तो ऐसी किसी भी तरह की परिस्थिति में संयम बनाकर रखें और अपने घर के लोगों से बात जरूर करें।

0: मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप एक गीत सुन रहे हैं, फिल्म है मेरे सनम।
1: बिल्कुल, और आज के इस सुहाने सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक नया दिन, नई ऊर्जा, नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। दीजिए मंजुला और
0: प्रतिभा को इजाजत।
1: नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर

ये जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देशभर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रूपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रूपये हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including the Ministry of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Addressing the Rozgar Mela through video conferencing, the Prime Minister said the world is eager to be a part of India's growth journey. Mr. Modi said that the country is also partnering with various countries aimed at providing opportunities, employment and global exposure to the youth of the nation. The Prime Minister noted that India is becoming the trusted supply chain partner of the globe.
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है भारत भी दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले रोजगार मिले उनका सामर्थ्य खिल उठे साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले
0: Mr. Modi added that every Indian is working with the commitment to making India Viksit Bharat by 2047, and to achieve this, the country is investing in several sectors. The Prime Minister highlighted that new employment opportunities are being created for the youth of the country.
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग-अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा

वाह क्या बात है। फिल्म का सबसे लोकप्रिय और अमर गीत तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, जिसे अपनी मधुर आवाज दी थी लता मंगेशकर जी ने, और इस गीत के लिए इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। श्रोताओं, खानदान उस दौर की फिल्म थी जब परिवार और रिश्तों की भावनाएं फिल्मों का केंद्र हुआ करती थीं। फिल्म की कहानी दो भाइयों के पारिवारिक और परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है, जहां गलतफहमियां और लालच परिवार को बांट देते हैं, लेकिन लास्ट में प्रेम और अपनापन सबको फिर एक कर देता है। फिल्म में सुनील दत्त ने गोविंद का किरदार निभाया था, जिसका एक हाथ दुर्घटना में प्रभावित हो जाता है, और उनके अभिनय को इतना ज्यादा सराहा गया कि उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। तो आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए एक ही फिल्म से कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं फिल्म खानदान की, और इससे जुड़े गानों से भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, सुनवाते रहेंगे इसके सुप्रसिद्ध गाने, और इसी बात पर हम आपको सुन

श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म खानदान दरअसल निर्देशक ए भीम सिंह की तमिल फिल्म भागा पेरिवनई का हिंदी रूपांतरण थी? और एक और दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का संगीत इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ कि संगीतकार रवि को फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार मिला। वहीं गीतकार राजेंद्र कृष्णन माफ कीजिएगा, वहीं गीतकार राजेंद्र कृष्ण को तुम ही मेरे मंदिर के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का सम्मान भी मिला। श्रोताओं, 60 के दशक का संगीत आज भी दिलों में बसता है क्योंकि उसमें सादगी भी थी और आत्मा भी। फिल्म खानदान में रिश्तों की जटिलताओं को बहुत ही सहज तरीके से दिखाया गया। संयुक्त परिवार, संपत्ति का बंटवारा, भाईचारे की परीक्षा, ये सभी विषय आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। फिल्म में खलनायक की भूमिका में प्राण ने अपने शानदार अभिनय से सभी का दिल

जीत लिया और उस दौर में प्राण साहब का नाम ही दर्शकों में रोमांच भर देता था। तो बात हम करते रहेंगे फिल्म खानदान की, तो चलिए सुन लेते हैं इस फिल्म से जुड़ा एक और गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। तो आज हम बात कर रहे हैं फिल्म खानदान की। तो साल 1965 हिंदी सिनेमा के लिए बेहद सुनहरा साल माना जाता है। उसी वर्ष वक्त, गाइड और जब जब फूल खिले जैसी बड़ी बड़ी फिल्में भी आईं, लेकिन खानदान ने अपनी भावनात्मक कहानी और संगीत के दम पर अलग पहचान बनाई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही और उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। तो चलिए अब सुनते हैं एक ऐसा चुलबुला गाना और मेले की रंगत से भरा हुआ गीत, ओ बल्लो सोच के मेले में जाना, इसी फिल्म से जुड़ा हुआ।

दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1964 में रिलीज हुई फिल्म खानदान की। तो उस दौर में फिल्मों की शूटिंग की तकनीक जो होती थी वो इतनी आधुनिक नहीं थी आज की जितनी। फिर भी कलाकारों का अभिनय इतना ज्यादा प्रभावशाली होता था कि दर्शक कहानी से पूरी तरह जुड़ जाते थे। सुनील दत्त अपने गंभीर और संवेदनशील अभिनय के लिए जाने जाते थे और नूतन की सादगी भरी अदाकारी दर्शकों के दिलों को छू जाती थी। इन दोनों की जोड़ी को इस फिल्म में बहुत ज्यादा सराहा गया, बहुत पसंद किया गया। दोस्तों, खानदान सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि भारतीय पारिवारिक मूल्यों का एक आईना है। इस फिल्म ने यह संदेश दिया कि चाहे कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाएं, परिवार का प्रेम अंततः सबको जोड़ ही देता है। और यही वजह है कि 6 दशक बाद भी ये फिल्म सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। तो आइए अब सुन लेते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में भक्ति रस से भरा ये गीत।

श्रोताओं, सच ही कहा गया है कि पुरानी फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती थीं, महसूस की जाती थीं। खानदान भी एक ऐसी ही फिल्म है जो हमारे परिवार, हमारे रिश्तों और हमारी भावनाओं को जोड़ती हैं। आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में जब रिश्तों के लिए हमारे पास समय नहीं हो रहा, समय कम पड़ता जा रहा है, तब ऐसी फिल्में हमें ठहर कर अपने और अपनों के बारे में सोचने का पूरा मौका देती हैं।

0: कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: इधर पंजाब चुन्नीवा रोजगार मेला अज रेल कोच फैक्टरी कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्कर्स पटियाला समेत दो थावां ते करवाया गया जिथे 281 नवनियुक्त लाभार्थियों नूं नियुक्ति पत्र वंडे गए। आरसीएफ कपूरथला विखे केंद्रीय पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रोग्राम की प्रधानगी करदिआं आख्या
2: रोजगार मेला देश भर में पावरफुल नेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया है जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी मेरिट बेस्ड और टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट के लिए। आज देश भर में 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स हैव बीन हैंडेड ओवर बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ये ईच अपॉइंटमेंट लेटर एक सिर्फ सरकारी या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, एक तरह से ये नेशन बिल्डिंग के लिए प्लेज भी है फॉर द शेयर्ड ड्रीम ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया।
1: बाद विच उन्हां ने 93 नवनियुक्त उम्मीदवारां नूं नियुक्ति पत्र तकसीम कीते। इस मौके नियुक्ति पत्र हासिल करने वाले नौजवानां ने सरकार दा शुक्रिया अदा कीता।
3: मेरा नाम अजय कुमार है, मैं राजस्थान के जिला बीकानेर का रहने वाला हूं और मेरा चयन SBI जूनियर एसोसिएट के पद पर हुआ है। केंद्र सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं।
4: मैं आकाश वर्मा जोधपुर राजस्थान से हूं, मुझे रेलवे में ऑफिस एग्जीक्यूटिव के पद पर नियुक्ति मिली है।
5: मेरा नाम ज्योति है, मैं हनुमानगढ़ राजस्थान की रहने वाली हूं। मैं SBI जूनियर एसोसिएट पद पर चयनित की गई हूं। मैं केंद्रीय सरकार को तहे दिल से इसके लिए धन्यवाद करती हूं।
6: माय नेम इज तजिंदर सिंह कंडा एंड आई एम फ्रॉम बठिंडा पंजाब and I'm selected for junior associate in State Bank of India. I'm so grateful for the central government to give me the opportunity to serve the nation.
1: ਉਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 188 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ
7: आज यहाँ पर 19वीं रोजगार मेला का आयोजन किया गया था जिसमें ऑल इंडिया स्तर पे लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं जिसमें से PLW में 188 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। 188 नियुक्तियों में से करीब 65 पंजाब से हैं, 128 इंडियन रेलवे में हैं और इंडियन रेलवे के 128 में से करीब 11 हैं वो पंजाब से संबंधित हैं।
1: इस दौरान नवनियुक्त उम्मीदवारों ने कहा
8: मेरा नाम विजय दुबे है, मैं उत्तर प्रदेश अयोध्या से बिलोंग करता हूं और मैंने यह परीक्षा 2024 में इस परीक्षा का फॉर्म भरा था। मुझे प्रोडक्शन यूनिट में एज अ जेई मैकेनिकल जॉब मैंने पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं।
9: मैं बेसिकली लुधियाने से हूं।
10: मेरा नाम शालिनी चतुर्वेदी है, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूं। 2026 में मेरा सिलेक्शन एज ए डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के तौर पे हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आभारी हूं क्योंकि उन्होंने इस एग्जाम को काफी अच्छे से कराया है, इसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई है और जो इस पद के हकदार थे उन्हें मतलब ये पद मिला है।
1: अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर बाद नवी दिल्ली पहुंच गए ने। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ विखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात करेंगे। श्री रूबियो कल विदेश मंत्री डॉ अजय शंकर नाल भी दवल्ली मीटिंग करेंगे। सोमवार नूं श्री रूबियो आगरा ते जयपुर जाणगे, इस तों बाद मंगलवार नूं नवी दिल्ली च क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग च शामिल होणगे। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRRNU ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ YouTube ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIRR ਜਲੰਧਰ। ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ED ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 15 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ 30 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 27 ਮਈ ਤੱਕ ED ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚ ਅੱਜ 91 ਪੈਸੇ ਫੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਐ ਜੋ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਚ ਤੀਜਾ ਵਾਧਾ ਏ। ਉਧਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਗੈਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਅੱਜ CNG ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ CNG ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰ 81 ਰੁਪਏ 9 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੇ ਕਿਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ ਹੈ ਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੇ ਕਿਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਸਪਲਾਈ ਅਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 42,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ 22 ਮਈ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਏ। पंजाब सरकार

0: निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री आरसीएस कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला में 19वां रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले में 281 नए मुस्तफिदीन को तकरूर इनामे तकसीम किए गए। आरसीएस कपूरथला में पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप पुरी ने प्रोग्राम की सदारत करते हुए बताया कि रोजगार मेला एक ताकतवर कौमी सरमाया बन गया है जो बर वक्त और शफाफ मुलाजमत को यकीनी बनाता है।
2: ये हमारा देश भर में रोजगार मेला ये एक पावरफुल नेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया है जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी मेरिट बेस्ड और टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट के लिए। मोर देन 5 लाख यंग इंडियंस हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडस्ट्री 4.0 जॉब रोल्स एज डेटा इंजीनियर्स मशीन लर्नर्स लर्निंग इंजीनियर्स क्लाउड स्पेशलिस्ट एंड सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स। India is preparing our young people to provide leadership in that area.
1: बाद में उन्होंने 93 नए मुलाजमत हासिल करने वालों को तकरीरनामे सौंपे। पटियाला में मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत हासिल करने वाले 188 नए उम्मीदवारों को तकरीरनामे सौंपे गए। पेट्रोलियम कुदरती गैस और सयाहत के मरकजी वजीर ममलिकत सुरेश गोपी ने तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का इफ्तिताह किया। 19वें कौमी रोजगार मेले के हिस्से के तौर पर इसका एहतमाम किया गया था। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू करदा रोजगार मेला भर्ती मुहिम से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है और इसका मकसद युवा शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति का रूप देना है। उन्होंने कहा कि तकरीरनामे एक मुकद्दस फरीजे का आगाज है। जनाब गोपी ने नौजवानों पर जोर दिया कि वह अपनी तवानाई कौमी तामीर में इस्तेमाल करें और विकसित भारत के नस्बुलैन को पूरा करें। पार्लियामानी मूर और इत्तलात और नशरियात के वजीर ममलिकत एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार ने 2047 तक विकसित भारत को अमली जामा पहनाने का तहैया कर रखा है। उन्होंने ये बात चेन्नई में आईसीएफ रोजगार मेले से खिताब करते हुए कही। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुल्क डिजिटाइजेशन रोजगार के मौके बुनियादी ढांचे और कारोबार को आसान बनाने के मामलों में तेजी से तरक्की कर रहा है। डॉक्टर मुरुगन ने बताया कि वजीर आजम की यकीन दहानी के मुताबिक अब तक मरकज ने 12 लाख रोजगार मुहैया कराए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि अगले 5 वर्षों के दौरान 1 लाख असातिज़ा को मुलाजमत दी जाएगी। तालीमी महकमे की एक आला सतह की जायजा मीटिंग के दौरान वजीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हर साल कम से कम 25,000 असातिज़ा को मुलाजमत दी जाए। उन्होंने कहा कि असातिज़ा की तकरूरी से मुतालिक नोटिस हर साल जुलाई के महीने में जारी किया जाएगा। उधर वजीर तालीम मिथिलेश तिवारी ने बताया कि वजीर आला के ऐलान के बाद असातिज़ा की तकरूरी के इम्तहान TRE-4 के चौथे दौर से मुतालिक खदशात अब खत्म हो गए हैं। उन्होंने इत्तला दी कि महकमे तालीम जल्द ही खाली असामियों का जायजा लेकर मुलाजमत के लिए ताज़ा दरख्वास्त देगा। बिहार हुकूमत ने आज 21 जून को होने वाले NEET-UG के फिर से इम्तहान में शिरकत करने वाले सभी तलबा के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफर का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आला सम्राट चौधरी ने कहा कि रियासत में नीट के सभी उम्मीदवारों को सरकारी बसों में मुफ्त सफर करने की इजाज़त दी जाएगी। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तहान की जवाब की कॉपियों की स्कैन की हुई नकल हासिल करने की आखिरी तारीख 24 मई तक के लिए इजाफा कर दिया है। इससे कबल इसकी आखिरी तारीख आज यानी 23 मई तक थी। CBSE ने बताया कि पिछले कुछ दिनों के दौरान इसकी वेबसाइट पर गैर मुतवक्क ट्रैफिक आने और गैर कानूनी तौर पर वेबसाइट में मुदाखलत करने की वजह से यह फैसला किया गया है। बोर्ड ने बताया कि तलबा जवाब की कॉपियों की स्कैन नकल हासिल होने के बाद 2 दिन तक फिर से जायजे के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अपने 4 रोजा भारत दौरे पर आज कोलकाता पहुंच गए हैं। यह भारत का उनका पहला दौरा होगा जो अमरीका और भारत के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जानिब अहम कदम साबित होगा। जनाब रूबियो के दौरे के दौरान तिजारत, दिफा, तवानाई की यकीनी फराहमी, टेक्नोलॉजी

0: और भारत बहरुल काहिल, हिकमत अमली जैसे शोबों में ताबुन को वसत देने पर तवज्जो मरकूज किए जाने का इम्कान है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गौर ने बताया कि जनाब रूबियो दिन में नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आलमी सेहत तंजीम WHO ने अवामी जमहूरिया कांगो में इबोला मुल्क भर में फैल जाने के अंदेशे का इजहार किया है। इस तंजीम के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधेनोम गेब्रेसस का कहना है कि इस वक्त इस वायरस के कौमी सतह पर फैल जाने का बहुत ज्यादा, इलाकाई सतह पर ज्यादा और आलमी सतह पर फैलने का कम अंदेशा है। आज शाम लखनऊ में IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में लखनऊ जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकार के मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत हासिल करने वाले 51,000 से ज्यादा लोगों को तकरीरी नामे सौंपे। वजीर आजम ने कहा कि भारत नौजवानों को आलमी सतह पर रोशनास कराने और मौके पैदा करने के लिए दुनिया के कई मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। बिहार हुकूमत अगले 5 वर्षों के दौरान रियासत में 1,00,000 को मुलाजमत देगी। CBSE ने 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तहान की जवाब की कॉपियों की स्कैन नकल हासिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 24 मई कर दी है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में वजीर आजम मोदी से मुलाकात करेंगे। WHO ने कांगो में इबोला की किस्म के खतरे को बहुत ज्यादा के जुमरे में शामिल कर दिया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments. Says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned photocopies of answer books for class 12 board examinations until tomorrow. U.S. Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including the Ministry of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Addressing the Rozgar Mela, the Prime Minister emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. Mr. Modi noted that the nation has placed its trust in its Karma Yogis, and it's now their responsibility to honor and strengthen that trust through their dedication, conduct and everyday actions.
2: Karma Yogi प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: मिस्टर मोदी हाइलाइटेड दैट द वर्ल्ड इज ईगर टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ जर्नी। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द कंट्री इज ऑल्सो पार्टनरिंग विद वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एम्ड एट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्लोबल एक्सपोजर टू द यूथ ऑफ द नेशन।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है की भा...

0: issued a red warning for heat wave to severe heat wave conditions over East Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. According to the IMD, heat wave conditions are expected to persist over large parts of northwest, central and eastern India over the next 6 to 7 days. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments, says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned copies, photocopies of answer books for Class 12 board examinations until tomorrow. U.S. Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे कहा भारत युवाओं को अवसर रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले रोजगार मिले उनका सामर्थ्य खिल उठे साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया
2: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है यही स्पिरिट यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त

0: 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉ सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
1: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
0: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि

0: सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार। आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल के इस विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूँ आपकी दोस्त सुनिधि। दोस्तों, हिंदी और बांग्ला संगीत जगत में कुछ ऐसी आवाजें हैं जो सीधे दिल में उतर जाती हैं, जिनकी गायकी में मिठास भी होती है, मासूमियत भी और भावनाओं की गहराई भी। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसी ही मधुर स्वर साधिका की, जिनकी आवाज ने 70 और 80 के दशक में संगीत प्रेमियों के दिलों पर अपनी खास छाप छोड़ी। तो आज की हमारी विशेष कलाकार हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी। तो आइए सुन लेते हैं इनसे जुड़ा एक गीत।

दोस्तों, अभी आपने सुना दो नैनों में आंसू भरे हैं। आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, 70 का दशक हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्णिम दौर माना जाता है। उस समय लता मंगेशकर, आशा भोसले और किशोर कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के बीच अपनी अलग पहचान बनाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन आरती मुखर्जी ने अपनी विशिष्ट गायकी और कोमल आवाज के दम पर संगीतकारों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उनकी आवाज में एक ऐसा घरेलूपन था, एक ऐसा अपनापन जो सीधे श्रोताओं के दिल तक पहुंचता था। उन्होंने कई बड़े संगीतकारों के साथ काम किया, जिनमें आरडी बर्मन, सलिल चौधरी और हेमंत कुमार प्रमुख हैं। तो आइए अब सुनते हैं उनका एक और बेहद चर्चित गीत।

दोस्तों, आरती मुखर्जी जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ हिंदी फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहीं। बांग्ला संगीत जगत में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने रविंद्र संगीत, नजरूल गीत और आधुनिक बांग्ला गीतों को अपनी मधुर आवाज़ से नई ऊंचाइयां दीं। उनकी गायकी में शास्त्रीय संगीत की मजबूत नींव साफ दिखाई देती थी। यही कारण है कि उनके गीतों में भावनाओं की गहराई और सुरों की शुद्धता दोनों सुनाई देती थी। उनकी लोकप्रियता सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश और दुनिया भर के बंगाली संगीत प्रेमियों के बीच भी रही। तो इनके बारे में हम बात करते रहेंगे और ज़्यादा जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए पेश है एक और बेहद प्यारा गीत।

दोस्तों, आरती मुखर्जी को उनके शानदार योगदान के लिए कई सारे पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया था। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और बांग्ला संगीत जगत में तो वे आज भी अत्यंत सम्मान के साथ याद की जाती हैं। उनकी आवाज़ की सबसे बड़ी विशेषता थी सादगी, बिना किसी बनावट के सीधे दिल से निकली हुई गायकी। वो उन चुनिंदा गायिकाओं में से शामिल हैं जिनकी आवाज़ सुनते ही एक अलग पहचान महसूस होती है। उनके बारे में बात हम करते रहेंगे, लेकिन उनके गाए हुए इतने सारे इतने सुंदर सुंदर गीत हैं कि बस लगता है कि मानो सुनते ही जाओ। आइए एक और गीत सुन लेते हैं।

दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज हमारे इस कार्यक्रम एक ही कलाकार में आरती मुखर्जी की। दोस्तों, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ऑल इंडिया रेडियो की प्रतियोगिताएं भी जीती और इसमें अनेकों पुरस्कार जीते। इसके साथ साथ वो बांग्ला और हिंदी दोनों भाषाओं में समान रूप से लोकप्रिय रहीं। उनकी आवाज़ को संगीतकार अक्सर मीठी और भावपूर्ण कहा करते थे। फिल्म गीत गाता चल के गीतों ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। वो मंच की प्रस्तुतियां देने में बहुत ही निपुण थीं और बेहद पसंद की जाती थीं। तो इनके बारे में और भी बातें करते रहेंगे, लेकिन पेश है इनकी फिल्म गीत गाता चल का एक और यादगार गीत, कर गया काना मिलन का वादा।

दोस्तों, आरती मुखर्जी की गायकी की सबसे बड़ी ताकत थी भावनाओं को सहज तरीके से पेश करना। चाहे भजन हो, रोमांटिक गीत हो या विरह का कोई संगीत हो, उन्होंने हर अंदाज को पूरी ईमानदारी से निभाया। उनकी आवाज़ में भारतीय मिट्टी की खुशबू हमेशा महसूस होती रही है। यही कारण है कि आज भी उनके पुराने गीत पुराने होने के बावजूद भी उतने ही ताज़े लगते हैं। तो आइए, चलते चलते उनका गाया हुआ एक और गीत सुन लेते हैं जो आज भी सभी की जुबान पर है।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त सुनिधि। उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का इंटरेस्ट चैनल। तब तक के लिए नमस्कार।

हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं ब्रज माधुरी कार्यक्रम।

0: रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोतान को श्रुति बुरी की
1: और वंदना की
0: राधे राधे। वंदना, का तुम जानो हो कि ब्रजभूमि के जो पुरातन मंदिर हैं वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के साक्षी हैं, जिनमें ते जो राधा मदन मोहन मंदिर है वो सबसे पुराना मानव जाए है।
1: हाँ जी जी, और का तुम जानो हो कि मुख्य पौराणिक स्थलन में ते राधा दामोदर मंदिर, बांके बिहारी मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और जाके संगे कामा को आदि वृंदावन पुरातन मंदिर में शामिल हैं।
0: और वंदना, गोवर्धन को दान घाटी मंदिर और नंदगाम को नंद भवन तो तुम भूल ही गई।
1: और जी जी, पता है यहाँ के प्रमुख जो ऐतिहासिक रूप से प्राचीन मंदिर है ना, राधा मदन मोहन मंदिर, ये वृंदावन को सबसे पुराना मंदिर है जो काली घाट के पास है।
0: और अगर हम श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन की बात करें तो ये जीव गोस्वामी द्वारा स्थापित मंदिर हो और यहाँ पे गोवर्धन शिला की पूजा हु करी जावे है।
1: हाँ जी जी, और राधा रमण मंदिर वृंदावन में है, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने बाकी स्थापना कराई।
0: श्री राधा गोविंद देव मंदिर जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, वाको राजा मानसिंह द्वारा निर्माण भयो। कभी जे मंदिर जो होतो ना वो 7 मंजिला भयो करतो।
1: अच्छा
0: हाँ।
1: और जी जी, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है ना, वो भगवान कृष्ण के जन्म स्थान को ही प्रमुख मंदिर है।
0: और कहा तुम जानो हो वंदना, याकु प्राचीन कटरा केशव देव के नाम से जाना जाए है।
1: अच्छा जी जी,
0: और यहीं पे वो गर्भगृह है जहाँ पे कृष्ण को यानी अजन्मे को प्राकट्य भयो। और या के अतिरिक्त बांके बिहारी मंदिर जो वृंदावन में है वो स्वामी हरिदास द्वारा प्रकट किया गया, जो ब्रज को अत्यंत प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है।
1: हाँ जी जी, और राधा श्याम सुंदर मंदिर गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के 7 मुख्य मंदिरों में से एक है।
0: या के अतिरिक्त दाऊ जी को मंदिर जो बलदेव में है और कामवन कामा में जाए आदि वृंदावन हु कहो जाए है, जहाँ मदन मोहन जी और कामेश्वर नाथ को जो शिव मंदिर है वो स्थित है। ये सभी मंदिर बहुत प्राचीन और पौराणिक मंदिर है।
1: हाँ जी जी, जय के संग में चंद्रावली देवी को मंदिर हु एक रहस्यमय मंदिर है जो कि 5000 वर्षों से अधिक समय से खुले आसमान के नीचे है। तो है
0: देखो, ब्रज क्षेत्र में तो वंदना मंदिरन की ही बात करी जाए है।
1: हाँ।
0: देवालय तो ब्रज क्षेत्र की पहचान है। और आज हमने अपने श्रोतान को जो ब्रज के पौराणिक प्राचीन देवालय हैं इनके बारे में जानकारी दी। अब जानकारी ही दोगी या कछु सुनवाओगी अपने श्रोतान को?
1: हाँ जी जी, एक बढ़िया सो भजन सुनवाए दो जी जी।
0: तो आओ सुने हैं जी भक्ति गीत।

0: श्रोताओं, अब ही आपने यह भक्ति गीत को आनंद लियो।
1: देखो वंदना कितनी गर्मी पड़ रही है।
0: अरे जी जी पूछो मत ही ना, तपन है रही है, तपन आग बरस रही है, आग।
1: और देखो हमने इतना अच्छा लोकगीत सुनवाया है, या तो कछु सीरक तो तुम्हें मिली होगी।
0: हाँ करे जा ठंडो तो सब कुछ ठंडो।
1: ये बात तो तुम सही कह रही हो। पर देखो ब्रज में ना यह समय गर्मी तो पड़ रही है, पर गर्मी की जो सब्जियां है ना वो खान पान में अगर हम प्रयोग में लाएं तो जो हमारा पाचन तंत्र है वो अच्छे से काम करेगा और हम स्वस्थ हो रहेंगे और गर्मी हम अच्छे से निकाल पाएंगे।
0: हाँ जी जी देखो जैसे मैंने हवाल कही ना, करेजा ठंडो तो सब कुछ ठंडो, ऐसे भोजन करके जो हमारे आंत होंगे ना वो स्वस्थ रहेंगी, तो ये सब शरीर ही स्वस्थ रहेगा।
1: देखो जैसे आजकल अमिया आ रही है, तो अमिया की चटनी, अमिया पुदीने की चटनी, और ये तो भोजन में रखनी रखनी चाहिए। और आम पनाव बनाए लेना चाहिए, आम की लौंजी बनाए लो, तो ये अमिया जो होवे ना गर्मी में बहुत ठंडक प्रदान करे।
0: हाँ जी जी ए जी जी जी बताओ तुम मेरे घर कब आओगी, मैं तुमको बना के खवाऊंगी लौंजी।
1: लौंजी
0: हाँ
1: तो वो तो बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ के अतिरिक्त तो तुम्हें पता है गर्मी में बहुत सारी सब्जियों में
0: हाँ
1: जैसे भिंडी है, भिंडी जो हुआ है वो शरीर में शर्करा को नियंत्रित करे है,
0: जी जी
1: भिंडी खाना चाहिए, भिंडी सुपाच्य भी हुए जल्दी से पच जावे है।
0: और जी जी देखो भोजन को जैसे रचपच के बनाओगे वो स्वाद को और बढ़ाए देगा।
1: हाँ और यहाँ समय तो देखो लिसौड़े हैं जो ब्रज में ही बने ये, और कहू ना बने
0: हाँ जी जी और देखो अमिया मिर्ची छौंके खाओ, क्या बल।
1: करौंदे,
0: हाँ
1: करौंदे भूल गई
0: हाँ
1: तुम,
0: तो इन्हें
1: करौंदे
0: छौंके
1: मिर्ची।
0: खा लियो, सब्जी मत खाओ भले ही, ऐसे स्वाद रोटी एक आध ज्यादा खप जावे।
1: हाँ और करौंदे मिर्ची तो सब्जी की तरह ही खाए जामे।
0: हम्बे
1: तो देखो ब्रज वाले

0: है, ये सब चीजें हों तो शरीर को ठंडक प्रदान करें।
1: और का जी खाए बेटे बहुत संतुलन बैठ जाए बाहर जाए वे के काज।
0: देखो ब्रजवासी जितना मीठो खामे, जितना सरस खामे ना, तभी तो इनकी बाणी में वो सरसता टपके।
1: हाँ जी, सांची कह रही हो आप जब बात को, तो तभी तो हमारे ब्रज के जो साहित्यकार हैं बिनकी वाणी में कितनो सरस मीठोपन और कितनी मधुरता है, और कितनी मधुरता ही। और जी, बिनकी मधुर लेखनी को तो विश्व में कोई पढ़ ले वो आनंदित है जाए।
0: देखो वंदना, ब्रज के बारे में, ब्रज में रह के अनेक ऐसे कवि हैं जिन्होंने लिखो है और ब्रज भाषा में लिखो है, जिनमें
1: हाँ
0: सबसे अग्रणी नाम है सूरदास को।
1: सूरदास को
0: और
1: जी।
0: सूरदास एक ऐसे कवि रहे जो दिव्यांग है, पर फिर भी बिनन ने अपने अंतःचक्षुन्ते प्रभु को देखो और बिनकी बाल लीलान को, बिनकी अनेक लीलान को वर्णन किया।
1: हाँ जी, सूरदास जी के बारे में तो मैंने जीव पढ़ो है कि बिनकी नेत्रन की आकृति उनाई, जैसे दिव्यांग में आकृति तो होए पर बिनकी तो आकृति उनाई। जी, फिरो बिनन ने कृष्ण भगवान की लीलान को ऐसा वर्णन किया है, और बिनकी रास लीलान को ऐसा वर्णन किया है, बिनकी बाल लीलान को ऐसा वर्णन किया है कि देखते ही बने। जी,
0: देखो वंदना, भक्ति काल के साहित्य में अगर सूर साहित्य को हटाए दिया जाए तो वो अधूरा सा लगे है।
1: सांची
0: सूर साहित्य की मधुरता और मिठास और बिनकी वाणी ने ब्रज साहित्य को अनश्वर बनाए दियो पूरे विश्व में। और आज हम सूर साहित्य पे ही बात करना चाह रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे अपने श्रोतान के समक्ष सूर साहित्य में कृष्ण भक्ति विषय पे, या के वार्ताकार हैं विकास खन्ना।
2: ब्रज माधुरी के सभी रसिकजन श्रोतान को राधे राधे। श्रोताओं, आज हम जा विषय पे चर्चा कर रहे हैं वह है सूर साहित्य में कृष्ण भक्ति। जब कहूं भक्ति काव्य की बात होए है तो सूरदास को नाम बहुत ही श्रद्धा और आदर से लियो जाए है। वे केवल एक कवि नाए हते बल्कि कृष्ण प्रेम में डूबे भय ऐसे भक्त हते जिनकी वाणी आजउ जन जन के हृदय को स्पर्श करे है। सूरदास जी को काव्य मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति की सगुण धारा से संबंधित हते, जहाँ भगवान को साकार रूप में अनुभव किया जाए। इनकी प्रमुख रचना सूर सागर में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलान ते लेके श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम तलक को बड़ो ही मार्मिक चित्रण मिले है। वात्सल्य भाव सूरदास जी की भक्ति को सबसे सुंदर पक्ष है। बिन्ने बालक कृष्ण की चंचलता को, बिनकी नटखट लीलान को और मैया यशोदा के असीम स्नेह को इतना जीवंत वर्णन किया कि सब कृष्ण प्रेमी जन वा दृश्य में सुन के ही खोए जाएं। एक बिन को प्रसिद्ध पद हते मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, जा पद में बालक कृष्ण की भोली चंचलता और मैया के संग बिन को संवाद बहुत ही सहज और हृदय को स्पर्श करवे वारो बन गयो। जाते अतर सूर साहित्य में माधुर्य भाव को हूँ अद्भुत चित्रण मिले है। श्री राधा और कृष्ण के प्रेम को बिन ने बस लौकिक प्रेमी नाए बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन को प्रतीक मानो। राधा जी को विरह बिन की व्याकुलता और कृष्ण के प्रति बिन की अनन्य भक्ति, ये सब मिलके भक्ति को एक उच्चतम और आध्यात्मिक स्तर पर पहुँचाए दे हैं। सूरदास जी के काव्य में विरह और संयोग दोनों को बहुत ही सुंदर समन्वय है। विरह में ज्या पीड़ा और तड़प है, वहीं संयोग में आनंद और परमानंद को अनुभव होए है। सूरदास जी ने विरह को भक्ति को सर्वोच्च रूप मान्यो है, क्योंकि विरह में भक्त को हृदय पूरी तरिया भगवान में लीन है जाए है। इनकी भक्ति में पुष्टि मार्ग को गहरो प्रभाव दिखाई दे है। वल्लभाचार्य जी के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति केवल प्रेम और अनुग्रह से संभवत है, और जय भाव सूरदास जी के काव्य में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुए है। यदि हम ब्रजभाषा और शैली की बात करें तो सूरदास जी ने ब्रजभाषा को बहुत ही मधुर प्रभावशाली प्रयोग किया है। इनकी भाषा सरल सरस और संगीतात्मक है, जो सूदे हृदय को स्पर्श करे है। अलंकारण को प्रयोग हूँ उनने सहजता से कीनो है। जाते काव्य में सौंदर्य और भाव दोनों को अद्भुत संगम दी से है।

सूरदास जी की भक्ति की बड़ी विशेषता है, इनकी भक्ति में सरलता, निष्कपटता और पूर्ण समर्पण हते। इनकी भक्ति में कोई दिखावो ना है, केवल प्रेम और केवल समर्पण हते। यही कारण है कि इनको काव्य आजौ उतनो प्रासंगिक है जितनो के इनके समय में हतो। हम सबन को अति परम सौभाग्य है कि हम सूर साहित्य में कृष्ण भक्ति को भाव सुनवे और जानवे को मिल रहे है। भक्त शिरोमणि सूरदास जू को नाम भक्ति आंदोलन में अति गौरव ते लियो जाए। इतिहास और परंपरा के अनुसार सूरदास जू को जन्म विक्रम संबत 1535 लगभग 1478 ईसा पूर्व के आसपास मान्यो जाए। सूरदास जी में ईश्वर कृपा सो बाल्यकाल ते ही अद्भुत भक्ति को उदय है गयो। सूरदास जी आंखें ते देख नाए पाते हैं, पर इनकी अंतर्दृष्टि में संपूर्ण ब्रजलीला साक्षात प्रकट होती रही। भक्ति परंपरा में ऐसो मान्यो जाए कि सूरदास जू श्री कृष्ण के परम सखा उद्धव जी के अवतार हते। वे उद्धव जो के ब्रज की गोपीन के प्रेम रस को पूर्ण मर्म नाए जान पाए, तो वे ही उद्धव सूरदास जी के रूप में अवतरित भय और ब्रज भक्ति और रहस्य जगत में प्रकट कियो। यही मान्यता सूर्य काव्य के भाव गंभीरता और आध्यात्मिक ऊंचाई को और बढ़ाए दे है। सूरदास जी वल्लवाचार्य जू के शिष्य और पुष्टिमार के अनुयायी हते। इनको काव्य विशेष रूप से सूर सागर में श्री कृष्ण की बाल लीला, किशोर लीला और श्री राधा कृष्ण के प्रेम को अनुपम चित्रण मिले है। सूर साहित्य में कृष्ण भक्ति को मुख्य रूप सगुण भक्ति है। ठाकुर जी को साकार और सानिध्य पूर्ण रूप इनकी भक्ति स्वरूप में अनुभव कियो जाए है। वात्सल्य भाव में सूरदास जू ने यशोदा नंदलाल के प्रेम को अद्भुत चित्रण कियो है। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत माकन तू खायो। इस पद में बालक कृष्ण की चपलता और भैया का वात्सल्य सजीव होए उठे है। जाई श्रृंखला में हम सूरदास जी के साहित्य में कृष्ण भक्ति के माधुर्य भाव को वर्णन जरूर करना चाहें। माधुर्य भाव राधा कृष्ण के प्रेम इंगित करे है। राधा कृष्ण को प्रेम केवल लौकिक ना है, अपितु आत्मा परमात्मा को दिव्य मिलन है। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखियो चाहत कमल नयन को, निसदिन रहत उदासी। यहाँ गोपियन की तड़प और विरह भक्ति को चरम रूप दिखावत है। जाई क्रम में महाकवि सूरदास जी ने अपने साहित्य में विरह भाव की बड़ी विस्तृत विवेचना करी है। भक्ति को शिखर विरह भाव ही मानो जाए है। सूरदास जी ने विरह को अत्यंत मार्मिक रूप दियो। ऊधो मन ना भय दस बीस, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। ये पद दिखावत है कि जब मन पूर्ण रूप ते कृष्ण मलिन हो जाए तो संसार में कछु शेष ना रहे। जाई क्रम में सूरदास जी ने संयोग भाव, जहाँ विरह में तड़प है वहीं संयोग में परमानंद की भी अद्भुत रचना करी है। श्याम तुम्ही बिन कौन सहारो, संयोग में भक्त और भगवान एकाकार हो जाते हैं। भाषा शैली और दर्शन, सूरदास जू ने ब्रज भाषा को अति मधुर सरस और संगीतात्मक रूप दियो। उनको काव्य सहज भावपूर्ण और आलंकारिक होते हुए भी सरल है। उनकी भक्ति पे पुष्टि मार्ग को गाढ़ो प्रभाव है, जहाँ प्रेम और कृपा सो ही प्रभु की भक्ति संभव मान्य जात है। सूर भक्ति की विशेषताएं निष्कपट पूर्ण समर्पण, लोक जीवन सो गाढ़ो संबंध, भावनात्मक गहराई है। अतः निष्कर्ष में हम ये कह सकें और यही कह वो उचित है कि सूर साहित्य हमें ये सिखावत है कि प्रभु तक पहुंचे को सहज मार्ग प्रेम है। जो मन निष्कपट होए समर्पण सो भरो, होए तो ठाकुर जी आपे ही मिल जाते हैं। सूरदास जी को काव्य आज भी उतनो ही प्रासंगिक है जितनो उनके समय में हतो। ये केवल काव्य ना है, अपितु भक्ति को

0: अमृत स्रोत है। श्रोताओं, जाय भाव के साथ आज हम सूरदास जी विशेष रूप से याद करे हैं, और आप ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि सूर को ही वो साहित्य है जहाँ में सबसे ज्यादा PhD साहित्य विभाग में लोगों ने करी है। तो जाते आपको सूर साहित्य में कृष्ण भक्ति की विशेष स्थान को अपने आप अनुभव है जाए है। इसी भाव से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सूर साहित्य में कृष्ण भक्ति या विषय पर वार्ता सुनी, और यह वार्ता के वार्ताकार रहते विकास खन्ना।
2: तो चौना वंदना बहन, चलते चलते हम अपने श्रोतान को सूरदास जी को एक पद सुनवाए देवे आश्वना श्रीवास्तव के स्वर में।
1: हाँ जी जी, जा बात पे तो फिर चार चांद लग जाएंगे हमारे कार्यक्रम में।
2: तो श्रोताओं, लियो आनंद या पद को।

0: श्रोताओ, अभी आपने आश्वना श्रीवास्तव के स्वर में या पद को आनंद लियो। तो यही के संग ही हमारा आज का ब्रजमादरी कार्यक्रम अब यही संपन्न हो गए है। मुकु यानी के वंदना को
1: और मोई यानी श्रुति बुरी को देव अनुमति।
0: राधे राधे, राधे।
1: कार्यक्रम प्रस्तुत करता

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।
1: आइए सुनते हैं नाटक जीवन की चार सीढ़ियां। नाटककार रवि प्रकाश बी वर्मा, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
2: बेटा आलोक।
3: जी दादाजी।
2: जरा रेडियो की आवाज कम करो, बहुत शोर हो रहा है।
3: जी दादाजी।
2: हाँ?
3: अभी समाचारों में सुना, उस तराई वाले इलाके में कल रात बादल फटा है।
2: हाँ।
3: मोबाइल पर तस्वीरें देख रहा हूँ, पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया है। वो देखिए, उस बच्चे की आंखों में कितना डर है, देखकर रूह कांप रही है।
2: हाँ बेटा, इसे दया कहते हैं। जब किसी दूसरे की पीड़ा देखकर तुम्हारा हृदय द्रवित हो जाए तो समझो कि इंसानियत अभी जिंदा है। लेकिन बेटा, दया की सार्थकता इसमें है कि वो विचार से निकलकर व्यवहार तक पहुंचे।
3: व्यवहार तक?
2: हाँ।
3: लेकिन दादाजी, हम यहाँ शहर में बैठकर क्या कर सकते हैं?
2: बेटा, समय आने पर हर व्यक्ति की परीक्षा होती है। चलो आज तुम्हें गांव की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ कल भारी बारिश ने बहुत कुछ बदल दिया है।

0: अरे सुनो, अरे किसने देखा है क्या? अरे मेरा बेटा किसने देखा है क्या? मेरे बच्चे को किसने देखा है क्या? मेरी माँ कहाँ है? बर्बाद हो मेरी माँ को ढूंढो, कोई कोई मेरी माँ को ढूंढो।
1: उफ दादाजी, यहाँ तो तबाही के निशान हर तरफ हैं।
2: हाँ बेटा,
1: देखिए रुक्मणी काकी की झोपड़ी का पिछला हिस्सा पूरा ढह गया है। उनका सारा सामान मलबे में दबा है। काकी का रो रो कर कितना बुरा हाल है।
2: हाँ बेटा,
3: अरे भाई मुनीम जी।
4: जी सरकार। जी।
3: अरे भाई कैमरा वैमरा निकालिए।
4: अभी लीजिए, ये लीजिए निकालिए।
3: और ये कट्टे और कंबल बाहर निकालिए।
2: ए सुनो, जल्दी करो जल्दी करो।
3: और रुक्मणी, और रुक्मणी
5: सेठ जी।
3: अरे भाई देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं।
4: देखो देखो।
3: मुनीम जी।
4: जी।
3: फोटो जरा ठीक से लेना।
4: अरे हुजूर चिंता ना करिए, ऐसा फोटो लूंगा कि बस याद रखेंगे आप।
3: समझा करो, कल सोशल मीडिया और अखबार में सुर्खियों में आनी चाहिए।
4: हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएगा हुजूर, बिल्कुल आएगा, सोशल मीडिया पे अखबारों में छा जाएगा।
5: लेकिन सेठ जी, इन सब चीज की क्या जरूरत थी?
3: जरूरत कैसे नहीं थी रुक्मणी?
4: हाँ थी थी
3: भाई, हम तो धर्म कर्म करने वाले लोग हैं ना। अच्छा सुनो, ये लो 500 रुपए का नोट।
4: ले लो रख लो।
3: अरे मुनीम जी कम्बल दो ना, कम्बल।
4: जी हुजूर मैं कम्बल देता हूँ, ये लो, ये दो कम्बल लो, दोनों ले लो,
5: दो
4: रख लो, सेठ जी बड़े दयालु हैं।
3: और सुनो रुक्मणी, अब सबको ठीक ठीक से बताना कि सेठ जी ने तुम्हारी कितनी मदद की है।
4: बताना जरूर।
5: हाँ सेठ जी, बता दूंगी सबको कि आपने कितनी मदद की है हमारी।
1: दादाजी, सेठ जी कितने परोपकारी हैं ना, कितना बड़ा दान दिया उन्होंने।

0: बेटा आलोक, ये दान नहीं, दिखावा है, दिखावा। अरे दान तो वो होता है जो सामने वाले के सम्मान को ठेस न पहुंचाए। सेठ जी ने उसे संसाधन तो दिए, लेकिन उसकी गरीबी का विज्ञापन कर दिया। जो दान निर्भरता बढ़ाए और देने वाले में अहंकार भरे, वो समाज को खोखला करता है बेटा, समाज को खोखला कर देता है। अरे माधव साहब, छोड़िए भी, छोड़िए, छोड़ दीजिए, शाम के 5 बज गए हैं। ये नाला कल साफ हो जाएगा।
1: नहीं रामू, नहीं।
0: क्यों?
1: अगर ये नाला अभी साफ नहीं हुआ तो रात को फिर बारिश होगी।
0: तो क्या हुआ?
1: और इस नाले का पानी रुक्मणी काकी और पास के 3 और घरों को बहा ले जाएगा। चलो हाथ लगाओ, हाथ लगाओ जरा।
0: अरे लगाओ साहब, ये कोई हमारी निजी खेती थोड़ी है। आप तो ऐसे फावड़ा चला रहे हैं जैसे आप इंजीनियर नहीं, कोई दिहाड़ी मजदूर हो। अरे साहब, दुनिया क्या कहेगी?
1: रामू, दुनिया क्या कहेगी ये तो पता नहीं, लेकिन मेरी आत्मा क्या कहेगी ये मुझे पता है।
0: अरे साहब
1: देखो, इस नाले की देखरेख मेरी जिम्मेदारी थी, और मेरे आलस्य की वजह से अगर किसी का घर गिरता है तो उसका अपराधी मैं हूं। जिम्मेदारी किसी की कृपा नहीं होती रामू, ये वो कर्तव्य है जो आपकी भूमिका से भी जुड़ा होता है, और इसके लिए मुझे किसी शाबाशी बाबाशी की जरूरत नहीं है।
0: आप भी ना बड़े भावुक हैं, अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं, खुद कीचड़ में लथपथ हैं। साहब इसे लोग जिम्मेदारी नहीं बेवकूफी कहेंगे।
1: बेवकूफी
0: जी
1: रामू, अगर कल को डॉक्टर ये कहकर ऑपरेशन करना छोड़ दे कि उसकी ड्यूटी का वक्त खत्म हो गया है, या सरहद पर फौजी ये कहे कि अब रात हो गई है मैं सोऊंगा, तो क्या ये देश बचेगा? जिम्मेदारी व्यवस्था की नींव होती है रामू। अच्छा छोड़ो, ये बहस छोड़ो और ये पत्थर उठाओ, चलो।
0: जी चलो जी, ठीक है साहब, ठीक है, आप कहते हैं तो मैं भी हाथ लगाता
1: हूं। लगाओ हाथ।
2: दादाजी।
0: हाँ बेटा।
2: माधव भाई तो कमाल के इंसान हैं।
0: बेटा यही समाज की असली रीढ़ है। जिम्मेदारी चेतना और अनुशासन पर टिकी होती है, भावनाओं पर नहीं।
2: बिल्कुल सही कहा दादाजी आपने।
3: काकी, ये लो गरम गरम चाय।
4: अरे बिटिया, इसकी क्या जरूरत थी?
3: जरूरत कैसे नहीं है काकी, मैंने अपने घर का पिछला कमरा साफ कर दिया है। जब तक माधव बाबू आपका घर ठीक नहीं करवा देते, तब तक आप मेरे साथ ही रहेंगी।
4: तुम्हारे साथ रहूंगी?
3: हाँ।
4: अरे नहीं नहीं बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो खुद बड़ी मुश्किल से गुजारा करती हो। नहीं नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। नहीं नहीं बेटी, तूने तो पहले ही मुझे कितना कुछ दान कर दिया है। नहीं नहीं बेटी ना।
3: अरे काकी, इसमें बोझ वाली कौन सी बात है? जब मेरी माँ गुजरी थी तब आपने ही तो मुझे माँ जैसा प्यार दिया था। ये कोई एहसान नहीं है, मैं आपकी पीड़ा अपनी आंखों से देख रही हूँ। और एक बेटी का अपनी माँ की मदद करना कोई दान थोड़ी ही है, ये तो अपनापन है काकी।
4: मेरी बच्ची, सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो। इतना सब कुछ कर रही हो और इस पर भी कहती हो कि ये ऐसा नहीं है, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है बेटी।
3: बड़प्पन कैसा माँ जी, अगर किसी पर आपदा आए तो उसकी मदद करनी चाहिए दिल से, और मदद को एहसान का नाम क्यों दें?
4: वाह बेटी वाह, काश काश हर मदद करने वाले की सोच तुम जैसी हो जाए, तो ना मदद लेने वाला शर्मिंदा हो, हर हर मदद देने वाला तो हमारे लिए क्या बताऊं बेटी, तुमने ये जो मदद की है मुझसे तो कहा भी नहीं जा रहा।

0: मेरी बच्ची।
1: रोना बंद कीजिए माँ जी और ये चाय पीजिए, ठंडी हो रही है।
0: पीती हूँ, पीती हूँ।
1: हंस के दिखाइए मुझे।
0: खुश रहो, सदा खुश रहो।
1: ये हुई ना बात।
2: दादाजी।
3: हाँ बेटा।
2: ये सुजाता दीदी ने जो किया, क्या ये भी दान है?
3: नहीं आलोक बेटा, ये दान नहीं, दयालुता है। दयालुता में सहानुभूति और सम्मान दोनों होते हैं। सुजाता काकी की मदद कर रही है, लेकिन उन्हें बेचारा नहीं बना रही है ना, समझ रहे हो ना? देखो, बेचारा नहीं बनाया उसने
2: जी।
3: और उसने सहायता को अपनत्व का रूप दिया। जहां दया महसूस की जाती है, वहीं दयालुता की जाती है बेटा।
2: ओ, तो ये बात है दादाजी।
3: हाँ बेटा।

0: अरे ये आलोक को क्या हुआ? चुपचाप बैठा है, पूछता हूं इससे। अरे बेटा आलोक, आज चुप बहुत हो, कॉलेज में कुछ हुआ क्या?
1: दादाजी, आज मैंने एक ऐसी बात देखी जिससे मन बहुत दुखी हो गया।
0: ऐसा क्या देख लिया? खुलकर बताओ, खुलकर बताओ।
1: हमारे कॉलेज में एक नया लड़का आया है, रवि। उसके कपड़े बहुत साधारण से थे।
0: तो
1: कुछ लड़के उसे बहुत चिढ़ा रहे थे, कोई उसके साथ बैठना भी नहीं चाह रहा था।
0: तो तुमने क्या किया?
1: मैं बस चुपचाप देखता रहा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करूं।
0: देखो बेटा, कभी कभी चुप रहना भी गलत इंसान का साथ देने जैसा होता है।
1: मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन दादाजी, अगर मैं उसके साथ बैठता तो बाकी लड़के मेरा भी मजाक बनाते।
0: देखो, सही काम करने वालों का मजाक शुरू में उड़ाया ही जाता है, लेकिन आखिर में वही लोग सम्मान पाते हैं।
1: लेकिन वो हमसे अलग है।
0: अलग? अलग कैसे है?
1: उसके कपड़े, उसका रहन सहन, सब कुछ अलग है।
0: बेटा, ये फर्क केवल बाहरी होता है। क्या तुमने उसके दिल को देखा, उसके विचारों को देखा?
1: नहीं।
0: तो बस, हर इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या उसके पैसों से नहीं होती, बल्कि उसके चरित्र और व्यवहार से होती है। देखो, मैं तुम्हें बचपन की एक कहानी सुनाता हूं।
1: कौन सी कहानी दादाजी?
0: सुनाता हूं, मेरे बचपन की कहानी है, सुनो ध्यान से।
1: जी।
0: देखो, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो हमारे गांव में एक लड़का था, श्याम। वो बहुत गरीब था, बच्चे उसे अपने खेल में शामिल ही नहीं करते थे।
1: अच्छा, फिर क्या हुआ?
0: बेटा, एक दिन मैंने उसे अकेला बैठे देखा। उसकी आंखों में उदासी थी। मैं उसके पास गया और उससे बातें करना शुरू की। धीरे धीरे हम दोनों दोस्त बन गए।
1: और क्या बाकी बच्चे कुछ नहीं बोले?
0: नहीं नहीं बहुत कुछ कहा बच्चों ने, मेरा भी मजाक उड़ाया गया, लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया।
1: फिर
0: समय बीतता गया। वही श्याम पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बना, और जो बच्चे उसे तुच्छ समझते थे, वही आजकल उसका सम्मान करते हैं।
1: ओह, मतलब इंसान की कीमत उसके हालात से नहीं, उसके गुणों से होती है।
0: बेटा, अब समझे तुम? देखो, यही समानता है, हर व्यक्ति को बराबर समझना ही समानता है।
1: और दयालुता?
0: दयालुता का मतलब है किसी के दर्द को समझना और उसकी मदद करना। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति के साथ खड़े होते हो ना, तो वही सच्ची इंसानियत है।
1: दादाजी, आज अगर मैं रवि के

0: पास जाकर बैठता तो शायद उसे अच्छा लगता।
1: हाँ बेटा, तुम्हारा एक छोटा सा कदम उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।
0: मैं कल से उसी के साथ बैठूंगा और उससे दोस्ती भी करूंगा।
1: शाबाश। मैं तुमसे यही सुनना चाहता था।
0: लेकिन दादाजी, अगर बाकी लड़के फिर हंसे तो?
1: बेटा, सच्चाई और अच्छाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही रास्ता सही होता है।
0: अब मुझे डर नहीं लगेगा।
1: याद रखो बेटा, दयालुता तुम्हें बड़ा इंसान बनाती है और समानता तुम्हें सच्चा इंसान बनाती है। आओ बेटा, मेरे गले लग जाओ।
0: धन्यवाद दादाजी, आज आपने मेरी सोच ही बदल दी।
1: बेटा, जिंदगी में हमेशा सही का साथ देना
0: जी,
1: यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है।
0: बिल्कुल दादाजी।
1: अब देखो ना, रुक्मणी का ही मामला देख लो। सुजाता के एक छोटे से साथ ने रुक्मणी में कितना हौसला भर दिया।
2: हाँ, इस मिट्टी को भी उठा ही लेती हूं। थक गई। लेकिन नहीं रुक्मणी, तुझे थकना नहीं है। हाँ, चल चल, फिर से उठ, अपना काम करना है। हाँ, काका तो तैयार हो गया घर का।
3: अरे वाह रुक्मणि काकी, आपने तो बहुत अच्छा घर बना लिया।
2: सुजाता। अरे आ, अरे बेटी, बना तो लिया, लेकिन किसकी वजह से?
3: किसकी वजह से?
2: अरे बेटी, सारा काम तुम्हारा और मुझे से पूछ रही हो, किसकी वजह से?
3: अरे नहीं काकी।
2: नहीं कैसे, हौसला और हिम्मत तो थी मुझ में, लेकिन तुम्हारे तुम्हारे साथ ने उस हौसले और हिम्मत को बढ़ा दिया बेटी। हाँ, तुम्हारे साथ और अपने पन ने मुझ में एक नई ऊर्जा और हिम्मत भरती बेटी। मैं तो हिम्मत हार ही गई थी, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने अपने घर का ढांचा फिर से खड़ा कर लिया।
3: काकी, इंसान में हिम्मत हो ना तो वो पहाड़ भी तोड़ सकता है।
2: हाँ, यही यही बात तो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ। बेटी, काश तुम्हारी तरह ही लोग दूसरों के दुख को समझकर उसकी सहायता करें, एहसान दिखावे और बनावटीपन को छोड़कर सच्चा साथ दे तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी छोटी हो जाती हैं। तुम्हारे तुम्हारे उस साथ ने, तुम्हारे उस प्यार ने, जानती हो सुजाता, मुझ में कितना हौसला भर दिया बेटी। तभी मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटा पाई कि अपने इस घर को फिर से खड़ा कर दिया। तुम्हारे उस प्यार ने, तुम्हारी गरम गरम चाय ने, इतनी सारी चीजों ने मुझे वो हौसला दिया।
3: काकी, अगर तुम जैसी हिम्मत वाली काकी हमारे साथ हो फिर तो इस गांव की मुश्किलें ही खत्म हो जाएं।
2: मुझ जैसी नहीं, तुम जैसी सुजाता। हाँ बेटी, तुम जैसी अगर और भी लड़कियां हो जाए तो हर किसी में इतना हिम्मत और हौसला आ सकता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। देखो, आपदा तो एक प्राकृतिक समस्या है
3: जी काकी,
2: उसका निदान तो हम आपस में मिलजुल कर ही कर सकते हैं ना बेटी।
3: ये तो है काकी।
2: हाँ, और वो तुमने किया, तुमने दिखाया मुझे रास्ता, है ना
3: काकी? इंसान एक बार ठान ले तो सब कुछ कर सकता है।
2: बिल्कुल सही सुजाता, और तुमने वही किया, तभी तो मैंने अपना घर कड़ा कर लिया। हाँ।

0: जाए गर्मा गर्म चाय और।
1: हाँ हाँ और वो भी मेरे नए घर में। चलो चलो बैठो, मैं अभी बना कर लाती हूँ।
0: तुम भी ना काकी।

0: जो गया
1: है
0: समझ में नहीं आता पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स आज मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि एक स्पेशल काउंसलिंग के लिए आया हूं और वो है कि आज के दौर में हर कोई दौड़ रहा है आपको मालूम है और हम इस दौड़ में कुछ ना कुछ पीछे छूट जा रहा है
1: यस सर
0: आई मीन टू से कि जैसे कि पीछे छूटने का मतलब है हमारी वो मानवीय संवेदना है
2: अरे मानवीय संवेदनाओं की बात तो ठीक है
3: और जो मानसिक तनाव की बात की थी वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है
2: मानसिक शांति
3: मुझे बिल्कुल ज्यादा अच्छा
0: बिल्कुल सर और वो है हमारी मानवीय संवेदनाएं और हमारी मानसिक शांति
1: जी सर
0: तो स्टूडेंट्स जो भी आपकी क्वेरीज हैं इसके रिगार्डिंग वो आप मुझसे पूछ सकते हैं वन बाय वन ओके
3: जी सर करियर की इस दौड़ की वजह से जो तनाव पैदा होता है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है
0: देखो करियर के लिए महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है समस्या दरअसल तब शुरू होती है जब हम सफलता की परिभाषा सिर्फ ऊंचे वेतन और पद से जोड़ लेते हैं अब कहने का मतलब यह है कि आज का जो युवा है वो अपनी तुलना किसी दूसरे से कर रहा है खासकर सोशल मीडिया को देखकर इसे हम फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं जब हम अपनी क्षमता से अधिक बोझ उठाते हैं या दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में एक अजीब किस्म का तनाव पैदा होता है और यह बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है जिससे हम डिप्रेशन तक में चले जाते हैं राइट
1: सर
3: बिल्कुल सर
1: सर फिर ये तनाव के लक्षण क्या क्या होते हैं मतलब हमें कब समझ जाना चाहिए कि बात हाथ से निकल गई है
0: देखो इसके लिए कुछ स्पष्ट संकेत हैं मसलन फॉर एग्जांपल जैसे कि नींद पूरी ना होना
1: यस सर
0: या सोते समय में भी रोजमर्रा के हमारे काम के बारे में सोचते रहना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है और इस इन सब चीजों से होता क्या है कि हमारे स्वभाव में एक अलग तरीके का इरिटेशन आता है
3: बिल्कुल सर
0: आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं
1: करेक्ट सर
0: और यही वो कारण है जो कि हमारे तनाव को बढ़ा देते हैं
4: सर
0: जी
4: इस भागदौड़ के बीच मानसिक संतुलन बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे
0: गुड क्वेश्चन देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो योर बाउंड्रीज आपकी सीमाएं क्या है आप जानने की कोशिश कीजिए देखिए हर कोई नंबर वन तो हो ही नहीं सकता भाई अपनी तुलना आप खुद से करें आपका कंपटीशन खुद से है आपकी लड़ाई खुद से है दूसरों से नहीं जब तक आप खुद में आत्मविश्वास नहीं तलाशेंगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी और आप फिर एक बार तनाव के शिकार हो जाएंगे स्ट्रेस के शिकार हो जाएंगे
3: यानी सर सफलता का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि एक स्वस्थ मन भी है
0: राइट एब्सोल्युटली राइट आफ्टर ऑल मुझे ऐसा लगता है कि अब सेशन तो क्लोज हो गया होगा अभी भी किसी की क्वेरीज हैं तो यू कैन स्पीक
1: सर आपने तनाव प्रबंधन के बारे में हमें जो गुण सिखाए वो वाकई काबिले तारीफ है
3: बिल्कुल सर बिल्कुल
0: थैंक्स ऑल ऑफ यू मुझे आप लोगों से मिलके भी बड़ा अच्छा लगा
1: थैंक यू
5: अरे आलोक बेटा क्या बात है आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो हा?
3: जी दादाजी आज हमारे कॉलेज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हुआ जिसमें सर ने हमें इतना कुछ बताया कि मेरे मन में उठ रहे सारे सवालों का मुझे जवाब मिल गया
5: अच्छा
3: जो कुछ भी आपने मुझे बताया था वो सब उसी का सार था
5: वाह वाह वाह वाह
3: दादाजी
5: हाँ
3: आज मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा
5: वो क्या बेटा
3: मुझे लगता था कि ये सब एक ही चीजें हैं
5: देखो बेटा याद रखना जिम्मेदारी वो नींव है जो व्यवस्था को संभालती है और दया दया

0: वो कोमल बीज है जो मनुष्य को पत्थर होने से बचाता है।
1: जी
0: और दयालुता जानते हो क्या होती है?
1: क्या होती है?
0: बेटा, दयालुता वो खाद पानी है जो संबंधों को जीवंत करता है। और दान, दान वो फल है जो समाज में संतुलन लाता है, बशर्ते उसमें स्वार्थ का कीड़ा ना लगा हो।
1: अच्छा,
0: और हाँ बेटा, जब इंसान इन चारों को समझ लेता है, तभी उसका जीवन नैतिक ही नहीं, सार्थक बनता है। समझे बेटा कुछ? तो
1: बिल्कुल दादाजी,
0: अपने जीवन में इन सब बातों को अपनाना जरूर, और जब भी आवश्यकता हो तो जिम्मेदारी के साथ दया दिखाते हुए दान से पीछे न हटना बेटा।
1: बिल्कुल दादाजी
0: खुश रहो बेटा। समझे बेटा?
1: जी दादाजी, मैं अच्छी तरह समझ गया।
0: खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा, समाज को ऐसे ही व्यक्तियों की आवश्यकता है जो अपनी जिम्मेदारी को कर्तव्य समझें, दूसरों की पीड़ा में दया महसूस करें, अपने व्यवहार में दयालु बने, और दान को दिखावा नहीं, सेवा समझें।
1: जी दादाजी।
2: अभी आप सुन रहे थे नाटक जीवन की चार सीढ़ियां। नाटककार थे रवि प्रकाश बी वर्मा। भाग लेने वाले कलाकार थे हसन जैन, एम एच नियाजी, अर्जुन कौशिक, ममता मलकानी और अन्नू शर्मा। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प

0: बोले अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।
2: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। अब समाचार प्रसारित होंगे।

0: 印度的李广播电台，这次普通话节目播送到这里，谢谢大家收听，再会。
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना
2: जी हाँ, शाम के 5:30 बज चुके हैं और दिन है शनिवार का और आज का खेल खिलाड़ी अंक लेकर आज मैं हूं आपके साथ अतुल और मेरे साथ हैं
3: अर्शद।
2: जी हाँ, रोजाना की तरह बहुत सारी खेल खबरें हम लेकर आएंगे, इवेंट्स जो चल रही हैं उन पर बात करेंगे और अर्शद अगर बात करें तो नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है रांची में, उस पर भी बात होगी। उसके अलावा क्रिकेट आईपीएल, जी हाँ

0: अंतिम दौर में है, प्लेऑफ की दौड़ शुरू होने वाली है, उस पर बात करेंगे। और क्या है खेल खबरों में आज हमारे पास?
1: आज हमारे पास है डायमंड लीग जो कि चाइना में खेली जा रही है, उसके साथ है सुपर चेस क्लासिक रोमानिया में एक बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला यह हो रहा है, साथ होगा WTTE कंटेंडर्स लागोस में इसका मुकाबला खेला जा रहा है, बात करेंगे वियतनाम में खेले जा रहे U23 U17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की, और साथ होंगी कुछ अन्य खबरें भी।
0: जी हाँ, कुछ अन्य खबरें भी, और बात की हमने जो आज हम शामिल करने वाले हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 29वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की जो कि रांची में चल रही है। कल इसका शुभारंभ हुआ था और 25 मई तक खेले जाने वाली है। बहुत सारे वहां रिकॉर्ड बन रहे हैं और आज शाम बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि 100 मीटर फाइनल में मैन और फीमेन्स का जो मुकाबला होगा उसमें अनिमेश कुजूर पर नजर रही होंगी। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए जान लेते हैं। ट्रैक एंड फील्ड से है जहां अगले 3 दिनों तक लगातार शोर सुनाई देगा और उस शोर में से निकलेंगे कुछ ऐसे नाम जो देश का नाम भविष्य में रोशन करेंगे। 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता 2026 की शुरुआत कल यानी 22 मई से रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम से हुई। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के पहले दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन से माहौल रोमांचक बना दिया है। 4 दिनों तक चलने वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के शीर्ष एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के चयन ट्रायल के रूप में भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहले दिन की शुरुआत महिलाओं की 10,000 मीटर फाइनल दौड़ से हुई। महाराष्ट्र की रवीना गायकवाड़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने 35 मिनट 30.98 सेकंड का समय निकाला। उत्तराखंड की सोनिया दूसरे स्थान पर रही जबकि महाराष्ट्र की ही आरती पवारा ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके बाद पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में उत्तराखंड के दीपक भट्ट ने बेहतरीन रणनीति और दमदार फिनिश के साथ स्वर्ण पदक जीता। दीपक ने 29 मिनट 42.93 सेकंड का समय लिया। कर्नाटक के शैलेश कुशवाहा दूसरे और उत्तर प्रदेश के प्रशांत चौधरी तीसरे स्थान पर रहे। सुबह के सत्र में पुरुषों की 100 मीटर और 400 मीटर स्पर्धाओं के शुरुआती राउंड भी आयोजित किए गए। खिलाड़ियों ने तेज रफ्तार के साथ अगले दौर में जगह बनाने की कोशिश की और दर्शकों को कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले, लेकिन दिन का सबसे बड़ा आकर्षण बना पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा जहां भारतीय एथलेटिक्स इतिहास का एक यादगार पल देखने को मिला। सेमीफाइनल मुकाबलों में गुरिंदर वीर सिंह ने पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ओडिशा के तेज धावक अनिमेश कुजूर ने उससे भी तेज दौड़ लगाकर रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अनिमेश कुजूर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10.15 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफिकेशन की ओर भी मजबूत कदम बढ़ाया। पहले दिन की यह रिकॉर्ड तोड़ स्पर्धा पूरे टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खबर बन गई।
2: There goes Animesh Kujur. Is he going to push himself? He is pushing himself. Look at that difference again. Oh, look at him going there. Blazes away.
0: फील्ड इवेंट्स में महिलाओं की लॉन्ग जंप फाइनल ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। भारतीय नौसेना की एनसी सोजन ने 6.75 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता और मीट रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। यह प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क के बेहद करीब माना जा रहा है। शैली सिंह दूसरे और भवानी यादव तीसरे स्थान पर रहीं। पुरुषों की हैमर थ्रो स्पर्धा में सर्विसेज के आशीष जाखड़ ने 68.52 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक हासिल किया। रिलायंस के दमनीत सिंह दूसरे और हरियाणा के अजय कुमार तीसरे स्थान पर रहे। महिलाओं के डिस्कस थ्रो स्पर्धा में JSW की सीमा ने 57.29 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक हासिल किया। हरियाणा की निधि रानी दूसरे और रिलायंस की कृष्णा जयशंकर तीसरे स्थान पर रहीं। शाम के सत्र में महिलाओं और पुरुषों की 400 मीटर तथा 100 मीटर स्पर्धाओं के सेमीफाइनल मुकाबले भी आयोजित हुए। कई स्टार धावकों ने आसानी से फाइनल में प्रवेश किया। खिलाड़ियों की गति, ट्रैक पर प्रतिस्पर्धा और दर्शकों का उत्साह देखने लायक रहा। रात के अंतिम मुकाबलों में महिलाओं और पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल स्पर्धाएं हुई। महिला वर्ग में उत्तराखंड की अंकिता ने 9 मिनट 48.16 सेकंड का समय निकाल स्वर्ण पदक जीता। IOCL की प्राची देवकर दूसरे और हरियाणा की अंजू तीसरे स्थान पर रहीं। पुरुष वर्ग में हरियाणा के बालकिशन ने 8 मिनट 56.01 सेकंड का समय निकाल स्वर्ण पदक जीता। उत्तर प्रदेश के शाहरुख खान दूसरे और गुजरात के सुनील जोलिया जिना भाई तीसरे स्थान पर रहे। दूसरे दिन यानी आज के मॉर्निंग सेशन में खिलाड़ियों ने ट्रैक और फील्ड दोनों में जोरदार प्रदर्शन किया। अपने श्रोताओं को दोबारा बताना चाहेंगे कि यह प्रतियोगिता आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स चयन के लिहाज से भी बेहद अहम मानी जा रही है। आज सुबह के सत्र की शुरुआत पुरुष 10,000 मीटर रेस वॉक फाइनल और डेकाथलॉन स्पर्धाओं से हुई। इसके बाद महिला 100 मीटर और 400 मीटर सेमीफाइनल पर सबकी नजरें रहीं। पुरुष 10,000 मीटर रेस वॉक फाइनल में 18 वर्षीय नितिन गुप्ता ने

0: सभी को चौंकाते हुए 39:38.62 के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं अनुभवी संदीप दूसरे स्थान पर रहे। हालांकि स्वर्ण जीतने के बावजूद नितिन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई करने से चूक गए। महिला 100 मीटर सेमीफाइनल में शानदार रफ्तार देखने को मिली। दूसरे सेमीफाइनल में तमिलनाडु की गिरिधारानी रवि कुमार ने 11.52 के साथ सबसे तेज प्रदर्शन किया और फाइनल में जगह बनाई। महाराष्ट्र की सुदेशना हनुमंत ने भी 11.63 के साथ दमदार दौड़ लगाई। अनुभवी धाविका श्रावणी नंदा भी फाइनल में पहुंचने वालों में शामिल रहीं। महिला 400 मीटर सेमीफाइनल में भी तेज रफ्तार देखने को मिली और शीर्ष एथलीटों ने फाइनल में जगह बनाई। दोपहर के सत्र में अब स्पर्धा का खिताबी मुकाबला होना है। दिन की अन्य स्पर्धाओं में पुरुष वर्ग के डेकाथलॉन मुकाबले भी जारी रहे और रिलायंस के तेजस्विन 8 इवेंट्स के बाद 6,751 पॉइंट्स के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। तेजस्विन पहले दिन के अंत में भी शीर्ष पर बने हुए थे। प्रतियोगिता में अभी 2 इवेंट्स जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर रेस बाकी हैं जो शाम के सत्र में आयोजित होंगी। आज सबकी निगाहें शाम के सत्र पर होंगी जहां पुरुष और महिला 100 मीटर फाइनल सहित कई पदक मुकाबले होने हैं। 100 मीटर में अनिमेश कुजूर फेवरेट हैं जिन्हें गुरिंदर वीर सिंह से बड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा महिला और पुरुष वर्ग के 400 मीटर के फाइनल होंगे। महिला वर्ग की 1500 मीटर रेस का फाइनल भी आज शाम ही होगा। फील्ड इवेंट्स की बात करें तो आज शाम महिलाओं के पोल वॉल्ट, ट्रिपल जंप, शॉट पुट और जेवलिन थ्रो के विजेता भी निर्धारित होंगे। पोल वॉल्ट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर बैरनिका इलानगोवन पर एक बार फिर सबकी निगाहें रहेंगी। कुल मिलाकर अभी तक के मुकाबलों ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस बार की नेशनल सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप बेहद प्रतिस्पर्धी होने वाली है। रिकॉर्ड टूट रहे हैं, युवा खिलाड़ी उभर रहे हैं और अनुभवी एथलीट भी अपना दबदबा बनाए हुए हैं।
1: जी हाँ, रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ये थी इंडिया में हो रही एथलेटिक्स की बात। अब चलते हैं चीन, जहां पर डायमंड लीग खेली जा रही है। जानते हैं अतुल से क्या कुछ घट रहा है वहां पर।
0: एथलेटिक्स की ही बात हो रही है तो डायमंड लीग की भी जानकारी अपने सुनने वाले श्रोताओं को दे देते हैं। पिछले सप्ताह चीन के शंघाई केचियाओ चरण के बाद अब डायमंड लीग का अगला बड़ा मुकाबला आज चीन के शियामेन शहर के एग्रिट स्टेडियम में आयोजित होगा और सीजन का दूसरा चरण होगा। इस बार भी दुनिया के कई शीर्ष ट्रैक एंड फील्ड सितारे एक्शन में दिखाई देंगे। शुरुआती सूची में पुरुष 100 मीटर, 400 मीटर, 110 मीटर हर्डल्स, 5000 मीटर और लॉन्ग जंप जैसे मुकाबले शामिल हैं, जबकि महिला वर्ग में 200 मीटर, 1500 मीटर, 100 मीटर हर्डल्स, जेवलिन और डिस्कस थ्रो जैसे इवेंट आकर्षण का केंद्र होंगे। कई बड़े स्टार खिलाड़ियों पर इस चरण में खास नजर रहेगी। पुरुष शॉटपुट में अमेरिकी दिग्गज रयान क्राउजर की वापसी चर्चा में है। वहीं पुरुष 400 मीटर हर्डल्स में विश्व रिकॉर्डधारी कार्स्टन वारहोम भी ट्रैक पर उतरेंगे। महिला 200 मीटर में भी तेज रफ्तार का मुकाबला देखने को मिल सकता है। पिछले सप्ताह शंघाई चरण में कई शानदार प्रदर्शन देखने को मिले थे और अब खिलाड़ी शियामेन में बहुमूल्य डायमंड लीग अंक जुटाने उतरेंगे, क्योंकि यही अंक आगे चलकर ब्रसेल्स में होने वाले फाइनल की राह तय करेंगे।
1: जी हाँ, एथलेटिक्स की दुनिया से अब आगे बढ़ते हैं क्रिकेट की तरफ। ये वो खेल जहां पर पूरे भारत का दिल धड़कता है। आईपीएल अपने अब आखिरी चरण में पहुंच चुका है। बहुत से रोमांचक मुकाबले अभी तक हमने देखे। कल एक मुकाबला खेला गया था एसआरएच और आरसीबी के बीच, 200 से ऊपर स्कोर गया। बड़ा ही रोमांचक खेल था। आइए जानते हैं अतुल से क्या कुछ घटा कल के खेल में।
0: आईपीएल 2026 में कल खेले गए एक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर आरसीबी को आखिरी लीग मैच में 55 रन से हरा दिया। आरसीबी के लिए टीम के कप्तान रजत पाटीदार ने संघर्ष भरी अर्धशतकीय पारी जरूर खेली, लेकिन वो अपनी टीम को जीत दिलाने में सफल नहीं हो पाए। हैदराबाद की ये 14 मैचों में 9वीं जीत रही, जबकि आरसीबी की ये 14 मैचों में 5वीं हार रही। हैदराबाद की जीत में अहम भूमिका ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन की अर्धशतकीय पारियों ने निभाई। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आईपीएल 2026 का 67वां मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया। इस मैच में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए और आरसीबी को जीत के लिए 256 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में आरसीबी ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन बनाए। हैदराबाद के ओपनर ट्रेविस हेड ने 16 गेंदों पर 26 रन की पारी खेली, जबकि अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों पर तेज तर्रार अर्धशतक लगाया और वो 56 रन बनाकर आउट हो गए। ईशान ने 31 गेंदों पर अर्धशतक लगाया और ये उनका इस सीजन का छठा अर्धशतक भी रहा। ईशान ने 46 गेंदों में 79 रन की पारी खेली, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी ने 12 गेंदों पर 29 रन बनाए और नाबाद रहे। क्लासेन ने भी 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और 51 रन बनाकर आउट हो गए। आरसीबी के लिए रसिक सलाम को 2, जबकि कुणाल पांड्या को और सुयश शर्मा को 1-1 सफलता मिली। बात करें आरसीबी की पारी की तो कोहली ने पारी की शुरुआत करते हुए 15 रन की पारी खेली, जबकि वेंकटेश अय्यर 44 रन बनाकर आउट हुए। देवदत्त पड्डीकल 21 रन की पारी खेलकर पेवेलियन लौट गए। रजत पाटीदार ने 37 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया और 56 रन बनाकर आउट हुए। कुणाल पांड्या 41 रन, जबकि टिम डेविड 15 रन बनाकर नाबाद रहे। हैदराबाद के लिए ईशान मलिंगा ने 2, जबकि शाकिब हुसैन और ट्रेविस हेड ने 1-1 विकेट लिया। इस मैच के लिए हैदराबाद ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया था, जबकि आरसीबी ने अपने अंतिम 11 में एक बदलाव किया था। आरसीबी के ओपनर जैकब बेथल टीम से बाहर हुए, जबकि कप्तान रजत पाटीदार की इस मैच में वापसी हुई। मैच के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के हेड कोच डेनियल विटोरी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: No, we played really well. It's like the, you can't have everything. It was a magnificent game. I thought the guys were incredible. Brilliant. Top of the table, missed a little bit out on run rate. 9 wins is a fantastic tournament. Look, I think it's always about juggling our fifth and sixth bowler. That's a big one for us. And we went with Harshal Patel tonight just because of the nature of the surface. But we know we've got Hinga and Harsh Dubey. We've got a middle order who probably hasn't batted that much during the season. So that's something that we always keep an eye on the build-up towards these big matches. But the team's been amazing. That top four's been brilliant. And that triumvirate of Ishan, Pat and Shakib in the later half of the season has probably been the real difference for us. And I think it was exactly how we anticipated. That's why we batted first. I think it was like the Punjab wicket where there were a lot of runs to be had, but like the Punjab game, RCB dropped a lot of catches, which actually gave us more runs than we potentially deserved. So the score looked bigger than you would normally imagine. But I thought 200 to 220 was a really good score on that surface. Yeah, very happy. I mean, like I said before, those three fast bowlers have been exceptional, and we've had contributions from Harsh Dubey, from Shivang, from Nitish, from Hinge, that have allowed us to come back from losing three of our first four games, and to win 8 out of the next 12 is a real credit to them. I think we anticipate our batting unit doing what they did, and then for the bowlers to compliment them was the reason we're in the position we are now. I think you've seen our openers bat for 14 games for 3 years. They're gonna take anyone on, and it doesn't swing in Hyderabad, so that negates a big percentage of what Bhuvi does. And he's been an exceptional bowler for every team he's been at, and he's had another fantastic year. So to have any chance of winning, we had to take him on, and fortunately today was our day.
1: जी हाँ, आरसीबी का मुकाबला था कल और बड़ा ही रोमांचक मुकाबला था, लेकिन आज डू और डाई मैच है पंजाब के लिए। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ ये खेलेंगे। अगर आज पंजाब जीतते हैं तो आगे जाने का उनके पास मौका है। बाकी अतुल से जानते हैं।
0: आईपीएल 2026 में जैसे जैसे लीग मैचेस खत्म होने को हैं और प्लेऑफ की दौड़ शुरू होने को है, रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। कुछ टीम्स अगले दौर में पहुंच चुकी हैं और कुछ अभी भी रेस में हैं। इसी क्रम में लगातार 6 मैच से हार झेल रही पंजाब किंग्स की टीम इस निराशा को बुलाकर आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने की धुंधली सी आस की हकीकत में बदलने को बेताब होगी। इसके लिए आज शाम उसे लखनऊ में होने वाले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी, उसे किस्मत का साथ भी चाहिए होगा। उसका प्लेऑफ में पहुंचना जीत के अलावा कल होने वाले दोनों मैचों के नतीजों पर भी निर्भर करेगा। अब देखना यह होगा कि लगातार 6 मैच गंवा चुकी पिछले सीजन की रन

0: कौन भाई बोल रहे हैं?
1: इंद्रवीर तेवतिया, गांव लखुगड़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बोल रहा हूँ।
0: तेवतिया जी, कार्यक्रम में स्वागत है। किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: बबीता जी गाई हुई बढ़िया सी रागनी सुनवा देना, कुछ नाम लेने चाहूंगा
0: जी।
1: सुमित तेवतिया, प्रिंस छोटू, प्रत्यक्ष, हमारी बुआ जी है राजवीरी, गांव खुशियारपुर से शेर सिंह मोदी, बाबा सन्नू और पंडित रतन लाल, खतौना से मास्टर हरिंदर सिंह, और मंडोना जाफराबाद से मुंशी जी विक्रम सिंह और राजेंद्र सिंह।
0: हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो ग्राम संसार, शशि भाई को नमस्कार। इस हाल से राजेंद्र सैनी बोल रहा हूँ।
0: सैनी जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: आज के कलाकार है जी बबीता चौधरी और बनवारी लाल यादव जी गामड़ी वाले, और शमशेर जी द्वारका से, और मुंशी भाई जी की आपने भेंट वार्ता सुनाई बहुत अच्छी लगी। राम राम जी।
0: राम राम जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर बबीता चौधरी से ये रागनी। किस्सा रहेगा अंजना पवन का।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: नमस्कार सर,
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ, बिहार शरीफ जिला नालंदा से।
0: अनवर भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: राजेंद्र जाटव की आवाज में एक लोकगीत सुना दी। हमारे दोस्त है शीश पाल अकेला जी, बबली कुमार प्रजापति जी और रामनिवास अग्रवाल।
0: हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो ग्राम संसार, सरस्वती बाबू को नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से।
0: डॉक्टर साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: राजेंद्र जाठव को
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
3: शशि भैया नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: चौधरी वास्ते राजू अग्रवाल के सोध्यक्ष प्रियंशी।
0: राजू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: राजेंद्र जाटो को सुना देना जी,
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
4: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मैं हरी सिंह सैनी, पटवा नंगला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश, यूपी से बोल रहा हूँ जी।
0: हरी सिंह जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: राजेंद्र जाटव को सुनवा देना,
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: और कुछ नाम है जी? देवचंद, राकेश, मुकेश, बलेश, डॉक्टर, पोती पोता है कुछ, नीतीश, हेमपाल, ललित, चंदन, पुष्पंदर, जीतू, भूमेश, छवि, निशा, चंदन और मेरा भांजा गोविंद, मनोज, हरिचंद और मेरे रिश्तेदार संजीव, ज्योति और गीता।
0: हेलो ग्राम संसार।
5: भाई जी राम राम।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: गंगा नए बात से घनश्याम बोल रहा हूँ।
0: घनश्याम भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: आज के कलाकार है राजेंद्र जाटव की आवाज पर सुन लीजिए,
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: दो नाम ले लूं?
0: हाँ बोल दीजिए।
5: मेरी बहन ज्ञान श्री अनंत प्रधान है, तो आकाश पानी तो सबको राम राम।
0: राम राम जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर राजेंद्र जाटव से ये रागनी, खिस्सा रहेगा सरवर नीर का।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112347331 और दूसरा नंबर है 0112347332। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7 बजने को है, आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने

0: अपने कर्म योगियों पर भरोसा जताया है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसी कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
1: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानो भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रति दिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिनों के अंदर विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने आरोपियों की गिरफ्तारी, जांच, पीड़िता की सुरक्षा, परामर्श और पुनर्वास उपायों सहित तत्काल सख्त और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को 27 मई तक केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटवर्ती इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, हमारे किसान बहन भाइयों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हमारे किसान भाइयों को खेती के साथ ही पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसान भाई खेती के साथ साथ ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसी क्रम में सरकार की ओर से

0: मक्खी पालन के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है और साथ ही किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। किसान भाई मधुमक्खी पालन करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं और इसके साथ ही सरकार की ओर से मधुमक्खी पालन को मीठी क्रांति के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
1: बिल्कुल शशि भाई, सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपना स्वरोजगार खोल सकते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसका प्रयोग करके मधुमक्खी पालन ऋण योजना के तहत आवेदन करने के लिए आप योग्य माने जाते हैं। अगर आप पहले से ही मधुमक्खी पालन स्वरोजगार से जुड़े हैं तो ये लोन आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के जरिए अपने व्यवसाय को और अधिक बढ़ा सकते हैं और इसे उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं।
0: बिल्कुल। और किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और जो भी हमारे किसान बहन भाई मधुमक्खी पालन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से इस मौसम में मधुमक्खियों का प्रबंधन करें, खास करके इसके माइग्रेशन को कैसे रोकें, तो इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रवण एम हलधर जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, सभी किसान बहन भाइयों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: नमस्कार, राम राम जी।
0: डॉक्टर साहब, हमारे किसान बहन भाई हैं जो अब तक खेती कर रहे हैं और उन्होंने सुना भी होगा मधुमक्खी पालन के बारे में, लेकिन वो अब करना चाहते हैं, तो किस तरह से इसकी शुरुआत वो कर सकते हैं, कैसे करें, कहाँ से करें और कौन कौन सी जो प्रजाति हैं उनके लिए बहुत उपयोगी रहेंगी?
2: भारत के अंदर अपन दो स्पेसीज इतने दिनों तक थी जिसको हम रियर कर सकते थे। एक है एपिस मेलिफेरा, जिसको इटालियन भी बोलते हैं, और अभी भारत के अंदर 80 से 85% जो शहद आ रहा है वो एपिस मेलिफेरा से आ रहा है। बट एक हमारे भारतीय बी भी है, एपिस सेरेना इंडिका, उसकी 3 सब स्पेसीज है। वो भी नॉर्थ ईस्ट में अगर जाओगे तो उधर एपिस सेरेना हिमालयंस मिलेगी, साउथ में जाओगे तो एपिस सेरेना इंडिका मिलेगी, और सेंट्रल इंडिया के अंदर एपिस सेरेना सेरेना मिलेगी। और दोनों ही प्रकार की जो स्पेसीज है उसको किसान और मधुमक्खी पालक है उसको रियर कर सकते हैं। अब इसके अंदर अंतर क्या है, आपका जो एपिस मेलिफेरा है, इटालियन बी जिसको बोलते हैं, इससे जो एक छत्ता या एक जो बॉक्स होता है उससे आप 30 से 35 किलो हनी एक साल में और शहद ले सकते हैं। बट इंडियन बी जो है उससे 10 से 15 किलो आपको शहद मिलता है। बट उसकी जो क्वालिटी होती है वो अलग होती है, उसकी जो एंटीऑक्सीडेंट और जो प्रोलिन कंटेंट, ये चीजें जो होती है वो अच्छी होती है। बट उसको हर जगह रियर नहीं कर सकते, उसमें स्वार्मिंग और माइग्रेशन की ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बट इटालियन भी है जिसको इजीली किसान भाई ज्यादातर जगह कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इससे उत्पादन ले सकते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कोई भी काम करने के लिए ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है और जैसा कि आपने बताया कि भाई पेटियों की भी इसमें आवश्यकता होती है और जो मधुमक्खी उनकी जो अच्छी जो प्रजाति है उनकी आवश्यकता होती है, तो कितनी पेटियों के साथ कोई भी हमारे जो किसान भाई या युवा साथी हैं इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो शुरुआत कर सकते हैं, और ट्रेनिंग प्रशिक्षण शुरुआत करने से पहले वो कहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं?
2: अगर मधुमक्खी पालन आप करना चाहते हो तो उसकी ट्रेनिंग भारत के अंदर ज्यादातर जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर एक एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान विभाग होता है, उनके अंदर ज्यादातर सेंटर है। अगर दिल्ली के आसपास आप देखो तो हिसार हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एक बहुत अच्छा सेंटर है जो 5 दिन की ट्रेनिंग भी देता है, 10 दिन की ट्रेनिंग भी देता है। और उसके अलावा आप दूसरी जगह अगर साउथ में जाओगे तो कर्नाटका के अंदर भी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर भी डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी है, जहां पे एक क्रीप ऑन हनी बी एंड पोलिनेटर्स का एक सेंटर चलता है और उसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप अन्नगर जाओगे उत्तराखंड के अंदर, वहां पे भी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो तो मणिपुर के अंदर इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, पासीघाट में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग राज्य में जाते हो तो इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और मैं मधुमक्खी पालक को भी ये कहना चाहता हूं कि आप कम से कम पहली बार अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 100 डिब्बों के साथ आप स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपका डेली का रूटीन जो मनी होता है, इसको कैश मनी बोलते हैं क्योंकि जो खेती करते हैं उसके अंदर कैश आपको 6 महीने और 1 साल में मिलता है, और इससे आप रोजाना इससे कमा सकते हो और बहुत ही अच्छा आपको इनकम इससे मिल सकती है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं पात्रता की, जो भी हमारे युवा साथी हैं या जो मधुमक्खी का पालन करना चाहते हैं तो पात्रता मतलब किस बेस पर उनको ट्रेनिंग में आने का मौका दिया जाता है?
2: इसके अंदर ऐसे कोई पात्रता नहीं है, बट दसवीं और बारहवीं होती है तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है 5 से 7 दिन और 10 दिन का, उसके बाद में जो

0: नेशनल बी बोर्ड है, ऑनलाइन पोर्टल है, उसके ऊपर जो आपको अनुदान दिया जाएगा उसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार उसको स्टेट गवर्नमेंट को देती है, स्टेट गवर्नमेंट किसानों को अलग अलग एरिया में जो बी कीपर्स है उनको इसके लिए अनुदान दिया जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब आपने अनुदान की बात की, तो हमारे जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, मधुमक्खी पालन का ट्रेनिंग लेकर के काम करना चाहते हैं, तो सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनका कि ये मधुमक्खी पालक हैं उनका लाभ ले सकते हैं?
0: भारत सरकार ने 2018 के अंदर 500 करोड़ मधुमक्खी के लिए स्पेशल एक पैकेज दिया गया जिससे कि भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो शहद पैदा किया जाए, उसी के बेसिस पे नेशनल बी बोर्ड है NBB जो है दिल्ली के अंदर है वो अनुदान अलग अलग स्टेट को देती है, स्टेट अनुदान बी कीपर्स को देते हैं और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेगा उसी के बेसिस पे आपको 100 बॉक्स के 50 बॉक्स के अलग अलग जो लेना चाहते हैं उसके ऊपर उनका कुछ परसेंट होता है वो अनुदान उनको दिया जाता है। तो इस प्रकार से उसकी कॉलोनी दी जाती है क्योंकि आप स्टार्टिंग करते हो तो उसके लिए कॉलोनी एक इम्पोर्टेंट होती है और उसको साथ में लेना होता है, तो आपको बॉक्स के साथ आपकी कॉलोनी भी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, अब बात करते हैं जैसे कि शहद तो हमें मिलता ही मिलता है मधुमक्खियों से, इसके अलावा और कौन कौन से उत्पाद मिलते हैं?
0: जो आप एपिकल्चर करते हो, मधुमक्खी पालन करते हो, इसे एक शहद एक पार्ट नहीं है, इसके अलावा आपको वैक्स इससे मिलता है, इससे प्रोपोलिस मिलता है और इसके अलावा जो स्टिंग्स से जो निकलता है वो भी आपको मिलता है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट इससे निकलते हैं। एक्चुअली क्या होता है इसके अंदर जब हनी को जैसे हनी डेथ पीरियड हम बोलते हैं जिस टाइम पोलिनेशन नहीं होता है तो उस टाइम उसके रियर के लिए पोलन्स भी हमारे को कलेक्ट करते हैं, तो जब हनी फ्लो पीरियड होता है उस टाइम बीज कलेक्शन बहुत ज्यादा पोलन का लेके आती है तो उसको भी आप इकट्ठा करके उससे भी आप मार्केट डेवलप कर सकते हो और आप उसको मधुमक्खी को भी जब गर्मियों में जब जरूरत पड़ती है उस टाइम आप उनको खिला सकते हो।
1: डॉक्टर साहब एक बात सुनने में आती है कि जो भी मधुमक्खियों की पेटियां होती हैं और अक्सर देखते हैं कि जो कुछ किसान भाई हैं कि अपने खेतों के आसपास नहीं रखने देते, कहते हैं कि भाई हमारी जो फसलें हैं वो कमजोर हो जाएंगी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: ये जो किसान भाई अगर कोई खरीदना चाहता है तो ये बहुत ही गलत है। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपका सरसों का खेत है और सर्दियों के अंदर आपने 20 पेटी 50 पेटी या 100 बॉक्स आपने रख लिए तो आपका 20-30% आपका यील्ड उसका इंक्रीज हो जाता है। और मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी बी कीपर्स है वो फार्मर्स है, उसके लिए उनकी डिमांड होती है फार्मर्स की कि हमारे खेत में रखो जिससे उसको मिनिमम पैसा भी दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उससे, क्योंकि ये पोलिनेशन सबसे ज्यादा जो क्रॉस पोलिनेटेड जितनी भी फसलें हैं उसके अंदर जो पोलिनेशन करती है वो एक बी ऐसा है जिससे सबसे ज्यादा होता है या एपिकल्चर से होता है।
1: तो बिल्कुल ये बात हमारे किसान बहन भाइयों को समझने की है कि जो मधुमक्खियां होती हैं उनसे पॉलिनेशन होता है, पराकरण होता है, जो कि हमारी फसलों के लिए बहुत लाभकारी होता है जिससे हमारा जो फसल उत्पादन है वो ज्यादा होता है। डॉक्टर साहब जो भी हमारे मधुमक्खी पालक हैं मधुमक्खियों को पालन करते चले आ रहे हैं और गर्मी का मौसम है, भीषण गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में वो किस तरह से प्रबंधन करें ताकि उनको अच्छा उत्पाद मिले, शहद अच्छा मिले और साथ ही साथ इस गर्मी के मौसम में माइग्रेशन को कैसे रोकें?
0: मैं इसके अंदर दो चीजें बताना चाहूंगा कि हनी बी है और जो एपिकल्चर है वो दो प्रकार से करते हैं। एक भारतीय बी है जिसको आप एक जगह रह करके जैसे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहां पे एक घर के अंदर, क्योंकि वहां टेम्परेचर 35 से ऊपर जाता नहीं है, तो वो एक जगह ही रख करके उसको पोलन सब्स्टिट्यूट और जो आर्टिफिशियल शहद होता है वो दे करके और शुगर दे करके उसको रियरिंग और एक जगह माइग्रेशन को उसको रोक लेते हैं। बट जो दिल्ली हरियाणा पंजाब इस एरिया के अंदर है क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा होता है, 40 से ऊपर चला जाता है, जैसे ही 35 और 37 38 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो आपकी जो इटालियन बी जो इस एरिया में 80% रेयर करते हैं वो उस पे सर्वाइव नहीं कर सकती। तो उसके लिए क्या करते हैं किसान भाई, जैसे ही अप्रैल होता है यहां से उसको माइग्रेट करके और उत्तराखंड और हाई अल्टीट्यूड जो एरिया है जहां पे ठंडा एरिया है जहां पे उसको पोलन मिल सके और आर्टिफिशियल डाइट भी दे सकते वहां पे रख सकते हैं। अब ये दूसरी बात आती है कि अगर आपको एक ही जगह रखना है और लिमिटेड एरिया में आपको डेवलप करना है, क्योंकि 40 से ऊपर जाएगा तो इसको बहुत मुश्किल होता है, बट अगर फिर भी आपको जैसे आपको छाया मिल गई, आपको 10-20 बॉक्स घर के लिए, आपको 2 बॉक्स आपको रियर करने हैं, उनको रखने के लिए आपको जैसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो उसके अंदर जो बोरी का टाट जो होता है उसके ऊपर डाल दिया जाएगा जैसे दोपहर के टाइम में, जिससे उसको रख सकते हैं। एक जो पेड़ होते हैं या आप ग्रीन नेट या छाया लगा करके उसके नीचे रखा जाए जिससे कि उनको टेम्परेचर का इफेक्ट कम पड़े। दूसरी आपको जो बीकीपिंग का जो बॉक्स होता है उसको वहीं पे रखना है जहां पे पानी की सुविधा हो। दूसरी यह है कि गर्मियां होती है उस टाइम आपके पास पोलन फील्ड के अंदर होते नहीं है, तो उस टाइम आपको जैसे शुगर है, आपका हनी है, इनको मिला करके 1:1 रेशियो और अलग अलग टाइप के पोलन सब्स्टिट्यूट आजकल मार्केट में भी आते हैं, प्राकरण को इकट्ठा कर लिया जाता है जब डेथ पीरियड हम बोलते हैं, जब हनी नहीं निकलता है, जब पोलन होते नहीं है, तो उस टाइम उसको खिलाया जाता है जिससे

0: हैं जो कि सबको साथ लेके अपनी कॉलोनी को पूरी को साथ लेके मेंटेन रह करके देती देती है, ज्यादा से ज्यादा उसका कितने प्रोडक्ट है, कितना पोलिनेशन, अगर वो नहीं होगा तो आपके आपका जीवन भी मुश्किल हो जाएगा अगर आपका बीज और पोलिनेटर्स नहीं होंगे तो।
1: बिल्कुल डॉक्टर श्रवण एम हल्दर जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए, मधुमक्खी पालक भाइयों के लिए, और आपकी दी गई बातों का वो जरूर लाभ लेंगे कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब किसान बहन भाइयों, आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं बलराम बैसला।

0: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे उपदेश, और कलाकार थे बलराम बैसला।
1: नीलम बहन, भारत सरकार हमारे देश के किसान भाई और गरीब नागरिकों को सहायता पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक योजना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार, संरक्षण और दूध की उत्पादकता में वैज्ञानिक रूप से वृद्धि करने के लिए काम किया जाए।
0: बिल्कुल शशि भाई, पशुपालन में गाय हम सबका आधार रही है। गाय का महत्व देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक है। गाय का सामाजिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व माना गया है। इस योजना के जरिए भारतीय देसी गाय की नस्ल जैसे गिर, साहिवाल, राठी, देवनी,

0: हार पार कर रेड सिंधी गायों का विकास किया जाएगा और कृत्रिम गर्भाधान के जरिए इनकी नस्ल को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा।
1: बिल्कुल, इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए जो भी उम्मीदवार हैं उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। जो भारत के छोटे पशुपालक और किसान भाई हैं उन सभी को इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र माना जाएगा। यदि कोई किसान सरकारी कर्मचारी है या वो सरकारी पेंशन लेता है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जो भी हमारे पशुपालक भाई किसान भाई इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वो अपने नज़दीकी पशुपालन और डेयरी विभाग में जाके संपर्क कर सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही राष्ट्रीय गोकुल मिशन की। और अब नीलम बहन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने किसान बहन भाइयों को बताते चलें कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम के बारे में।
0: कल ग्राम संसार कार्यक्रम में बहन भाई सुनेंगे पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम और इसके साथ ही राष्ट्रमंडल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस पर जानकारी दी जाएगी और इसके अलावा बहन भाई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर जानकारी सुनेंगे।
1: और कल के कृषि जगत कार्यक्रम में किसान बहन भाइयों के पत्रों के उत्तर और उनकी पसंद के लोक गीत सुनवाए जाएंगे, साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की जानकारी दी जाएगी। तो किसान बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम की। लेकिन आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7:30 हुए हैं और अब सुनते हैं गजल। आइए सुनवाते हैं चंदन दास की आवाज में ये खूबसूरत गजल।

0: जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने एक गज़ल सुनी, और इसी के साथ गज़लों का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने बवाना विधानसभा क्षेत्र में 4 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया। राजधानी की सड़कों पर कल देश के विभिन्न राज्यों की लोक कलाएं, पारंपरिक वेशभूषा, संगीत और नृत्य का ऐतिहासिक संगम होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली में दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लिया। और पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज हुई वृद्धि से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99.51 रूपये प्रति लीटर हुई, जबकि डीजल 92.49 रूपये प्रति लीटर पहुंचा। अब समाचार।

0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग विधानसभा के एडी ब्लॉक और पीतमपुरा के एपी ब्लॉक क्षेत्र में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इन परियोजनाओं में बेहतर सड़कें, उन्नत जल निकासी व्यवस्था, पैदल मार्ग, पार्किंग सुविधाएं, सार्वजनिक शौचालय और बेहतर सार्वजनिक स्थान शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य निवासियों के लिए दैनिक जीवन को स्वच्छ, सुगम और अधिक सुविधाजनक बनाना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के हर क्षेत्र में दृश्यमान, समयबद्ध और नागरिक केंद्रित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने और प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कीर्तिनगर में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित स्टार्टअप्स की विशाल प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने कई नई पहल शुरू की है। उन्होंने बताया कि इसमें प्रदर्शित स्टार्टअप का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के सहयोग से मूल्यांकन भी किया गया था। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं का चयन कर उसे दिल्ली में लागू कर रहे हैं।
1: पॉल्यूशन ये 2 महीने का चैलेंज नहीं है, ये साल भर करने वाला काम है और उसके लिए लगातार हमारी सरकार हर संभव प्रयास जो दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर रखने के लिए है, पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए वो काम कर रही है। अब ये पायलट प्रोजेक्ट के नाते हमने बहुत सारी चीजें दिल्ली में लगाई है। जब तक वो मौसम आएगा जब दिल्ली प्रदूषण से परेशान होती है, उस समय तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने बेस्ट एफर्ट कर लें।
0: इस अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदर्शनी में लगाए गए उत्पाद डस्ट कलेक्टर के उपयोग की जानकारी दी।
2: ये फियरलेस डस्ट कलेक्टर जो हैं, इनका टेक्नोलॉजी ये एक तरफ से हवा सक करके दूसरी तरफ से क्लीन हवा लगभग 1 घंटे में 3 लाख लीटर हवा को क्लीन करते हैं। अभी इसकी ट्रायल चल रही है। अगर आईआईटी तय करेगा कि मापदंड पे खरा उतरता है और इसके लगने से दिल्ली में हवा में बेहतरी किया जा सकता है, तो फिर इनको पूरी दिल्ली के अंदर कैसे कैसे लगाना उसकी भी एक प्रक्रिया में तय किया जाएगा।
0: प्रदर्शनी में लोगों ने पर्यावरण को बेहतर बनाने और प्रदूषण से निपटने के लिए नए विचार प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के सब रजिस्ट्रार कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तरह आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित हाईटेक केंद्रों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इस प्रशासनिक सुधार का मुख्य उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण व्यवस्था से दलालों की भूमिका को खत्म करना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और नागरिकों को अनावश्यक देरी से मुक्ति दिलाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार देश की सबसे बेहतर व्यवस्था बनाएगी। इस योजना को चरितार्थ करने के लिए मुख्यमंत्री ने हाल ही में संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली सरकार को भी ऐसे ही रजिस्ट्रार कार्यालय विकसित करने चाहिए जहां लोगों को अर्थपूर्ण सेवाएं मिले और सरकार का राजस्व भी बढ़े। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि इन आधुनिक कार्यालयों के लिए प्रक्रिया से स्थापित व अनुभवी कंपनियों का चयन किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इससे मौजूदा सब रजिस्ट्रार कार्यालयों पर भीड़ कम होने से सरकारी अधिकारी मुख्य प्रशासनिक कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि नए कार्यालयों के परिचालन से वहां दलालों और बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही राजस्व की चोरी, संपत्तियों के गलत मूल्यांकन, लंबित दस्तावेजों की ट्रैकिंग में कठिनाई और फर्जी दस्तावेजों के जोखिम का खतरा खत्म हो जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुनक नहर पर छठ पर्व को लेकर निर्माण और सौंदर्यकरण कार्यों की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने बताया कि छठ महापर्व के दौरान सुविधाओं की कमी से जूझने वाला यह स्थान अब एक स्वच्छ, रोशनी से भरपूर और आधुनिक स्थान में परिवर्तित हो रहा है, जो श्रद्धालुओं के लिए गरिमा, आस्था और सांस्कृतिक सम्मान को दर्शाता है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रास सिंह ने आज बवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुतुबगढ़ कॉलोनी में लगभग 4 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया। एक रिपोर्ट।
4: सरकार के बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अब ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और

0: जन सुविधाओं के विकास पर केंद्रित किया जा रहा है, जिससे गांव में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। श्री सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव और सड़कों पर गड्ढों की समस्या को दूर करने की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग सहित विभिन्न विभागों के सहयोग से विकास कार्यों को गति मिल रही है। श्री सिंह ने कहा कि गांव कला, संस्कृति और परंपराओं की एक महत्वपूर्ण पहचान है, इसलिए इनके विकास और संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ग्रीन कवर को भी प्राथमिकता दे रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए नितिका की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सभी 12 जोनों में व्यापक धूल मुक्त सड़क अभियान और विशेष स्वच्छता अभियान तेज कर दिया है। इन अभियानों के तहत शहरी स्वच्छता में सुधार और धूल प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों, वाटर स्प्रिंकलर, जेटिंग मशीनों और स्वच्छता कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। इसके तहत करोलबाग जोन में निगम द्वारा इस महीने की 15 तारीख से 15 दिवसीय डस्ट फ्री रोड्स अभियान शुरू किया गया है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के कल जारी आदेश में कहा गया है कि यह भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जरूरी है। इसमें कहा गया है कि अति संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में स्थित यह सर रक्षा अवसंरचना को मजबूत और सुरक्षित करने तथा अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है। आदेश में कहा गया है कि अनुपालन न करने की स्थिति में कानून के अनुसार परिसर को कब्जे में ले लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है। अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें।
2: 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।
1: 19वां रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार के प्रयासों का मुख्य जोर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने नवनियुक्त युवाओं से आग्रह किया कि वे जन शिकायतों को प्रभावी ढंग से हल करने के प्रति समर्पित मानसिकता अपनाएं
3: और हिम्मत से काम करें, ईमानदारी से काम करें, अच्छा काम करें, लोगों की सुविधाएं बढ़ाएं, नई सोच है, नए आइडियाज है, उस बदलाव के साथ जुड़े। अधिकारियों से, सीनियर से लगातार नए नए आइडियाज के साथ चर्चा करें, अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, देश को भी आगे लेके जाए।
1: राजधानी में रोजगार पाने वाले युवाओं ने नियुक्ति पत्र मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने विचार साझा किए हैं।
4: मेरा चयन जूनियर इंजीनियर सिविल वर्क्स में दिल्ली डिवीजन के लिए हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छी स्पीच दी, हमें मोटिवेट किया कि हमें अपना सत्य निष्ठा से कार्य करना है।
5: मेरा सिलेक्शन NIT दिल्ली में तकनीकी सहायक के पद पर हुआ है और इसलिए आज मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं NIT दिल्ली के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
6: मेरा जो चयन हुआ है भारतीय रेलवे में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधित किया है और जो मुझे सम्मानित किया गया है आज, वो मुझे बेहद खुशी हो रही है।
7: मेरी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो रेलवे के अंडर हुई है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए और आज प्रधानमंत्री मोदी जी से नियुक्ति पत्र पाकर के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। इतनी मेहनत जब लास्ट में आकर के सक्सेसफुल होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी में कल सड़कों पर भारतीय संस्कृति, लोक परंपराओं और उत्सव का अद्भुत और ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिलेगा, जो राजधानी के सांस्कृतिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। इसी कड़ी में देश के विभिन्न राज्यों से आए 1,00,000 से अधिक वनवासी समाज के लोग पहली बार अपनी विशाल सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेंगे और ऐतिहासिक लाल किले तक पहुंचेंगे। इस शोभा यात्रा को चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह शोभा यात्रा दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। इसके मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने आज यातायात संबंधित परामर्श जारी किया है। परामर्श में बताया गया कि कल लाल किले पर आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम और वहां जाने वाली कई शोभा यात्राओं के कारण मध्य और उत्तरी दिल्ली में यातायात प्रभावित रहेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकी नाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे और कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकी नाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं प्रदान की थी। राजधानी के कई इलाकों में आज सुबह बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिली। हालांकि दिन में कड़ी धूप और लू के चलते गर्मी का कहर जारी रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। कल का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रा सिंह ने बवाना विधानसभा क्षेत्र में 4 करोड़ रूपए से अधिक की विकास कार्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया। राजधानी की सड़कों पर कल देश के विभिन्न राज्यों की लोक कलाएं, पारंपरिक वेशभूषा, संगीत और नृत्य का ऐतिहासिक संगम होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली में दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लिया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है मुशायरा।
9: सामीन की खदमत में सरफराज आलम का पुरखलूस आदाब। हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मुशायरा लेकर। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है जिंदगी का सोजे दुरूं। सामीन, उर्दू अदब में खवातीन की नुमाइंदगी यूं तो हर दौर में रही है, लेकिन 20वीं सदी के निसफ आखिर में शायरात की एक तवील फहरिस्त हमारे सामने आई, जिन्होंने अपनी शायरी में न सिर्फ ये के निसाई जज्बात व एहसास को रकम किया, बल्कि अपने मखसूस लहजे को भी उसके तमाम शोख रंगों के साथ बरता। बहुत सी ऐसी खवातीन हैं कि जिनके जिक्र के बगैर उर्दू जबान व अदब की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। जब भी उर्दू अदब का जिक्र आएगा या उसकी तारीख पर बात की जाएगी, तो खवातीन के जिक्र और उनके अदबी कारनामों के बगैर तारीख नामुकम्मल रहेगी। असर हाजिर में भी खवातीन ने उर्दू जबान को फ़रोग देने में अहम कारनामा अंजाम दिया है और अपनी इल्मी व अदबी सलाहियत की बुनियाद पर अपनी मुनफरद शनाख्त और पहचान कायम की है। असर हाजिर की चंद ऐसी ही मारूफ व मकबूल शायरात को आज आकाशवाणी के स्टूडियो में मदऊ किया गया है। शुरका हैं मोहतरमा रेशमा जैदी, मोहतरमा अजरा नकवी, मोहतरमा परवीन शगुफ्ता اور محترمہ شارکہ ملک۔ تو آئیے ان کے خوبصورت

0: अरे जमाना तो इधर भी देखो, गम की बेनाम सलीबों से उतारो मुझको।
1: क्या बात है भाई, वाह
0: बहुत शुक्रिया। तुम हो गम ख्वार जमाना तो इधर भी देखो, गम की बेनाम सलीबों से उतारो मुझको।
1: वाह बहुत अच्छा।
0: किसकी फुरकत का मेरी आंखों पे पहरा हुआ,
1: क्या बात है।
0: किसकी फुरकत का मेरी आंखों पे पहरा हुआ है, कुछ बताओ तो सही अर्श के तारो मुझको।
1: क्या बात है, वाह वाह।
0: कुछ बताओ तो सही अर्श के तारो मुझको। किसकी फुरकत का मेरी आंखों पे पहरा हुआ,
1: क्या बात है।
0: किसकी फुरकत का मेरी आंखों पे पहरा हुआ है, कुछ बताओ तो सही अर्श के तारो मुझको।
1: क्या बात है, वाह वाह।
0: कुछ बताओ तो सही अर्श के तारो मुझको। रज जगे हैं मेरी तकदीर की बुनियादों में, रज जगे हैं मेरी तकदीर की बुनियादों में, नींद आती ही नहीं हिजर के मारो मुझको। रज जगे हैं मेरी तकदीर की बुनियादों में, नींद आती ही नहीं हिजर के मारो मुझको। मैं हूँ बीमार हवाए रहे दिलबर ए दोस्त, मैं हूँ बीमार हवाए रहे दिलबर ए दोस्त, उसके कूचे से किसी शाम गुजारो मुझको। मैं हूँ बीमार हवाए रहे दिलबर ए दोस्त, उसके कूचे से किसी शाम गुजारो मुझको।
1: क्या बात है, वाह वाह।
0: और एक गजल के कुछ अंतशार पेश खिदमत है। मतलब देखिए, किसी मंजिल का असर जानिबे दिल खींचता है, किसी मंजिल का असर जानिबे दिल खींचता है, एक अनजान सफर जानिबे दिल खींचता है। किसी मंजिल का असर जानिबे दिल खींचता है, एक अनजान सफर जानिबे दिल खींचता है। चांद सूरज ही बताएंगे कभी मेरा वजूद, चांद सूरज ही बताएंगे कभी मेरा वजूद, कौन ये शाम व सहर जानिबे दिल खींचता है। चांद सूरज ही बताएंगे कभी मेरा वजूद, कौन ये शाम व सहर जानिबे दिल खींचता है।
1: वाँ वाँ।
0: कैसी वहशत है जो दीवाना बनाए है मुझे,
1: वाँ वाँ।
0: कैसी वहशत है जो दीवाना बनाए है मुझे, शाम होते ही ये डर जानिबे दिल खींचता है। शाम होते ही ये डर जानिबे दिल खींचता है, बेदयारी मेरी किस्मत में लिखी है लेकिन, बेदयारी मेरी किस्मत में लिखी है लेकिन, बेघरी में कोई घर जानिबे दिल खींचता है। बेघरी में कोई घर जानिबे दिल खींचता है, सरफरोशान मोहब्बत की कशिश मत पूछो।
1: क्या बात है, वाह वाह।
0: सरफरोशान मोहब्बत की कशिश मत पूछो, जेरे शमशीर वो सर जानिबे दिल खींचता है। जिससे ख्वाबों में भी मुमकिन नहीं मिलना रेशम, जिससे ख्वाबों में भी मुमकिन नहीं मिलना रेशम, हाय वो शख्स मगर जानिबे दिल खींचता है, हाय वो शख्स मगर जानिबे दिल खींचता है।
1: पता कीजिए कुछ और।
0: मतलब देखिए, तेरा फिराक तेरा इंतजार एक तरफ, तेरा फिराक तेरा इंतजार एक तरफ, खिजा के बाद उम्मीद बहार एक तरफ। तेरा फिराक तेरा इंतजार एक तरफ, खजा के बाद उम्मीद बहार एक तरफ। उलझ रहा है दिमाग इन दिनों, जो हमने अपनी बेटी पे अभी दो तीन दिन पहले कही है, एक नज्म जिसका उन्वान है तन्हाइयां।
1: तन्हाइयां जी।
0: तन्हाइयों की रुत में अजब मेरा हाल है, तन्हाइयों की रुत में अजब मेरा हाल है, हर लम्हा मेरे वास्ते दिन माह साल है। तन्हाइयों की रुत में अजब मेरा हाल है, हर लम्हा मेरे वास्ते दिन माह साल है। रौनक दरे हयात की शायद चली गई, रौनक दरे हयात की शायद चली गई, एक अब्र है उदासी का सर पर चढ़ा हुआ, और साये वजूद है जिद पर अड़ा हुआ। ससुराल जब से फूल सी बेटी चली गई, जैसे दरो दीवार की रौनक चली गई, वो उसका हंसना बोलना घर में ही रह गया, जैसे सुकूत कोई समंदर में रह गया। अब हमें और माजी की यादें हैं जा बजा, दिन जागते कटे तो है हर रात जगा। तन्हाइयां नसीब की मीरास बन गईं, हर एक खुशी को छोड़ के ये खास बन गईं। करती है बात मुझसे ही परछाइयां मेरी, मुझको बहुत है अजीज

0: मुझे आवाज देती है,
1: वाह,
0: कहीं कुछ गुमशुदा लम्हों की सांसें सुन रही हूं मैं। अभी ठहरो, अभी ठहरो, मुझे कुछ देर आंखें मूंद लेने दो, मुझे कुछ देर और ये सोच लेने दो कि कोहरे में छुपा ये शहर कितना पुरसुकून है, खूबसूरत है कि हर घर में कनात राज करती है, कि जैसे मेरी बस्ती में बहुत ही चैन से सब रात सोए थे, मधुर सपनों में खोए थे। सुनो, क्या हर्ज है इसमें कि कुछ पल आंख से ओझल रहे वो सब हकीकत, सारे मंजर जो मुकद्दर में लिखे हैं मेरी दुनिया के। सुनो, क्या हर्ज है इसमें कि कुछ पल आंख से ओझल रहे वो सब हकीकत, सारे मंजर जो मुकद्दर में लिखे हैं मेरी दुनिया के। अभी अभी सूरज झलक दिखलाएगा, तब सब भरम तो टूट जाना
1: टूट
0: है।
1: जाना है।
0: अभी सूरज झलक दिखलाएगा, तब सब भरम तो टूट जाना है। जरा ठहरो मेहरबान, कोहर की चादर अभी छटना नहीं है, इल्तिजा मेरी, जरा सी देर रुक जाओ।
1: क्या
0: वाह वाह,
1: कहने,
0: बहुत
1: वाह वाह
0: शुक्रिया,
1: वाह वाह,
0: बहुत
1: बहुत
0: खूब,
1: सुपर।
0: बहुत बहुत अच्छी नज़्म थी, बहुत अच्छी। आज का हमारा ये स्टूडियो मुशायरा अब इख्तिताम पज़ीर होता है, और इसकी शुरका के नाम मैं एक दफ़ा फिर दोहराती हूँ, शारिका मलिक, परवीन शगफ साहिबा, रेशमा जैदी और मैं अज़रा नकवी। खुदा हाफिज़।
2: सामीन, अभी आप मुशायरे की इस खूबसूरत महफिल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी मोहतरमा अज़रा नकवी, तरतीबो पेशकश थी इंतज़ार सैफ़ी की। मुशायरों की ऐसी ही खूबसूरत महफिल लेकर आपकी खिदमत में हम आइंदा फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुशायरा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब चलते हैं फिल्मी संगीत के सफर पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में ये सबसे पहला बहुत प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, अभी आपने ये जो गीत सुना वो हमने लिया था फिल्म यंगिस्तान से, आवाज अरिजीत सिंह की। चलते हैं अगले गाने की तरफ। तेरी हंसी में जैसे सुबह की पहली किरण बसती है, तेरी आंखों में जैसे पूरी दुनिया की राहत सजती है। जब भी तेरा नाम मेरे होठों पर आता है, दिल बिना वजह धड़कनों का जश्न मनाता है। तू साथ हो तो हर रास्ता आसान लगता है, सूना सा ये दिल फिर से जवान लगता है। तेरे बिना तो चांद भी अधूरा दिखाई देता है, और तेरे साथ हर दर्द भी खूबसूरत दिखाई देता है।

0: श्रोताओं, ये जो हम गीत सुन रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म जमीर से, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले जी की।
1: जिंदगी है जिंदगी, तुम भी चलो
2: हम भी चलें।
0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ मुझे यानी रचना अग्निहोत्री को इजाजत दीजिए कार्यक्रम समेटने की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी कुछ ही देर में सुनते हैं समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत

0: के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
2: विकसित भारत 2047 जब उस गोल उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

0: राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानव से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States' approach towards Indo-Pacific region. Defence Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defence manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Centre asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defence infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China. And Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh clinch silver medals at Asian Under-23 Wrestling Championships in Vietnam. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Rubio shared the US perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support.

0: मार्को रूबियो कल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि उनके इस दौरे से भारत अमरीका जामे आलमी कलीदी साझेदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका किस अंदाज से भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अपनी हिकमत अमली इख्तियार करता है, इसमें भारत की मजबूत बुनियाद है। नई दिल्ली में अमरीकी सिफारतखाने की एक जेली इमारत का इफ्तिताह करते हुए जनाब रूबियो ने कहा कि अमरीका में भारतीय कंपनियों ने जो 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है और पैक्स सिलिका के लिए भारत ने जिस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, उससे इस बात की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि उनके दौरे से बाहमी ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी। अमरीकी वजीर खारजा ने यह एतमाद जाहिर किया कि भारत और अमरीका बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के बारे में कई और पुरजोश और नए ऐलानात करने वाले हैं। जनाब रूबियो ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को दो बहुत संजीदा रहनुमा करार दिया जो तवील मुद्दती मनसूबों पर तवज्जो मरकूज रखते हैं।
1: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into this second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen this partnership deepen.
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि सरकारी मुलाजमतें लोगों के रहन सहन को बेहतर बनाने और इसमें सहूलत पैदा करने के अहम वसीले के तौर पर काम करती हैं। जनाब मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि दुनिया भारत के तरक्की के सफर में शामिल होना चाहती है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ साझेदारी भी कायम कर रहा है, जिसका मकसद मुल्क के नौजवानों को मौके और रोजगार फराहम करना नीज आलमी सतह पर उन्हें रोशनास कराना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: आज 19वें रोजगार मेले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में नए भर्ती किए गए नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुनामे तकसीम किए गए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी में सावी विहीर सनती स्टेट में कायम तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। ये प्लांट 155 एमएम के तोपखाने के गोले तैयार करेगा और इसकी सलाहियत सालाना 5 लाख गोले तैयार करने की है। गोले तैयार करने की पूरी टेक्नोलॉजी और खाम माल अंदरूनी मुल्क का ही होगा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि एक वक्त भारत को दिफाई साजो सामान की दरामदकार के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आइंदा बरसों में मुल्क दिफाई साजो सामान का एक अहम बरामदकार बनकर उभरेगा। जनाब सिंह ने इस बात को उजागर किया कि जंग का तरीक़ेकार तब्दील हो चुका है और जिन मुल्कों के पास इख्तरा साजो सामान तैयार करने की सलाहियत और मजबूत सनती बुनियादी ढांचा है, वही मुस्तकबिल तश्कील देंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत मुस्तकबिल की जंगी सलाहियत के लिए खुद को तैयार कर रहा है और मेक इन इंडिया पहल के जरिए दिफाई साजो सामान की तैयारी के मामले में खुद कफील बन रहा है। महाराष्ट्र के वजीराला देवेंद्र फडणवीस और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की।
3: सेल्फ रिलायंट इंडिया और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है, इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5,000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: मरकज ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब से कहा है कि वो अगले महीने की 5 तारीख तक अपना अहाता हवाले कर दे। मरकज ने कहा है कि दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने के लिए जमीन की जरूरत है। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत के तहत अराजी और तरक्याती दफ्तर की जानिब से जारी किए गए एक हुक्मनामे में कहा गया है कि फौरी इदारा जाती जरूरियात पूरी करने, हुक्मरानी के बुनियादी ढांचे और मफाद आम्मा के प्रोजेक्ट के लिए यह जमीन जरूरी है। इसमें कहा गया है कि दिफाई बुनियादी ढांचे को महफूज बनाने, नीज दीगर अहमियत के हामिल अवामी सिक्योरिटी मकासद के लिए दिल्ली के इंतहाई हसास और अहम इलाके में वाक़ इस ठिकाने की जरूरत है। मजकूरा हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि हुक्म की तामील न होने की सूरत में कानून के मुताबिक इसे कब्जे में लिया जाएगा। मगरबी बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम इस साल जुलाई से शुरू हो जाएगी। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल मीटिंग के बाद कोलकाता में यह ऐलान किया। रियासती सेहत स्कीम स्वास्थ्य साथी के तहत मुस्तफीद होने वाले मौजूदा अफराद को आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के सिलसिले में अगले महीने नई दिल्ली में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हिफ्जान सेहत के बुनियादी ढांचे के साथ साथ सेहत माहरीन और तिब्बी पेशावर अफराद की तरबियत भी उतनी ही अहमियत की हामिल है। उन्होंने आज नई दिल्ली में मेडिकल साइंसेज में कौमी बोर्ड इम्तिहानात इदारे की तकसीम असनाद की 23वीं तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब नड्डा ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर हिफ्जान सेहत निज़ाम के सॉफ्टवेयर के तौर पर काम करते हैं, जबकि बुनियादी ढांचा और दीगर सहूलियात मुल्क के हार्डवेयर के मानिंद काम करती हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि हिफ्जान सेहत का शोबा और सेहतमंद भारत का नजरिया विकसित भारत मिशन के हुसूल में मरकजी रोल अदा करेंगे, लिहाजा तिब्बी पेशावर अफराद का रोल मुल्क के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। हुकूमत ने वसीतर अवामी सलाह मशवरे के लिए विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 के तहत जाब्तों का मसौदा शाये किया है। दही तरक्की की वजारत ने कहा है कि कोई शख्स, मुतल्लिका फरीक, तंजीम या इदारा जाब्तों के मसौदे के सिलसिले में गौर खोज के लिए इस माह की 21 तारीख तक एतराजात या मशवरे दाखिल कर सकता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: विकसित भारत जी राम जी एक्ट 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट एमजी मनरेगा 2005 की जगह लेगा। इस नए कानून का मकसद इस माली बरस में रोजगार की कानूनी गारंटी के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना है। वजारत के मुताबिक जाब्तों का मुसवदा दफा 33 और कानून की दीगर मुतालिका दफात से मुताबिकत रखते हुए तैयार किया गया है। वजारत ने कहा है कि कौमी सतह की रहबर कमेटी के जाब्तों, मरकजी ग्रामीण रोजगार गारंटी कौंसिल के जाब्तों, इंतजामी अखराजात से मुतालिक जाब्तों और शिकायत के इजाले से मुतालिक जाब्तों को सलाह मशवरे के लिए आवाम के सामने रखा गया है। नए कानून में बरवक्त, शफाफ और जवाबदेह तरीक़ेकार के तहत उजरत की अदायगी पर जोर दिया गया है। इस कानून के तहत अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान रोजगार फराहम नहीं किया जाता तो बेरोजगारी भत्ते की भी सहूलत है। दिल्ली से अक्षित वैद्यन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: चीन के शांक्सी सूबे में कोयले की एक कान में हुए गैस के एक धमाके में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 90 हो गई है। गैस का यह धमाका कल हुआ था। सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि कान में काम करने वाले 201 कानकुनों को अब तक बचा लिया गया है, जबकि बचाव कार्रवाई जारी है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने एक जामे बचाव कार्रवाई और जख्मियों के इलाज के लिए हिदायत जारी की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीन के शांक्सी सूबे में कान में हुए हादसे में जान गंवाने वालों के तई दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने भारतीय अवाम की जानिब से चीन के सदर शी जिनपिंग और चीन के लोगों से अपनी ताजियत का इजहार किया। उन्होंने सभी बाकी लापता अफराद की जल्द और बाहिफाजत बाजियाबी की भी दुआ की और इस मुश्किल घड़ी में सोगवार कुंभों से यकजहती का इजहार किया। फ्रांस ने इसराइल के कौमी सलामती के वजीर एटामार बेन गवीर के फ्रांस में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी है। फ्रांस के वजीर खारजा जीन नोएल बेरोट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि इस इकदाम से गजा जाने वाले समुद्र फ्लोटिला में सवार सरगर्म कारकुनों के साथ रवा रखे गए बर्ताव के मामले पर बढ़ते हुए गम गुस्से की अक्कासी होती है। فرانس کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین پر بھی زور دیا کہ وہ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر پر پابندیاں عائد کرے۔ شمال مشرقی یوکرین کے شہر سومی کے مضافاتی میں روس کے ڈرون حملے میں آج ایک شخص ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے لوہانسک خطے میں روس کے کنٹرول والے علاقے میں ایک کالج کے رہائشی علاقے پر یوکرین کے ڈرون حملے کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے جوابی فوجی کارروائی کا حکم دیا تھا۔ آج ویتنام کے ڈینینگ میں بھارت کے کشتی کھلاڑی سورج وششٹ اور ساگر سنگھ نے ایشیائی انڈر 23 کشتی چیمپئن شپ کے مردوں کے گریکو رومن زمروں میں چاندی کے تمغے جیتے ہیں۔ 60 کلوگرام کے زمرے میں سورج وششٹ قزاقستان کے کشتی کھلاڑی سے خطابی مقابلے میں 4-0 سے ہار گئے۔ وہیں 67 کلوگرام کے زمرے میں ساگر سنگھ کو فائنل میں ازبیکستان کے کشتی کھلاڑی نے 9-0 سے شکست دی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کا پرامن حل نکالے جانے کے لیے بھارت کی لگاتار حمایت کا یادہ کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں امریکہ کی حکمت عملی میں بھارت کو مضبوط بنیاد قرار دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ بھارت دفاعی سامان تیار کرنے کے شعبے میں خود کفیل بن رہا ہے۔ وزیر موصوف نے مہاراشٹر میں شیرڈی کے مقام پر توپ خانے کے گولے تیار کرنے کے پلانٹ کا افتتاح کیا۔ مرکز نے نئی دلی میں جم خانہ کلب سے کہا ہے کہ وہ دفاعی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کی خاطر اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک اپنی زمین حوالے کر دے۔ چین میں ایک کوئلہ کان میں دھماکہ ہونے سے 90 افراد کی موت ہو گئی اور بھارتی پہلوانوں سورج وششٹ اور ساگر سنگھ نے ویتنام میں 23 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں چاندی کے تمغے جیتے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔

وكان تقياً.

0: ये वाला रेफ्रिजरेटर देखिए मैडम,
1: ये इसका अंडों का रैक, और इस शेल्फ को जरा सरका दें तो लंबी बोतल भी फिट हो जाएगी मैडम, सॉरी, और ये इसका रोल बॉन्ड फ्रीजर, बस आधे टाइम में

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: इस दौरान भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग DOSEL ने नई दिल्ली में साकुर साइंस प्रोग्राम 2026 में भाग लेने वाले छात्रों के एक दल को रवाना किया। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 56 छात्र, जिनमें 24 लड़के और 32 लड़कियां शामिल हैं, 4 पर्यवेक्षकों के साथ इस महीने की 30 तारीख तक जापान यात्रा पर रहेंगे। भारत इस कार्यक्रम में घाना, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिभागियों के साथ हिस्सा ले रहा है। मंत्रालय ने बताया कि ये सभी छात्र सरकार की राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता हैं। भारत अप्रैल 2016 से इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। चीन के शांशकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। ये विस्फोट क्यूआन काउंटी के लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। रूस ने कहा है कि परमाणु अप्रसार संधि NPT के समीक्षा सम्मेलन में अंतिम दस्तावेज को मंजूरी नहीं मिल सकी, क्योंकि कुछ मुद्दों पर अमेरिका के कड़े रुख के कारण सहमति नहीं बन पाई। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राजदूत डो होंग वियत के प्रयासों और अन्य जिम्मेदार देशों के समर्थन से कई समझौते किए गए तथा सहमति के करीब एक मसौदा अंतिम दस्तावेज के लिए तैयार किया गया। लखनऊ में IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 196 रन बनाए।

0: in 18 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है और हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 1:10 हो चुके हैं और ये समय है आपके गीत सुनहरे कार्यक्रम का। जी हाँ, गीत सुनहरे कार्यक्रम फिल्म संगीत का कार्यक्रम है और ये है गोल्डन ईरा के फिल्म संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीते। जी हाँ, पुराने फिल्मी गीत, वो भी गोल्डन ईरा के। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत मोहम्मद रफ़ी और महमूद के स्वर में।

0: जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं।

किशोर कुमार के स्वर में आपने ये गीत सुना, और लीजिए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के स्वर में फिल्म मेरे सनम से ये खूबसूरत गीत।

और लीजिए अब सुनते हैं जब जब फूल खिले ये फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और नंदा के स्वर में ये गीत।

अभी आपने ये गीत सुना, जिस देश में गंगा बहती है, और इस गीत को गाया लता मंगेशकर, गीता दत्त और अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में। गीत के बोल हैं अंदाज मेरा मस्ताना, और इस गीत को, ये गीत लिया गया है दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत तुम्हारे, फिल्म संगीत गोल्डन ईरा के। और लीजिए अब सुनते हैं समाचार।
1: शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में आज चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजीरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार यह अभियान खौनी पालवा क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में कथित रूप से अवैध रूप से रह रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 13 पुरुष, 7 महिलाएं, 3 नाबालिग लड़के और 1 नाबालिग लड़की शामिल है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। यह विस्फोट क्यूआन काउंटी के लियूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों के जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी चिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमेरिका के सांसदों और आवर्जन अधिकारी कार्यकर्ताओं ने ट्रंप प्रशासन की नई ग्रीन कार्ड नीति की आलोचना की है। इस नीति के अंतर्गत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपने गृह देश से ही आवेदन करना होगा। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि वे अमरीकी नागरिकता और आवर्जन सेवा USCIS के इस निर्णय के खिलाफ हर संभव कदम उठाएंगे और इसे वापस लेने की मांग करेंगे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह छूट H-1B वीजा पर काम कर रहे विदेशी कर्मचारियों पर भी लागू होगी या नहीं। फिलहाल USCIS ने कहा है कि देश के भीतर रह रहे लोगों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। लखनऊ में IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 196 रन बनाए। 197 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब ने 18वें ओवर में जीत हासिल कर ली। पंजाब के लिए श्रेयस अय्यर ने नाबाद 101 रन की शानदार शतकीय पारी खेली, जिस पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार, और अब 3 बजने को है, लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण भी साझा किया। अमेरिका के विदेश

0: मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें अधिक प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में चलाए गए एक तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजेरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये अभियान खोनी पालवा क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में कथित रूप से अवैध रूप से रह रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 13 पुरुष, 7 महिलाएं, 3 नाबालिग लड़के और एक नाबालिग लड़की शामिल है। मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन म्यूजो जिलराई पावल MZP ने मुख्यमंत्री लाल दुहोमा पर राजनीतिक धोखे और पक्षपात का आरोप लगाते हुए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी की विवादित पुनर्नियुक्ति को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार ने 23 अप्रैल को आदेश जारी कर लाल रोहिंगड़ी को पुनर्नियुक्त करने को मंजूरी दी थी। वे 23 अप्रैल को वाणिज्य और उद्योग तथा भू विज्ञान और खनन विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो रही थी और 1 मई से उन्हें पुनः सेवा में लिया गया। अमेरिका के सांसदों और आवर्जन अधिकारी कार्यकर्ताओं ने ट्रंप प्रशासन की नई ग्रीन कार्ड नीति की कड़ी आलोचना की है। इस नीति के अंतर्गत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपने गृह देश से ही आवेदन करना होगा। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि वे अमरीकी नागरिकता और आवर्जन सेवा USCIS के इस निर्णय के खिलाफ हर संभव कदम उठाएंगे और इसे वापस लेने की मांग करेंगे। हालांकि अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि ये छूट H-1B वीजा पर काम कर रहे विदेशी कर्मचारियों पर भी लागू होती है या नहीं। फिलहाल USCIS ने कहा है कि देश के भीतर रह रहे लोगों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। लखनऊ में IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 196 रन बनाए। 197 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में जीत हासिल कर ली। पंजाब किंग्स की ओर से श्रेयस अय्यर ने नाबाद शतकीय पारी खेली, उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। 3:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं गीत बहार कार्यक्रम। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। माफ कीजिएगा, कार्यक्रम का नाम है गीत गजल।

0: मुझसे कोई गलती हो गई क्या?
1: नहीं।
0: तो फिर गुमसुम क्यों हो? क्या बात है?
1: एक तो परदेश जा रहे हो, कहते हो एक साल क्या है, देखते देखते निकल जाएगा।
0: धत तेरे की, बस इतनी सी बात है?
1: छोड़ो।
0: देखो शोभा, यू नाराज मत हो, मैं तुम्हें रोज खत लिखा करूंगा और हर हफ्ते टेलीफोन भी करूंगा। सच पूछो शोभा, अगर तुम और तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी में न होते तो मैं परदेश नहीं जा पाता। अब तो मुस्कुरा दो।
1: उफ़ो। ये सूट और टाई मेरी पसंद के हैं। जब भी किसी पार्टी में जाना इसे पहन के जाना, इसमें तुम बहुत हैंडसम लगते हो।
0: अच्छा, मान लो बहुत हैंडसम देखकर वहाँ की कोई लड़की फिदा हो गई तो
1: मैं समझूंगी वो लड़की मुझसे भी ज्यादा समझदार और अकलमंद है।
0: जलन नहीं होगी?
1: बिल्कुल नहीं। अगर तुमने उसे शादी भी कर ली तो भी मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हें चाहती रहूंगी।
0: शोभा,

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: बरसों बाद उन खुदने निकली हूँ। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमरीका का दृष्टिकोण भी साझा किया। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा।

0: कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत की अध्यक्षता में 21 और 22 मई को नई दिल्ली में 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह CTWG की पूर्ण बैठक और उप समूहों की बैठकें आयोजित की गई। ये बैठकें CTWG की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने उद्घाटन दिवस पर मुख्य भाषण दिया। उन्होंने वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिए ब्रिक्स सदस्य देशों के सामूहिक और एकजुट प्रयासों के महत्व पर बल दिया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजेरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह अभियान खोनी पलावा क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में कथित रूप से अवैध ढंग से रह रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 13 पुरुष, 7 महिलाएं, 3 नाबालिग लड़के और 1 नाबालिग लड़की शामिल है। मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन म्यूजो जिलराई पावल MZP ने मुख्यमंत्री लाल दुहोमा पर राजनीतिक धोखे और पक्षपात का आरोप लगाते हुए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी की विवादित पुनर्नियुक्ति को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार ने 23 अप्रैल को आदेश जारी कर आर लाल रोडिंगी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी थी। वे 30 अप्रैल को वाणिज्य और उद्योग तथा भू विज्ञान और खनन विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो रही थी और 1 मई से उन्हें पुनः सेवा में लाया गया। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट क्यूआन काउंटी के लियू सेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार तथा दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। लखनऊ में IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 196 रन बनाए। 197 रन के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi and U.S. Secretary of State Marco Rubio discussed sustained progress in the India-U.S. Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Teerth in New Delhi yesterday. Mr. Modi said in a social media post that India and the U.S. will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio shared the U.S. perspective on various regional and global issues.

भक्ति संगीत के प्रातकालीन अर्चना कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं धर्मपुरम पी स्वामीनाथन और साथी द्वारा प्रस्तुत तिरुज्ञान संबंधर की रचना।

ओलिविया, जया चाम राजा वाडियार की रचना सुनी। स्वर सीता लक्ष्मी वेंकटेशन और लीला राम गोपाल का है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अर्चना कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं नाद ब्रह्म। कर्नाटक संगीत के इस कार्यक्रम में प्रस्तुति है पुन्नकुन्नम रामा चंद्रन की, राग बैरागी में।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम में पुन्ना कुन्नम रामचंद्रन की प्रस्तुति। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 मई सन 2026। सुबह के 4:49 और ठीक 15 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आपको इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की कुछ जानकारी दे दें। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार प्रातः 5 बजे और 5:55 पर अंग्रेजी में

0: समाचार 5:10 का समय रहेगा, आओ योग करें कार्यक्रम का। 5:20 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत और 5:30 का समय कार्यक्रम स्वर रंजनी का है। हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी 6:00 हिंदी समाचारों के साथ और 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार। 6:10 का समय वंदना कार्यक्रम का रहेगा। चिंतन में आज आप सुनेंगे संत कबीर के विचार। समय 6:40। 6:45 पर आप सुन सकते हैं रामचरितमानस से पाठ भाग बालकांड। 6:55 पर संस्कृत समाचार प्रसारित किए जाएंगे और 7:00 प्रातः हिंदी समाचार आप सुनेंगे और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार। श्रोताओं 7:10 का समय कार्यक्रम संगीतिका का रहेगा और 7:30 पर सुबह आप सुनेंगे गीतों भरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिर से आप सुनेंगे प्रातः 8:00 हिंदी में समाचार समाचार प्रभात में। 8:15 का समय मॉर्निंग न्यूज का रहेगा और 8:30 पर उर्दू खबरें आप सुन सकते हैं। 8:45 पर साहित्य की कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने का वाले कार्यक्रमों की ये थी संक्षिप्त जानकारी। प्रातः के 5:00 को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और हिंदी समाचारों के उपरांत अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमरीका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट इनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और ज्यादा प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के

माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत की अध्यक्षता में 21 और 22 मई को नई दिल्ली में 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह CTWG की पूर्ण बैठक और उप समूहों की बैठकें आयोजित की गई। ये बैठकें CTWG की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने कार्यक्रम का मुख्य भाषण दिया। उन्होंने वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिए ब्रिक्स सदस्य देशों के सामूहिक और एकजुट प्रयासों के महत्व पर भी बल दिया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजीरिया के नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार ये अभियान खोनी पलाव क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में अवैध रूप से रह रहे हैं। चीन के शानसक्सकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट क्युआन क्वांटी के शियुल्यू शेनू में कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 लोगों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। बांग्लादेश में कल खसरा और खसरा जैसे लक्षणों से 13 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पुष्टि और संदिग्ध मौतों की कुल संख्या बढ़कर 512 हो गई है। बांग्लादेश के एक प्रमुख समाचार पत्र की रिपोर्ट के मुताबिक खसरे से पुष्टि मौतों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है, जबकि संदिग्ध मौतों की संख्या 426 तक पहुंच गई है। लखनऊ में IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 196 रन बनाए। 196 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में जीत हासिल की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, वक्त है स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम आओ योग करने का, तो आइए सुनते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम आओ योग करें।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शोखंत, आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे कि किस आसन को करने से आप अपनी दृष्टि दोष में लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आज हम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जिसका नाम है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट का अर्थ होता है ऊंट। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार ऊष्ट्रासन किया जाता है। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों

0: पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दें। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकने का प्रयास। इस बात का ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय गर्दन में किसी भी प्रकार का कोई झटका ना लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। अगर संभव हो तो पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर टिकाए रखें। यह हमारी उष्ट्रासन की स्थिति होती है। बहुत लोगों में देखा गया है कि वह उष्ट्रासन नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप अर्धउष्ट्रासन का भी प्रयास कर सकते हैं। अर्धउष्ट्रासन के लिए आपको कुछ नहीं, बस अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर टिकाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और वक्षस्थल के भाग को पीछे की ओर ले जाएं और उस स्थिति में कुछ क्षण रुके और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ही आगे सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। तो यह अर्धउष्ट्रासन की अभ्यास विधि है। उष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक होता है, पर इसके लिए आपको उष्ट्रासन का अभ्यास प्रतिदिन करना जरूरी है और एक दिन एक सेशन में आप उष्ट्रासन का अभ्यास 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं। उष्ट्रासन करने के बाद आप विश्राम स्थिति में वापस आ जाएं और कुछ क्षण वहीं रुके। विश्राम स्थिति या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या आप दंडासन में भी विश्राम कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप प्रतिदिन उष्ट्रासन करने के अभ्यास से अपने दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग।
1: 燕都德里广播电台，下面是普通话节目时间。本台每天从国际时间11:45到13:15向亚洲播送普通话节目。补偿是15795千赫。11840千赫和13605千赫，欢迎各位收听燕都德里广播电台。下面是燕都古典音乐节目。在这次节目里，请听阿南特拉演奏的唢呐。